शक्तिशाली प्रकार का साभ्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के लिए किसी अनुमान की आवश्यकता नहीं होती है और यह सीधे उस तथ्य को साबित करता है जिसकी आप जांच कर रहे हैं। यदि आप वृत्तांतों पर विश्वास करते हैं तो साक्ष्य ही प्रमाण है, यानी कि उदाहरण के तौर पर हम किसी धर्म में हैं और उसको प्रमाण की आवश्यकता है तो हम अभी अंतर्विहित सारी परिकल्पनाओं में से ऊपर नहीं उठ चुके हैं। दूसरा उदाहरण कि हम यदि किसी रिश्ते में हैं, चाहे वो घर का हो चाहे वो एक प्रेम का हो, जहाँ पर हमें प्रमाण देने की स्थिति आ जाए तो वह धर्म के विरुद्ध है, जहाँ पर प्रमाण देने की आवश्यकता हो जाए तो वह धर्म के विरुद्ध हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रमाण चक्रासन की ओर कि चक्रासन वास्तविक रूप में प्रमाण क्या है। प्रत्यक्ष प्रमाण किस प्रकार होता है पहले हम ये जान लेते हैं। बहुत सारी दृष्टि से प्रत्यक्ष साख्य की परिभाषा व साख्य है जो किसी अनुमान या अनुमान की आवश्यकता के बिना किसी तथ्य को साबित करता है। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष साख्य वो साख्य है जो आप में खड़ा होता है और इसके लिए किसी अंतरिक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी तरीके से हम अब आसन की ओर चलते हैं और आसन करेंगे चक्रासन प्रमाण, यानी कि प्रमाण चक्रासन। किसी भी आसन में हम सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि सबसे पहले स्वच्छ वातावरण होना चाहिए और किसी भी आसन प्राणायाम को करने के लिए जब तक हम आंतरिक रूप से स्वस्थ अपने आप को ना समझें कोई भी आसन प्राणायाम ना करें। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक अवस्था है वह यही है कि हम अपनी चित्त को एकाग्र चित्त होकर के किसी स्वच्छ वातावरण में बैठ जाएं। किसी एकांत वातावरण में बैठने के बाद में हम आसन प्राणायाम को प्रारूप दे सकते हैं। तो आइए हम चक्रासन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम चक्रासन के लाभ के बारे में जानेंगे और उनकी जानकारी को देकर के सारी चीजों को बताएंगे। शरीर में स्फूर्ति शक्ति एवं तेज की वृद्धि करता है। कटी पीड़ा श्वास रोग सिर दर्द नेत्र विकारों सर्वाइकल में विशेष हितकारी है। हाथ पैरों की मांसपेशियों को सबल बनाता है। महिलाओं के गर्भाशय के विकारों को भी यह दूर करता है। चक्रासन यानी कि प्रमाण चक्रासन कितने समय तक करना चाहिए आइए हम आपको बताते हैं। शरीर को ऊपर उठाते समय श्वास रोक कर रखें। आखिरी स्थिति में पीठ को क्षमता अनुसार चक्रासन यानी कि सर्कुलर बनाने की कोशिश करें। शुरुआत में इस स्थिति में 15 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें, यानी आप अपने स्वेच्छा अनुसार 10 से 15 मिनट तक ही 10 से 15 सेकंड तक ही रुकने की कोशिश करें। अभ्यास के साथ आप 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं, वह आपकी क्षमता और आपकी स्वेच्छा अनुरूप पर ही यह स्थित होता है। चक्रासन को धनुरासन भी कहते हैं, हम आपको पहले बता दें, क्योंकि कई योगी और कई विद्यार्थियों के मन में यह एक प्रश्न होता है कि चक्रासन और धनुरासन दोनों अलग अलग स्थिति में हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चक्रासन और धनुरासन एक ही है, इनके नाम अलग हैं। धनुरासन करने से लाभ हम आपको वन बाय वन बताएंगे। पहला, सबसे पहला लाभ है, रोज यदि नियमित धनुरासन करने से पेट मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव आता है जिससे पेट की चर्बी कम होती है। दूसरा पॉइंट, धनुरासन करते समय पीठ को अच्छा स्ट्रेस मिलता है जिससे वह मजबूत बनती है और इससे रीढ़ की हड्डी भी मजबूत व लचीली बनती है। इसके नियमित अभ्यास से चिंता अवसाद को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए अब हम इसी दशा में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि पेट के लिए यह एक्सरसाइज कितनी ज्यादा आवश्यक है। कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारी रोजमर्रा में जो कि हमारा वेट गेन करती हैं। उसमें सबसे पहला एक प्रश्न आता है कि अगर हम किसी जगह पर जॉब कर रही हैं या हमें ज्यादा बाहर की चीजों को खाने की आदत सी है तो भी हमारा वेट गेन होता है, हमारा पेट निकलता है, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कि आसन बताया गया है वह है चक्रासन यानी कि धनुरासन। चक्रासन यानी कि धनुरासन कैसे होता है आइए हम आपको विधि बताते हैं। तो सबसे पहले

मैट या योगा मैट पर या चद्दर बिछा करके बहुत ही आराम स्थिति में बैठ जाएं। तत्पश्चात श्वास की गति को बिल्कुल मध्यम और धीमी गति को लेते हुए एक बार ओम का उच्चारण करते हुए प्रारंभिक अवस्था में आसन को शुरुआत करने की स्थिति में आ जाएं। तत्पश्चात सबसे पहले कमर के बल पर आप लेट जाएंगे, यानी कि आप सीधा जमीन पर कमर के बल, पीठ के बल लेट जाएंगे। अब पैरों को कूल्हों के बराबर खोलकर घुटने मोड़ लें और तलवों को जमीन पर रख लें। अब दोनों हाथों को कानों के साइड में इस तरह रखें कि उंगलियां पैरों की तरफ ऊपर आएं। इसके बाद श्वास लें और कूल्हों को जितना हो सके आसमान की तरफ उठाएं, यानी कि पीठ और पेट को जमीन से ऊपर उठाना है। पैरों के पंजों पर बल दे करके और हाथों की हथेलियों के बल पर, यानी कि आपकी भुजाओं पर बल देते हुए आपकी पेट और पीठ ऊपर की ओर उठेगी। गर्दन जमीन को छूते हुए थोड़ी सी आप ऊपर उठाएंगे। प्रारंभिक अवस्था में आपको यह ध्यान देना है कि गर्दन पर ज्यादा खिंचाव और पेट पर ज्यादा खिंचाव न हो, वरना गर्दन की जो नसें हैं वह खिंच सकती हैं। इसी दशा में श्वास को छोड़ना है और श्वास को मध्यम गति से लेना है। प्रारंभिक अवस्था में आप 1 से 1.5 मिनट तक इस अवस्था को कर सकते हैं। तत्पश्चात धीरे धीरे पीठ को नीचे लाएंगे। पेट और पीठ की स्थिति को नीचे लाते हुए सबसे पहली अवस्था आपकी पीठ की तरफ ही होगी, यानी कि पीठ नीचे आएगी। फिर आप पैर सीधा कर लेंगे और हाथों को भी हवा में उठाते हुए सीधा अपनी अवस्था में वापस आएंगे और 1 से 1.5 मिनट विश्राम करने के बाद ही आप सीधे उठ करके बैठेंगे। चक्रासन की मुद्रा कौन सी होती है, आइए हम आपको बताते हैं। चक्रासन की बहुत सारी मुद्राएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा होती है पवन मुक्तासन, यानी कि पवन राहत मुद्रा। चक्रासन का एक आदर्श प्रति मुद्रा हो सकता है। बस कुछ श्वासों के लिए इसी मुद्रा में रहें। इससे आपको रीढ़ की हड्डी पर तनाव से राहत मिल सकती है। कई लोग कहते हैं कि चक्रासन यानी धनुरासन बहुत ही कठिन होता है, पर हम ये नहीं जान पाते हैं कि यह कठिन क्यों होता है। यह कठिन इसलिए होता है क्योंकि हम इसे पूरी शिद्दत से, यानी कि पूरी पेट और पीठ को उठाते हुए जमीन पर, पूरा इसका जो भार होता है वह हमारे हाथ के पंजों पे और पैर की पंजों पर होता है। तो इसीलिए यह जो प्रमाण चक्रासन है, धनुरासन, बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। आइए हम आपको बता दें कि प्रमाण चक्रासन, धनुरासन कौन कौन नहीं कर सकता है। प्रारंभिक अवस्था में हम बता दें कि छोटे बच्चे 3.5 साल की उम्र से लेकर के इस प्राणायाम को, इस आसन को कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जो कि है महिलाओं के लिए, कि महिलाएं गर्भावस्था में और पीरियड टाइम पर यह आसन मुद्रा ना करें, क्योंकि यह जो आसन है यह खिंचाव का आसन है। पेट की जो कि नसें हैं वो खींचती हैं, कूल्हे की नसें हैं वो खींचती हैं, कंधे की नसें हैं वो खींचती हैं। इसीलिए महिलाएं गर्भावस्था में हैं तो यह आसन बिल्कुल भी ना करें। इस आसन को करने से लाभ, आइए हम बता देते हैं आपको पुनः। इस आसन को करने के लिए पेट से संबंधित, कूल्हों से संबंधित और आम से संबंधित, यानी कि भुजाओं से संबंधित जितनी भी लोगों को परेशानी होती है, यह सारी परेशानियां दूर करता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि चक्रासन जिसे बहुत आसानी से करना आ गया, और कोई भी आसन करने की फिर आपको आवश्यकता नहीं होती है। आसनों का राजा जो है वो धनुरासन को ही कहा गया है। सूर्य नमस्कार के बाद एक प्रमुख आसन है जो कि धनुरासन और चक्रासन को ही इसकी प्राथमिकता दी गई है। तो इसलिए दोस्तों, हम हर बार की तरीके से, जो कि 30 दिवसीय शिविर चल रही है, हम हर बार हर रोज एक आसन प्राणायाम के साथ में एक शब्द की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो आज सब लोगों ने मिलकर के किया प्रमाण चक्रासन। चक्रासन प्रमाण क्यों बना, यह आपको भली भांति परिचित अब हो गया होगा। तो आइए हम सभी एक बार फिर से इस प्राणायाम की अभ्यास को करेंगे और साथ ही साथ फिर हम
मेडिटेशन यानी कि योग यानी ध्यान योग की ओर जाएंगे। नित सवेरे उठ करके आप सभी लोग योग आसन से जुड़ते हैं, योग अभ्यास करते हैं, ध्यान योग करते हैं। तो इसी श्रृंखला में कल हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपकी स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो। लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें। पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए अंदर से बाहर की ओर खींचे,
जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2, 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठ करके अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठ करके सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा, इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि योगा की सीरीज चल रही है प्रकृति से योग, जिसमें वायु, पृथ्वी और आकाश, अब हम नया एक वर्ड लेने जा रहे हैं जो कि पंच तत्व में आता है, आकाश।
इस तत्व के बिना तो हमारा जीवन ही मानो बिल्कुल असाधारण सा है। कोने जमीन पर स्वच्छ बालू 5 इंच स्तर के रूप में बिछाकर उसे बिस्तर के रूप में प्रयोग किया। उन्हें अत्यंत लाभ हुआ। ऐसे बिछौने पर खुले आकाश के नीचे सोना श्रेयस्कर है, क्योंकि आकाश में अद्भुत शक्ति होती है तत्व को ग्रहण करने के लिए। आकाश तत्व को ग्रहण करने के लिए मैदान में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। प्रकृति के साथ योग करते समय आकाश यानी स्काई स्पेस का विशेष स्थान होता है। आकाश विशालता, शांति, स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब हम खुले आकाश के नीचे योग करते हैं तो हमारा मन सीमाओं में मुक्त होकर विस्तार का अनुभव करता है। योग दर्शन में आकाश को पंच महाभूत में पहला तत्व माना गया है। यह शून्य नहीं बल्कि संभावनाओं से भरा विस्तार है। गहरी श्वास को लेते समय आकाश की ओर ध्यान लगाने से मन हल्का हो जाता है, तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। खुले आकाश के नीचे किया गया योग श्वास को गहरा और स्वाभाविक सा बनाता है, मन को स्थिरता और स्पष्टता देता है, नकारात्मक विचारों को छोड़ने में मदद करता है, आत्मा को प्रकृति से जोड़ता है। और जब हम आकाश की ओर देखते हुए योग करते हैं तो भीतर भी वैसा ही विस्तार महसूस होता है। प्रकृति के साथ योग में आकाश हमें यही सिखाता है, खुला होना, स्वीकार करना और संतुलन में रहना। इसी के साथ में कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम जो आकाश के नीचे बैठकर के हम कर सकते हैं, जो कि हमारी सारी नकारात्मक विचारों को छोड़ने में मदद करता है। उसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निसार और ऐसे तमाम 8 प्राणायामों में मुख्य सूर्य नमस्कार भी हम आकाश के नीचे यानी खुले आकाश में हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से कई ऐसे योग प्राणायामों की श्रृंखला में हम अपने आप को जोड़ते हुए प्रकृति के साथ योग में जुड़ते जाएंगे। प्रकृति से जुड़ने का मतलब है कि हमारा शरीर वैसे भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो प्रकृति के साथ योग करने का एक अलग महत्व और लाभ भी हमें प्राप्त होता है।

0: तो कैसा लगा आपको गाना? मैं शिव का हूँ सिम मेरे, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय शंकर, जय महाराज, टेक केयर।
1: नमस्कार, राधे राधे, जय जिनेंद्र। सुबह की पहली किरण के साथ आज हम बात करेंगे उस संगीत की जो शब्द नहीं जहां श्रद्धा बोलती है, जो सुर नहीं जहां समर्पण का भाव रहता है। आज पहली किरण में पचरा, देवी गीत, भजन, कीर्तन, डिवोशनल सॉन्ग्स जैसे चीजों पर मैं आपके लिए कुछ खास लेके आई हूँ और जानेंगे कि अलग अलग धर्मों में भक्ति कैसे एक ही धड़कन मन के धड़कती है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो गैनेस्ली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और शो की शुरुआत हो चुकी है पहली किरण के साथ। जी हाँ, शो है आपका पहली किरण और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। आज इस भक्तिमय कार्यक्रम में बात करेंगे उस भक्ति रस पान की जो हम सभी सुबह सुबह बिल्कुल करते हैं। जी हाँ, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, भाव वही होता है, बस नाम अलग होते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, पचरा ये सिर्फ गीत नहीं, माँ दुर्गा को पुकारने की लोक परंपरा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल या फिर अवध क्षेत्र में जब नवरात्रि आती है तो गांव की चौपाल, मंदिर की सीढ़ियां, ढोलक और मंजीरों के साथ गूंज उठती है। आइए आनंद उठाते हैं इस देवी गीत का, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा में पचरा कहते हैं। पचरा में माँ को बेटी की तरह बुलाया जाता है। माँ की महिमा भी होती है और संतान का अपनापन। बिल्कुल, आइए इसी भाव के साथ में आगे बढ़ते हैं आपके अपने शो पहली किरण में।

दोस्तों, देवी गीत शास्त्रीय और लोक दोनों रूप में मिलते हैं। इनमें शक्ति, करुणा और संरक्षण का भाव होता है। देवी गीत हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति सिर्फ युद्ध में नहीं, ममता में भी होती है। इसके अलावा भजन, भजन मन की चुप्पी से निकलती हुई प्रार्थना है। तुलसी, मीरा, कबीर से लेकर आज के सरल भजन तक, भजन हमें ईश्वर के करीब नहीं बल्कि अपने भीतर ले जाता है, उस ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है जो हमारे ही अंदर हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर इस भजन की ओर। भजन वो दीप है जो बाहर नहीं भीतर की ऊर्जा को ऊर्जावान करता है, उजाला फैलाता है और प्रकाशित करता है।

श्रोताओं, अब बात करेंगे कीर्तन की। आखिर कीर्तन क्या है? कीर्तन संगीत का ही एक भाव है, एक स्वरूप है, एक रूप है, जिसके द्वारा हम भक्तिमय होकर अपने ईष्ट को, अपने ईश्वर को याद करते हैं। और कहा भी जाता है, जब पूजा पाठ की बात होती है, जब इबादत की बात होती है, जब प्रभु की बात होती है, तो वहाँ पे भाव ही सबसे ज्यादा काम आता है। कहते हैं ना, प्रार्थना में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। और जब वो प्रार्थना, वो शक्ति, वो भाव सुर और ताल से बंध जाए, फिर पूछना ही क्या, फिर कौन नहीं मोहित होगा, कौन नहीं आपसे जुड़ना चाहेगा। बिल्कुल इस कीर्तन की तरह, कीर्तन सामूहिक भक्ति है। नाम का उच्चारण, ताल में डूबना और डूबा हुआ मन, और लय में झूमता हुआ विश्वास, इन सभी का मिश्रण होता है कीर्तन में। जहाँ एक स्वर नहीं, सैकड़ों दिल एक साथ हरि नाम लेते हैं, वही कीर्तन है। कीर्तन यानी उसकी रटन। आइए लेते हैं एक बार फिर से उन्हीं का नाम।

अब जानेंगे कि अलग अलग धर्मों में भक्ति संगीत का महत्व क्या है। इस्लाम धर्म में जो भक्ति संगीत होती है उसको हम हम्द या नात कहते हैं। हम्द यानी अल्लाह की प्रशंसा। जिन संगीतों में अल्लाह की प्रशंसा हो रही होती है उन्हें हम हम्द के नाम से जानते हैं। और नात यानी पैगंबर मोहम्मद की शान में गाया जाने वाला संगीत। यहाँ सुर नहीं सजदा होता है, किसके लिए? उस ऊपर वाले के लिए।

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी, हमारे मुल्क में क्यों घुसाया, चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामत के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

हम बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म यानी हिम्स, यहाँ पे हम भजन को हिम्स के नाम से जानते हैं। चर्च में गाए जाने वाले गीत ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और उनकी प्रार्थना के लिए होते हैं, और इन गीतों के माध्यम से हम प्रभु यानी यीशु से संवाद करते हैं।

अब बात करते हैं सिख धर्म की, जहाँ पे इस कीर्तन, इस भजन को शब्द नाम से जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्दों को रागों में गाया जाता है और इसी को हम शब्द कहते हैं। शब्द ही गुरु है और संगीत उसकी राह है, ऐसा माना जाता है।

बौद्ध धर्म में इसी को चैंटिंग कहते हैं। किसको? भजन को, कीर्तन को, ईश्वर में जुड़ जाने को, भक्ति में धुन पिरोने को चैंटिंग के नाम से जानते हैं हम बौद्ध धर्म में। मंत्रों का सामूहिक जाप मन को शांत करने के लिए इसका उच्चारण किया जाता है। उच्चारण को इंग्लिश में यानी अंग्रेजी भाषा में चैंटिंग कहते हैं और इसीलिए इसका नाम चैंटिंग पड़ा।

आइए अब बढ़ते हैं एक छोटी सी कथा की ओर। एक गांव में मंदिर, मस्जिद और चर्च पास पास थे। एक दिन बिजली चली गई, अंधेरा घिर आया। तभी मंदिर से भजन, मस्जिद से नाथ और चर्च से प्रार्थना की आवाज आई। अंधेरा वही था, वही अंधेरा, पर डर चला गया था। गांव के बुजुर्ग बोले, ईश्वर का नाम अलग हो सकता है, पर आवाज एक ही होती है, वो भी श्रद्धा की। आइए चलते हैं हम भी इस श्रद्धा को और रंग देते हैं, और रूप देते हैं, और उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उस गुरु की इबादत में सजदा करते हैं।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं पचरा, देवी गीत, भजन, कीर्तन, चैंटिंग जैसे अन्य शब्दों की, जो कि एक संगीत होता है और ये संगीत होता है उस ईश्वर से जुड़ने का माध्यम यानी भक्तिमय माध्यम, जिसमें हम अपने भावों को शब्दों से जोड़ते हुए सुर लय तान से जोड़ देते हैं। पचरा एक देवी गीत है जो कि भोजपुरी, मैथिली और बंगाल की लोकप्रिय परंपरा में गाया जाने वाला देवी दुर्गा और अन्य देवियों को समर्पित भक्ति गीत है, जिसमें भक्त सीधे माँ से संवाद करते हैं, उन्हें घर बुलाते हैं और अपनी मनोकामनाएं बताते हैं। ये गीत अक्सर नीम के पेड़ के नीचे और ढोल मंजीरे के साथ गाए जाते हैं, जो सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव दिखाते हैं। पचरा शब्द का अर्थ है देवी के लिए गाए जाने वाले पांच या अधिक पद या छंद। ये देवी दुर्गा, शीतला माता और अन्य देवियों की स्तुति, महिमा, शक्ति का वर्णन करता है, जैसे उन्हें घर पर बुलाना या रोकना। इसमें भक्त और देवी के बीच सीधा संवाद यानी बातचीत होता है, जिसमें भक्त अपनी पीड़ा और इच्छाएं बताते हुए मां को मनाता है। भक्त सीधे मैया भवानी कहकर संबोधित करता है और उनसे बातचीत करता है। ये गीत लोक परंपरा का हिस्सा है जो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा अन्य राज्यों का भी हिस्सा माना जाता है। ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है ऐसे गीतों में, और तालियां भी बजाई जाती हैं, जिनसे इस गीत संगीत में और भाव उत्पन्न होता है और भक्त भाव भजन से भाव विभोर होकर इस संगीत में रम जाया करते हैं।

श्रोताओं, अब मैं पचरा गीत से संबंधित कुछ और बिंदुओं पर आपसे चर्चा करती हूँ। पचरा गीत मुख्य रूप से नवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर देवी दुर्गा की स्तुति और वंदना के लिए गाए जाते हैं, जिनमें भक्त देवी को घर बुलाते हैं और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। ये गीत अक्सर विवाह समारोहों और लोक अनुष्ठानों में भी गाए जाते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में, जहां इन्हें सामूहिक रूप से गाया जाता है। इस गायन की विशेषताएं होती हैं, ये गीत देवी और भक्त के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है, जहां भक्त देवी को घर आने का निमंत्रण देते हैं और उन्हें रोकने की मिन्नतें करते हैं। महिलाएं अक्सर मिलकर इन गीतों को गाती हैं, जिससे एक सामूहिक भक्ति और आनंद का वातावरण बनता है। भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी जैसी स्थानीय भाषाओं में ये गीत बहुत ही लोकप्रिय है और प्रचलित भी है, जो स्थानीय संस्कृति और आस्था को दर्शाती है। तो आइए हम भी चलते हैं एक प्यारे से देवी गीत की ओर।

तो दोस्तों, पचरा हो या कीर्तन, भजन हो या नाट, अगर मन सच्चा है तो हर सुर हर शब्द ईश्वर तक पहुंचता है। इसी विश्वास के साथ मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हर सुबह भक्ति से शुरू होती है। और जब घर में गूंजते हैं भक्ति के स्वर, कभी ध्यान दीजिए, जिस घर में सुबह सुबह कोई भक्ति गीत बज रहा हो, वहां दीवारें भी शांत लगती हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता महसूस होता है। भक्ति संगीत सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे घर के माहौल में उतरता है।

ऐसे संगीत जो कि भक्ति से जुड़ाव रखते हैं, घर में सहनशीलता बढ़ाते हैं, आपसी बातचीत में मिठास लाते हैं, गुस्सा अपने आप ही आपको धीमा होता महसूस होगा। भजन सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति इंसानियत से शुरू होती है। बौद्ध धर्म में जिसे चैंटिंग कहते हैं, उसका मतलब है उच्चारण करते रहना। कोई भी मंत्र हो, कोई भी भजन हो, अगर हम उसका लगातार उच्चारण करते हैं या वो हमारे कान में गूंजता है, जिससे हमारे जहन पे एक अलग सा ही प्रभाव होता हमें महसूस होता है। उसके बाद मानसिक तनाव कम हो जाता है, घर का वातावरण स्थिर और शांत हो जाता है, नींद और एकाग्रता बेहतर होती है। जब शिव का नाम चलता है तो घर की हवा में भी ठहराव आ जाता है। कोई भी मंत्र हो, अगर उसका उच्चारण निरंतर होगा तो पॉजिटिविटी तो आनी बनती है।

0: बाबा आप नहीं आओगे, पर मुझे विश्वास था आप आए बिना रह नहीं पाओगे।
1: अब मैं आपको एक और कहानी की ओर लेके चलती हूँ। एक छोटी सी कहानी। एक परिवार था जहां रोज सुबह टीवी की आवाज तेज होती थी, बहस, जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन। एक दिन किसी ने टीवी की जगह हल्का सा भजन चला दिया। कुछ नहीं बदला सिवाय माहौल के, और जब माहौल बदला तो लोग खुद ही बदल गए। चलिए हम भी बदलते हैं अपने स्वभाव को, मन को शांत करते हैं, ध्यान करते हैं और दिन की बेहतर शुरुआत करते हैं।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम, जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, दिल का रिश्ता। डॉक्टर सुमेधा के लिए रविवार का दिन हमेशा एक बोझ की तरह होता था। कॉलेज की भागदौड़ और क्लासरूम के शोर शराबे से दूर उनका ये बड़ा सा फ्लैट रविवार को किसी भूत बंगले जैसा शांत और खामोश हो जाता था। उनके पति को गुजरे 7 साल हो चुके थे और इकलौता बेटा कुणाल अमेरिका की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। कुणाल के पास अपनी माँ के लिए साल भर में एक बार आने का भी वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता था। आज भी सुमेधा अपने डाइनिंग टेबल पर बैठी अगले हफ्ते के सेमिनार के नोट्स तैयार कर रही थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सुमेधा ने अचरज से घड़ी की तरफ देखा, दोपहर के 3 बज रहे थे। इस वक्त भला कौन आ सकता है। उन्होंने अपनी ऐनक ठीक की और दरवाजा खोला। सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर वो एक पल के लिए सन्न रह गईं। वो उनके ही डिपार्टमेंट का एक फर्स्ट ईयर का छात्र आर्यन था। आर्यन थोड़ा चंचल, बेहद आत्मविश्वासी और पढ़ाई में औसत लड़का था। नमस्ते मैम, इस तपती धूप में इस इलाके से गुजर रहा था तो अचानक याद आया कि आप यहीं रहती हैं। बस मन किया कि अपनी फेवरेट प्रोफेसर के साथ एक कप कॉफी पी ली जाए। आर्यन ने अपने चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान लाते हुए कहा। सुमेधा को उसकी इस हरकत पर अजीब सी झुंझलाहट हुई। एक छात्र का यूं बिना बुलाए घर आ जाना उन्हें अनुशासनहीनता लगा। उन्होंने कुछ रूखेपन से कहा, देखो आर्यन, मैं अभी अपने सेमिनार के पेपर्स तैयार कर रही हूँ, मेरे पास फालतू गपशप या कॉफी पीने का बिल्कुल वक्त नहीं है। उन्होंने दरवाजा बंद करने का उपक्रम किया, लेकिन आर्यन कहाँ हार मानने वाला था। उसने दरवाजे के फ्रेम पर हाथ रखते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा, अरे मैम, इतनी गर्मी में आप किचन में जाकर पसीने में तर हो, ये मैं हरगिज नहीं चाहूंगा। आप आराम से अपने सेमिनार की तैयारी कीजिए, कॉफी मैं बनाऊंगा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल का रिश्ता। अब तक आपने सुना प्रोफेसर सुमेधा अपने बड़े से फ्लैट में अकेले रहती थीं। उनके पति का देहांत हो चुका था और बेटा कुणाल अमेरिका में रहता था, जिसके पास अपनी माँ के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। एक दिन संडे की दोपहर उनका एक स्टूडेंट उनके घर आ गया। अब आगे आपको एक राज की बात बताऊं, मेरे हाथ की बनी कोल्ड कॉफी पीकर आप सारे 5-स्टार होटल्स का स्वाद भूल जाएंगी। ये कहते हुए उसने अपनी नजर फ्लैट के अंदर घुमाई, मानो वो ये सुनिश्चित कर रहा हो कि इतना बड़ा घर इतना शांत क्यों है। सुमेधा कुछ कह पाती उससे पहले ही आर्यन अपनी मर्जी से अंदर आ गया और सीधे किचन की तरफ बढ़ गया। सुमेधा ठगी सी खड़ी रह गई। वो आमतौर पर बहुत सख्त मिजाज की महिला थी, लेकिन इस लड़के की बेबाकी ने उन्हें निरुत्तर कर दिया था। वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गईं, लेकिन उनका ध्यान अब पेपर्स में नहीं बल्कि किचन से आ रही बर्तनों की आवाजों पर था। कुछ ही मिनटों में आर्यन दो बड़े मग में झागदार कोल्ड कॉफी लेकर बाहर आया। उसने एक मग सुमेधा के सामने रखा और खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सुमेधा ने झिझकते हुए एक घूंट लिया। सच में कॉफी बहुत ही स्वादिष्ट थी। तो मैम, आप इस इतने बड़े घर में अकेले ही रहती हैं? आर्यन ने अपनी कॉफी का घूंट भरते हुए कहा। अकेलेपन से मेरा कोई खास बैर नहीं है आर्यन, मेरा बेटा अमेरिका में है और मैं यहाँ अपने काम में खुश हूँ, सुमेधा ने अपने स्वर में गंभीरता लाते हुए कहा, ताकि आर्यन को अपनी हदों का एहसास रहे। पर आर्यन की आंखें दीवारों पर टंगी उन पुरानी तस्वीरों को पढ़ रही थीं, जिनमें सुमेधा अपने पति और छोटे कुणाल के साथ मुस्कुरा रही थी। आप झूठ अच्छा बोल लेती हैं मैम, पर आपकी ये तस्वीरें और घर का ये सन्नाटा कुछ और ही कहता है। मेरी माँ भी गांव में अकेले रहती है। जब मैं उन्हें छोड़कर शहर आ रहा था तो वो भी यही कहती थीं कि वो अकेली खुश रह लेंगी, पर मुझे पता है कि वो रोती हैं। आर्यन के इस वाक्य में इतनी गहराई थी कि सुमेधा का सख्त आवरण एक झटके में दरक गया। उस दिन के बाद से आर्यन का सुमेधा के घर आना जाना एक आम बात हो गई। कभी वो कोई असाइनमेंट चेक करवाने के बहाने आ जाता, तो कभी बारिश में भीगता हुआ पकौड़े खाने की फरमाइश लेकर पहुंच जाता। सुमेधा शुरू शुरू में उसे डांटती, अनुशासन का पाठ पढ़ाती, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी उसके आने का इंतजार करने लगी थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल का रिश्ता। अब तक आपने सुना, सुमेधा प्रोफेसर थी और इंडिया में अकेले रहती थी क्योंकि उसके पति का निधन हो चुका था और उसका बेटा कुणाल अमेरिका में रहता था। इधर कुछ दिनों से उसका एक स्टूडेंट आर्यन उसके घर आने जाने लगा था और उसका आना सुमेधा को अच्छा लगने लगा था। अब आगे, घर में कोई तो था जो उनसे बहस करता था, जो उनके हाथ का खाना खाकर झूठी सच्ची तारीफें करता था, जो उनके घर के खराब पंखे और फ्यूज बल्ब बिना कहे बदल देता था। घर का वो सन्नाटा अब आर्यन की बेतुकी बातों और ठहाकों से टूट चुका था। दिवाली का त्योहार नजदीक था। सुमेधा इस बार बहुत खुश थी क्योंकि कुणाल ने वादा किया था कि वो इस दिवाली पर घर आएगा। सुमेधा ने पूरे घर की सफाई करवाई, कुणाल के पसंद के ढेरों पकवान बनाए और नए पर्दे लगाए। लेकिन दिवाली से ठीक 2 दिन पहले कुणाल का फोन आया। सॉरी मॉम, कंपनी में एक बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट आ गया है, मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। आप अपने लिए कोई अच्छी सी साड़ी खरीद लेना और खुश रहना। फोन कट गया। सुमेधा के हाथ से फोन छूटकर सोफे पर गिर पड़ा। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। पैसे? क्या एक मां की ममता और उसका इंतजार कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है? उस रात सुमेधा ने घर की एक भी लाइट नहीं जलाई। वो अंधेरे कमरे में बैठी बस अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सुमेधा ने बेमन से दरवाजा खोला। सामने आर्यन खड़ा था जिसके एक हाथ में दियों का बड़ा सा डिब्बा था और दूसरे हाथ में मिठाइयों का पैकेट। उसने शेरवानी पहन रखी थी। हैप्पी छोटी दिवाली मैम। ये क्या, आपने घर में अभी तक एक भी दिया नहीं जलाया और इतनी अच्छी सिल्क की साड़ी पहनकर आप अंधेरे में बैठी हैं? चलिए उठिए, मुझे रंगोली बनानी नहीं आती, वो आपको बनानी पड़ेगी, आर्यन ने अंदर आते हुए पूरे उत्साह से कहा। सुमेधा की आंखों में फिर से आंसू आ गए, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। उन्होंने आर्यन को देखा और भावुक होकर बोली, तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी क्यों नहीं कर रहे आर्यन? मेरे जैसे एक उदास इंसान के पास क्यों आ गए? आर्यन ने दिए जमीन पर रखते हुए बहुत ही प्यार से कहा, क्योंकि मेरी असली पार्टी तो यहाँ है मैम, मेरी माँ गांव में अकेली है और आप यहाँ

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल का रिश्ता। अब तक आपने सुना सुमेधा के बेटे कुणाल के पास अपनी माँ के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। दिवाली पर भी वादा करके नहीं आया। इधर सुमेधा का छात्र आर्यन उसका खूब ख्याल रखता था और त्योहार भी उनके साथ मनाता था। अब आगे मुझे लगा अगर मैं आपके साथ दिवाली मनाऊंगा तो भगवान मेरी माँ के पास भी किसी न किसी को खुशियां देकर जरूर भेज देगा। और वैसे भी आपके हाथ के बने मालपुए खाए बिना मेरी दिवाली पूरी कैसे हो सकती है। उस दिवाली सुमेधा ने जितने दिए जलाए उनसे कहीं ज्यादा रोशनी उनके दिल में हुई थी। उन्हें समझ आ गया था कि रिश्ते सिर्फ कोख से नहीं जन्मते, कुछ रिश्ते रूह से जुड़ते हैं। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। आर्यन अब फाइनल ईयर में था। एक दिन कॉलेज जाते वक्त सुमेधा स्कूटी से फिसल गई। उनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल वालों ने जब उनके बेटे कुणाल को अमेरिका फोन किया तो उसने चिंता तो बहुत जताई लेकिन फिर से अपनी मजबूरियों का रोना रोते हुए कहा कि वो तुरंत नहीं आ सकता। उसने कहा कि वो एक फुल टाइम नर्स का इंतजाम कर देगा। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि बिस्तर पर पड़े होने पर उसका बेटा सिर्फ पैसे भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले। सुमेधा अस्पताल के उस ठंडे कमरे में लेटी हुई शून्य में ताक रही थी। तभी अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला और आर्यन हाफता हुआ अंदर आया। मैम ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि स्कूटी धीरे चलाया कीजिए पर आप सुनती कहाँ हैं? आर्यन की आंखों में गुस्सा और चिंता साफ छलक रही थी। उसने अपना बैग जमीन पर फेंका और सुमेधा के सिरहाने आकर खड़ा हो गया। अगले डेढ़ महीने तक आर्यन ने सुमेधा की वो सेवा की जो शायद कोई सगा बेटा भी नहीं कर पाता। वो सुबह उनके लिए दलिया बनाता, दिन में कॉलेज की क्लासेस अटेंड करता और शाम को आकर सुमेधा को व्हीलचेयर पर बैठाकर पार्क में टहलाता। उसने सुमेधा के दवाइयों का अलार्म अपने फोन में लगा रखा था। सुमेधा उसे देखती और उनकी आंखें भर आती। वो सोचती कि जिस लड़के को उन्होंने अपने घर के दरवाजे से भगाना चाहा था आज वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल का रिश्ता। अब तक आपने सुना सुमेधा का एक स्टूडेंट आर्यन रेगुलर उनके घर पर आने लगा, उन्हें अपने माँ के जैसा प्यार करता, उनके साथ त्योहार मनाता और उनका एक्सीडेंट होने पर एक बेटे से बढ़कर उनकी सेवा की। दूसरी ओर उनका खुद का बेटा कुणाल हर वक्त उनके पास आने में अपनी असमर्थता जता देता। अब आगे, जिस दिन सुमेधा के पैर का प्लास्टर कटा और वो अपने पैरों पर खड़ी हुई, आर्यन उनके पास आया। मैम, मेरी जॉब लग गई है, अगले महीने मुझे दिल्ली शिफ्ट होना है। सुमेधा का दिल एक पल के लिए बैठ गया। वो आर्यन के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने आर्यन का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, दिल्ली जाने से पहले एक काम कर दे, इस मकान के कागजात पर अपना नाम लिखवा ले। मेरे सगे बेटे ने तो मुझे पैसों से तौल दिया, पर तूने मुझे वो प्यार दिया है जो एक माँ को चाहिए होता है। तू अजनबी होकर भी मेरा अपना बन गया। आर्यन मुस्कुराया और उसने सुमेधा का हाथ चूम लिया। मैम, माँ की ममता और उनके आशीर्वाद के बदले जो कागजात मांगे, वो बेटा कैसा? अब मेरी वो माँ है जिसने मुझे शहर की इस भीड़ में एक घर दिया। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पर हर वीकेंड यहाँ आपके हाथ की वो कड़क चाय और मालपुए खाने जरूर आऊंगा। आखिर आपको भी तो मेरी कोल्ड कॉफी की आदत हो गई होगी ना? सुमेधा ने आर्यन को गले से लगा लिया। उनके सोने आंगन में अब हमेशा के लिए खुशियों के फूल खिल गए थे। खून का रिश्ता भले ही सात समुंदर पार था, लेकिन दिल का रिश्ता उनके सीने से लगा हुआ था।

0: सुबह ही आज है 13 अगस्त, 13 यानी सब कुछ आपका, मेरा, मेरे आप, और इसी तरह तो तेरा और मेरा का रिश्ता ये चलता रहता है। वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और देखिए ना कैसे वक्त वापस से ले आता है, मुलाकातें भी दोबारा हो जाती हैं, मिलना जुलना भी दोबारा हो ही जाता है, और बहुत सारी ऐसी बातें जो एक दूसरे से कहनी है, समझना है, सब कुछ तो हो जाता है ना। तो चलिए फिलहाल चलते हैं और देखते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे आपके मॉर्निंग स्पेशल शो में मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के पास क्या क्या आया है, और आज का थॉट आपसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि कहते हैं कि थॉट जो होते हैं ना, ये दरअसल हमारी पूरी लाइफ को बदल देने के लिए सबसे पावरफुल होते हैं। यानी हमारे पास अगर सबसे बड़ी कोई पावर है, कोई शक्ति है, तो वो है हमारी आदतों को बदल देने की क्षमता। हमको पता भी नहीं, लेकिन हम अपनी लाइफ का बहुत कुछ बदल सकते हैं अगर हम अपनी आदतों में बदलाव लाते हैं। एंड अपनी आदतों में ही जो हम होते हैं, दरअसल वहीं हम चलते रहते हैं। सो चलिए फिलहाल आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि भाई आज का मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गोंडा में आरजे अदनान के पास में आखिर कौन सा आया है, और आज का थॉट यानी कि थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट आपसे क्या कुछ कहना है चाहता, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: Now you're listening, Good Morning Koda, with your favorite Aajya Khan.

ये रोज के छोटे छोटे थॉट बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। दरअसल आज का थॉट क्या कहता है, आज का थॉट कहता है कि नफरत को पकड़े रहने से आप फंस जाते हैं। नफरत को पकड़े रहने से आप फंस जाते हैं, लेकिन माफ करने से आप आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि नफरत को पकड़े रहने से आप फंस जाते हैं, लेकिन माफ करने से आप आगे बढ़ जाते हैं। अब इस थॉट के क्या मायने निकल के आ रहे हैं? सो नफरत करने से हम कैसे फंस जाते हैं और माफ करने से कैसे हम आगे बढ़ जाते हैं? सो फंसने का मतलब है कि जब हम किसी से नफरत करते हैं तो उसके बारे में हमारे ख्याल क्या होते हैं? उसके उन चीजों को पॉइंट आउट करना, खुद को दिलासा देना या दूसरों को बताना कि फला फला में क्या गलतियां हैं, वो कहां कहां गलत है, उसके अंदर क्या कमियां हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी की गलतियों को आपको पकड़ना है, उसको ऑब्जर्व करना है, तो आप उस पर अपना वक्त देते हैं। अब चूंकि वक्त देते हैं सो जाहिर है कि कहीं ना कहीं आपका जो खुद का अपने लिए वक्त था वो उसकी कमियों को देखने के लिए जा रहा है। उस शख्स को आप कैसे भी करके ये दूसरों के सामने जताना चाहते हैं कि भाई ये देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कैसा शख्स है ना, और न जाने किस किस से जा करके वक्त निकाल करके कहीं किसी से जा करके उसके बारे में बुरा भला कहना, किसी को फ़ोन कर करके बताना, इस तरह से इसे चलता रहता है। और वक्त किसका जाता है? डेफिनेटली आपका जाता है। सिर्फ वक्त नहीं जाता, सिर्फ वक्त जाता तो एक बार को शायद थोड़ा सा कम नुकसान होता, लेकिन चूंकि हम अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा कंसंट्रेशन, अपनी पार, अपनी विल पार, ये सभी कुछ लगा देते हैं किसी और के लिए, वो भी उसकी कमियों को ढूंढने के लिए। जो कुछ हमारा था वो मारे दुश्मनी के हमने उसे और अपना दे दिया, पूरी तरह से हम उसी के गुलाम हो गए, क्योंकि उसी के बारे में सोच रहे हैं। ज़रा सा कोई जिक्र करता है, लंबी सी बातें छोड़ देते हैं, और इस तरह से हम फंस के रह जाते हैं। वक्त हमारा जा रहा है, एफर्ट्स हमारे जा रहे हैं, डायरेक्शन हमारी चेंज हो रही है, हम एक अलग डायरेक्शन में जा रहे थे अपने लिए सब कुछ बेहतर करने, लेकिन हम रुक चुके हैं और अब हम इस तरफ फंसे हुए हैं। इसीलिए इसको फंसना कहा गया है, यही वह वजह है। और शायद इसीलिए माफ करने को आगे निकल जाना का है, क्योंकि अगर आप माफ करते हैं तो आप अपनी विल पावर वापस से पाने लग जाते हैं, अपना वक्त वापस से आपको मिल जाता है, कंसंट्रेशन आप किसी और चीज में ना करके आप खुद पर कंसंट्रेट कर पाते हैं, आपके डायरेक्शन वापस से मिलने लग जाती है। ये सब कुछ जब मिलता है तो फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। एंड डेफिनेटली आप अपने लिए जिम्मेदार हैं, और वही आज का थॉट ऑफ द डे भी कह रहा है। दिल का सुकून जो होता है, जो एक कचोट होती है, वो भी ख़त्म होती है। सो नफरत को पकड़े रहने से आप फंस जाते हैं, लेकिन माफ़ करने से आप आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब भी किसी शख्स के बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं आप, उसका जिक्र होता है या उसको सामने से कभी देख लेते हैं आप, फिर आपकी मूड, आपका जो कहीं पर भी जा रहा है मूड चेंज हो जाता है, आपके अंदर बहुत सारी बातें चलने लगती हैं। लेकिन माफ़ कर देने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, निकल जाओ, मेरी चीज़ें मैं अपने पे लगाना चाहता हूँ, ये मेरा डिसीजन है, यही कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। आई होप कि आपको आज का मॉर्निंग स्पेशल, थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ज़रूर पसंद आया है, और आप भी इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसको मान भी रहे हैं, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो आज का थॉट ऑफ द डे आपको कितना रियलिस्टिक लगा, आप अपनी लाइफ में इसको कहाँ देखते हैं, और अगर अभी तक आप भी कहीं फंस से रहे थे, क्योंकि हम हर शख्स कोई ना कोई ऐसी चीज़ों में फंस जाता है, मैं खुद भी ऑफकोर्स लाइफ में आपको बता नहीं होता है, अच्छे बुरे सभी की लाइफ में आते हैं, बट जब कोई चीज़ जान लिया जाए उसके बाद उसको एक्सेप्ट करने में तो बहुत महानता वाला काम है, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, बहुत छोटी सी बात है। सो चलिए, अगर आपको भी लगता है कि ऐसा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको अभी एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए और
आगे बढ़ जाना चाहिए। फिलहाल आपके ख्याल क्या है इस बात को लेकर के, ये आप हमको बता सकते हैं। फिलहाल मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग वाला शो है, मॉर्निंग जॉक, आरजे अदनान आपके संग है और साथ ही पूछ भी रहे हैं कि भाई आज का थॉट कैसा लगा, आप इस बात को कैसे ले रहे हैं और आपकी लाइफ में कैसे ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं, सोचिएगा। और अगर कुछ कहना चाहें तो हमेशा आपको पूरा पूरा मौका है कहने का।

0: हाँ जी सुबह एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और वैसे भी इस वक्त आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम को फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। सो आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया है आपके मैसेजेस की तरफ चलने का और बताने का क्या कुछ लिखा है और लिख करके भेज दिया है मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा तक। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैसेज की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्या बात है। यस, महेंद्र जी का है। गुड मॉर्निंग अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। महेंद्र, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। गुड मॉर्निंग टू यू। एंड प्रीति जी लिखती हैं बहराइच से, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आशु जी मौजूद है लखनऊ से। सुप्रभात सर जी, आपको भी सुप्रभात, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। गीता श्रीवास्तव जी हैं, गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी वेलकम करते हैं। और देखिए भाई, क्रिकेट को चाहने वाला भी कोई मौजूद है। गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है। प्रीति जी लिखती हैं बहराइच से, 100% ट्रुथफुल थॉट, किसी को माफ़ कर देना सबसे बड़ी बात होती है। यदि हम किसी को माफ़ करेंगे तो ईश्वर भी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएगा। इसके बाद आशु जी लिखती हैं कि माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, ये बड़े दिल की निशानी है। नफरत मन को भारी कर देती है, माफ़ी मन को हल्का कर देती है। जो माफ़ करना सीखता है वही शांति पाता है। वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट पसंद आया। एंड महेंद्र भी अपनी राय रखते हैं और इसी चैट पर लिखते हैं, सहमत है सर आज के विचार से, थैंक यू सो मच कि आपको भी आज का विचार अच्छा लगा। गीता जी हमारी लिखती हैं, नफ़रत एक दलाल की तरह है, दिल में किसी के लिए नफरत है तो इस दलदल दलदल की तरह है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। वही माफ़ करना हाईवे जिस पर हम हमारी दिल की गाड़ी फर्राटे मारते हुए आगे बढ़ती है। नाइस थॉट। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है पर मुझे जो है कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं है धसना और ये दलदल में। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि ये जो नफ़रत है ये एक दलदल की तरह है, किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने ही लिए। हम किसी और के लिए नफ़रत अगर रखते हैं तो इसमें भी प्रॉब्लम हमारी होती है। मतलब एक बार सच में बता रहे हैं, देखिए गुस्सा एट अ टाइम आता है, गुस्सा हो जाए, आप जितना बुरा किसी के बारे में सोचना है सोच भी लीजिए, लेकिन कुछ पल बाद जब आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि बहुत लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी के बारे में सोचते जा रहे हैं इससे किसका लॉस हो रहा है, किसकी एनर्जी, किसकी विल पावर, किसका टाइम, किसके एफर्ट्स, किसका कंसंट्रेशन भंग हो रहा है, किसका बर्बाद हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो सोच रहा है उसका हो रहा है। तो ये शायद हमको समझ में आ जाएगा उस पल और उसी लम्हे हम इस बात से दूर हो जाएंगे। और देखिए इसी कड़ी में हमारे विकास जायसवाल जी गोंडा से ही सुनते हैं और आप भी आ गए हैं, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सो देखिए भाई, कई सारे हमारे जो साथी हैं, इस फैमिली के मेंबर्स हैं, वो आ चुके हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में और अब गुड मॉर्निंग गोंडा कुछ ज़्यादा ही एनर्जी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ने वाला है। तो चलिए भाई, हम भी कुछ ऐसा फ्लेवर लेकर आते हैं इस मॉर्निंग शो में जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला। अब आप सोचेंगे काहे पसंद आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि कुछ पुराना कुछ नया ऐसा तड़का लगता रहेगा और इसी तड़के के बीच में हम ऑफ़ कोर्स आपको बहुत सारी बातें बताने वाले हैं और साथ ही साथ आज तो आपको आपकी सिटी की अपडेट भी मिलने वाली है। सो इसलिए आपको कहीं जाना नहीं है बल्कि बने रहना है अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ। और फिलहाल ये कुछ खूबसूरत से गाने आपके लिए हैं।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: हाँ जी सुभाई, जिस बात का मैंने बोला था यानी आपको ले चलने का सिटी अपडेट की तरफ, उसका फिलहाल वक्त आ गया। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न, प्रश्न बहुत सिंपल सा है और मुझे लगता है ये इसका अलग अलग मानना होता है कि कॉन्फिडेंस को आप क्या समझते हैं। ये जो हम आत्मविश्वास की बात करते हैं किसी भी शख्स के लिए, स्पेशली जब वो लो फील करता है या जब वो कहने से डरता है, जब वो कुछ करने से डरता है, तो हम एक वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो है कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं, कॉन्फिडेंस के मायने आपके लिए क्या हैं, ज़रा सोचिए और कमेंट करके चैट बॉक्स पर बताइए। साथ ही साथ चलिए फिलहाल आपको ले चल रहे हैं गोंडा अपडेट्स की तरफ, यानी कि आपके सिरी अपडेट में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो चलिए फिलहाल वक्त आ गया है आपको बताने का कि क्या कुछ है जो हम आज लाए हैं आपकी सिटी की अपडेट में। सो यस ऑफ कोर्स कुछ बातें हैं जिनको आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला जो है वो है परसपुर की खबर, और ये उपखंड कार्यालय में कल चूंकि बुध था और इसमें आयोजित बिल समाधान योजना में 7 कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया। उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार और अवर अभियंता ने बताया कि चरसड़ी में लगाए गए जांच शिविर में 28 घरों की जांच की, बिल बकाया मिलने पर 7 कनेक्शन काटे गए। अभियान में जुड़े 56,000 का राजस्व जो है वसूला गया और 18 बड़े बकायेदारों को नोटिस दिया गया है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि फिलहाल अगली जो खबर आ रही है उसको लेकर के, सो अगली खबर करनैलगंज विश्नोहरपुर से आ रही है, जहां सरयू नदी के जलस्तर को बढ़ने की बात सामने आ रही है और फिलहाल हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है सरयू नदी। जी हां, सो सरयू नदी के जो वाटर लेवल है ये कल बुध को बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई। एल्गिन ब्रिज पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 8 घंटे में जो वाटर लेवल है वो 8 सेंटीमीटर बढ़ा, यानी तकरीबन हर घंटे 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। शाम 4 बजे नदी का जो वाटर लेवल था वो 105.88 मीटर पहुंच गया, जो कि खतरे के निशान से 1 से 6.07 मीटर से महज 19 सेंटीमीटर नीचे है। सो जल स्तर बढ़ने का जो रुख है वो बना रहने से नदी के किनारे गांव में निगरानी फिलहाल बढ़ा दी गई है, और कल ही सुबह 8 बजे एल्गिन ब्रिज का जो सरयू का जल स्तर है 105.80 मीटर दर्ज किया गया था, उस वक्त ये खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर नीचे था। शाम 4 बजे बढ़ते हुए जल स्तर बढ़कर के 105.88 मीटर हो गया। इस दौरान बैराजों से पानी की कुल डिस्चार्ज जो है वो 293,365 क्यूसेक से घटकर 284,717 क्यूसेक रह गया। इसके बावजूद एल्गिन ब्रिज पर पानी बढ़ता रहा है। सो फिलहाल तटीय इलाकों में जो है वो सतर्कता बढ़ा दी गई है और कहीं ना कहीं लगातार इसकी निगरानी भी की जा रही है। अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल ऑफ कोर्स बारिश से जुड़ी हुई आ रही है, क्योंकि कल बुध को भी ज़िले में मौसम का मिजाज अलग था। कटरा बाजार क्षेत्र में भी दोपहर के बाद में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। गोंडा शहर और आसपास के इलाकों में बारिश नहीं होने से दिन भर इसका उमस का भी चूंकि माहौल दिखा था। जी हाँ, क्योंकि कुछ जगहों में बारिश देखी गई बट कुछ जगहों में बारिश नहीं होने से भी काफ़ी ज़्यादा उमस जो है वो बढ़ गई। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल टीकाकरण को लेकर के आ रही है जानवरों के। जी हाँ, सो ज़िले में गला घोंटू के जो आधे अधूरे टीकाकरण के बाद अब मुँह पका खुरपका यानी FMD अभियान भी अफेक्टेड हो रहा है। सो पैरावेटों की हड़ताल के चलते जो लक्ष्य है उसके हिसाब से रोज़ाना टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, बावजूद इसके पशुपालन विभाग के अधिकारी स्थिति सामान्य होने का दावा फिलहाल करते नजर आ रहे हैं। लेकिन पैरावेटों में हाल ही में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दे करके प्रति टीका 5 रुपये मानदेय बढ़ाने और विभागीय सुविधाएं देने की मांग की थी। सो कटरा बाजार के जो निवासी हैं उन्होंने बताया कि जुलाई में उनकी भैंस बीमार हो गई थी, पशु चिकित्सकों से कांटेक्ट करने पर मौके पर कोई नहीं पहुंचा, हालत बिगड़ने पर झोला छाप से उपचार कराना पड़ा। बसईपुरवा निवासी ने बताया कि स्थानीय पशु चिकित्सालयों में डॉक्टर्स की नियमित मौजूदगी नहीं होने से उपचार में परेशानी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सो आपको बता दें कि पशुपालकों के हिसाब से लंपी स्किन या FMD और ब्रुसेलोसिस जैसी जो बीमारियां हैं इससे बीते सालों में कई पशुओं की चूँकि मौत हुई है, और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया भी है कि पशुपालकों से मृत पशुओं की सूचना नहीं मिलती है, जिससे विभाग के पास मौत का सही आंकड़ा नहीं होता है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि भाई एक बीमार पशु से पूरे गांव पर खतरा रहता है। जी हाँ, सो पशुपालन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी जो हैं उन्होंने बताया है कि आधा अधूरा टीकाकरण बेहद ख़तरनाक है, इससे बीमारी फैलने के साथ पशुपालकों को जो आर्थिक नुकसान है वो तो होता ही है, और टीकाकरण के बाद 14 से 21 दिन तक में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। सो फिलहाल पशुपालकों के सहयोग की भी कमी जो है वो सामने आई है। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि घर घर टीकाकरण के साथ ही पशुओं की टैगिंग की जा रही है, लेकिन कई पशुपालक
OTP अवेलेबल नहीं करा रहे हैं, इससे ऑनलाइन आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। सो ये रही अगली अपडेट जो कि पशु विभाग से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल आ रही है, जी हाँ, ठगी के शिकार कारोबारी के 1 लाख वापस कराए जाने की बात तरबगंज से आ रही है। सो पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार हुए जो ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं उनके खाते से निकाले गए 1 लाख रुपए वापस करा दिए हैं, और पूरे गाना बादलपुर निवासी जो हैं उनके मोबाइल पर 22 जनवरी को एक कॉल आई थी जो कि फर्जी थी। फ़ोन करने वाले ने उनकी गाड़ियों में डीजल भरने की बात कह करके भुगतान के लिए QR कोड भेजा था। सो चालक के कंफर्मेशन करने के बाद अरविंद ने इसके ज़रिए 1 लाख रुपए भेज दिए। बाद में पता चला कि रकम पेट्रोल पंप के खाते में नहीं बल पहुंची है। सो ठगी का एहसास होने पर अरविंद ने तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर और NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद तरफगंज थाने की साइबर हेल्प डेस्क ने जनपदीय साइबर हेल्प की मदद से नोडल अधिकारियों से कॉन्टैक्ट करके पूरी रकम होल्ड करा दी, और 11 अगस्त यानी मंगलवार को पूरी धनराशि जो है वो पीड़ित के खाते में वापस फिलहाल कर दी गई। सो रकम वापस मिलने से पीड़ित ने टीम की सराहना भी की, और फिलहाल कोतवाल ने बताया कि ठगी की गई रकम शिकायतकर्ता के खाते से वापस कर दी गई है, और उन्होंने अपरिचितों से खाता का जो उसकी डिटेल्स है साझा नहीं करने की जो है वो अपील की है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज 5 सम्मेलन है, पंच सम्मेलन रोजगार मिशन पर भी चर्चा होनी है। सो मोतीगंज में जिला पंचायत सभागार में आज जिला स्तरीय पंच सम्मेलन होना है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके अधिकारियों कर्मचारियों को मिशन के उद्देश्यों, उसके प्रावधानों, क्रियान्वयन और इन सब की जानकारी जो है वो दी जानी है। उपायुक्त श्रम रोजगार जनार्दन प्रसाद यादव ने बताया कि सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो जमीनी स्तर पर मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जन प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की जो सक्रिय भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना है। तकरीबन 11 बजे प्रशिक्षण शुरू होगा। सम्मेलन में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, प्रत्येक ब्लॉक से 2 प्रधान रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक और ग्राम प्रशासक समेत कई लोग जो हैं वो शामिल होने की बात सामने आ रही है। सो फिलहाल ये सभी जो अपडेट्स थी वो लगातार हमने आपको बताई, और इसी के साथ साथ एक अपडेट और आ रही है जो कि सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली से है। सो आपको बता दें सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली महाविद्यालय के रोड सेफ्टी क्लब की तरफ से सड़क सुरक्षा विषय पर पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन किया गया, और जो विद्यार्थी हैं जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के जरिए पोस्टरों के जरिए यातायात नियमों के पालन और सुरक्षित सड़क व्यवहार का संदेश भी दिया है। फिलहाल प्रतियोगिता में जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल, नशे में वाहन ना चलाने, वाहन चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करने और यातायात नियमों का पालन करने जैसे विषयों पर भी कहीं ना कहीं पोस्टर्स को बनाया था और बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। सो आयोजन का जो विभाग है वो अंग्रेज़ी विभाग की प्रवक्ता डॉक्टर मोनिका श्रीवास्तव ने किया था, और प्रतियोगिता में तहसीन अंसारी जो हैं वो फर्स्ट, हिमांशी वर्मा सेकंड, और सुमैया और श्रेया ने ज्वाइंट रूप से तृतीय स्थान का प्राप्त किया, और जबकि कशिश को कॉन्सोलेशन प्राइज दिया गया। सो फिलहाल ये जो थी ज़रूरी जानकारी आप तक हमने पहुंचा दी, और साथ ही साथ एक अपडेट और आ रही है, चूँकि 15 अगस्त अब बिल्कुल आ ही गया है, आज 13 है और परसों हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करने वाले हैं यानी कि सैटरडे में। सो उससे पहले बाज़ार की अगर हम बात करें तो पूरे बाज़ार में इस वक्त जो है वो माहौल तिरंगामय हो चुका है, और पोशाक अगर हम देखेंगे तो कई तरह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पोशाक आपको नज़र आने वाली है, और हर तरफ जब तिरंगा दिखने लगता है तो एक अलग ही जज्बा आ जाता है अपने दिल में, एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही जोश जग जाता है। फिलहाल हम सभी लोग इस 15 अगस्त को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में सेलिब्रेट करने वाले, और हाँ भाई जाहिर सी बात है 89.6 FM कहाँ पीछे रहने वाला है, वो भी पूरे जोश व खरोश के साथ में सेलिब्रेट करने वाला है, मनाने वाला है 15 अगस्त। फिलहाल आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थल 89.6।
6 FM।

अच्छा, वैसे तो हमारा शौक काफी रहा है मिट्टी में खेलने का, और बहुत सारे ऐसे गेम्स हम लोगों के रहते थे जिसको हम लोग बहुत अच्छे से मिट्टी में ही खेला करते थे। अब अगर आपको ये बता दें कि भाई कोई ऐसा 16 साल का बच्चा है जो फिलहाल तालाब में अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, तो आप क्या यकीन करने वाले हैं कि आखिर वो खेल खेल पर ही तो बिता रहा होगा? नहीं, खेल तो कुछ वक्त के लिए होता है, चाहे उसमें तैरना हो या कोई भी खेल खेलना हो, बस वो कुछ वक्त के लिए होता है। लेकिन जब कोई अच्छा खासा वक्त मजबूरी में तालाब में बिताए, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? कभी ख्याल आया है? नहीं आया है तो इस वक्त शायद आना चाहिए। चलिए फिलहाल आप थोड़ा सा सोचिए कि ऐसा क्यों हो सकता है। तब तक के लिए हम इस सॉन्ग के उस पार आकर के बताते हैं कि दरअसल पूरा

माजरा क्या है? कौन है 16 साल का वो बच्चा जो फिलहाल तालाब में अपना वक्त बिताने पर मजबूर है, और ऐसा क्यों? ये भी हम आपको बताने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले ही शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल आप सुनते रहिए अपना गुड मॉर्निंग गोंडा शो, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन पर। स्टे ट्यून्ड।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: सो बाजीगर एक्सक्लूसिव के बाद अब फिलहाल चूंकि हमने आपसे कुछ वादा किया था कि भाई एक 16 साल के बच्चे के बारे में बताने का कि आखिर वो तालाब में क्यों रहता है, क्या वजह है और वो एक मजबूरी के तहत रहता है, आखिर कौन है ये बच्चा और क्या है इसकी मजबूरी, आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में आपके मॉर्निंग चौकार अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

वही 16 साल का एक बाल है जो रहता है तालाब में। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, यहाँ से एक ऐसी तस्वीर सामने वायरल हुई है जहाँ 16 साल का एक मासूम इकबाल पिछले 5 साल से अपना घर छोड़ करके दिन रात तालाब में पानी में रहने को मजबूर है। चूँकि लगातार पानी में रहने की वजह से उसके हाथ पैर की चमड़ी गल चुकी है और हालात ये है कि किनारे से लोग उसे बिस्किट चूड़ा फेंक कर देते हैं जिसे खाकर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इकबाल किसी शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में ऐसा कर रहा है, क्योंकि ज़मीन पर आते ही उसके पूरी बॉडी में बहुत ही असहनीय और तेज़ जलन होने लगती है, जबकि पानी में उतरते ही फौरन राहत मिल जाती है। जागरूकता और चिकित्सकीय परामर्श के अभाव में उसका परिवार इस स्थिति को अदृश्य शक्ति का साया मान रहा है। वहीं दूसरी तरफ बेहद ख़राब आर्थिक स्थिति के चलते परिवार किसी बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज कराने में पूरी तरह से फेल हो रहा है। सो फिलहाल कहीं ना कहीं गरीबी की सिचुएशन में सबसे बड़ी आफत जो है ये बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूकता और चिकित्सकीय परामर्श के अभाव में परिवार इसे कहीं ना कहीं अदृश्य शक्ति का साया मान रहा है। इसके अलावा परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब है, जिसके चलते वो हॉस्पिटल में इकबाल का इलाज कराने में नहीं हो पा रहे, यानी असमर्थ हैं। अब ज़रा सोचिए कि लगातार 24 घंटे कोई भी पानी में रहे, स्पेशली तालाब में, तो उससे क्या होगा? जाहिर है इसकी वजह से इकबाल के जो बॉडी है इस पर बेहद जानलेवा असर पड़ रहा है, जिससे उसके हाथ पैर और पूरी बॉडी की चमड़ी गल करके सफ़ेद पड़ चुकी है। इस स्थिति के चलते वो लगातार गंभीर सर्दी, खांसी और निमोनिया जैसी खतरनाक प्रॉब्लम से भी जूझ रहा है। सो तालाब के किनारे जुटने वाले स्कूली बच्चे और वहाँ के लोग जो है वो दया भाव से उसे बिस्कुट चूड़ा फेंक कर देते हैं जिसे खाकर वो अपनी ज़िंदगी बचाने को मजबूर है। डॉक्टर्स के हिसाब से ये किसी अदृश्य साय का नहीं बल्कि दुर्लभ त्वचा या न्यूरोलॉजिकल बीमारी का नतीजा है, जो वक्त पर इलाज ना मिलने पर जानलेवा साबित हो सकता है। और अब स्थानीय लोग उसे इलाज के लिए आगे आकर प्रशासन से मदद की गुहार फिलहाल लगा रहे हैं। लेकिन सच में ज़रा ये सोचिए कि कितनी गंभीर बीमारी है कि एक बच्चा 16 साल का पिछले 5 साल से तालाब में ही रह रहा है। अब कोई भी सीज़न हो, कोई भी वक्त हो, वो उसी में रहता है, क्योंकि बाहर आने पे उसको बहुत ही तेज़ जलन होती है जो कि सहने लायक नहीं होती है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। फ़िलहाल जो वहाँ के आसपास के लोग हैं वो अपनी तरह से तो हेल्प करते हैं, बिस्किट और चूड़ा फेंक करके उसको खाने को देते हैं, लेकिन सच में ये एक हैरान करने वाली बात है। और कहीं ना कहीं आसपास के लोकल लोग कहते हैं कि भाई प्रशासन अब इसमें मदद करे, उस बच्चे का जो है वो ट्रीटमेंट हो ताकि उसको वक्त रहते बचाया जा सके। फिलहाल क्या आपने इससे पहले कभी इस बीमारी के बारे में सुना था? क्या कोई और केस ऐसा है जिसे आप जानते हैं?

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
0: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
0: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: भाई साहब, ये कानपुर लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है, ये एक्सप्रेसवे ना होकर के ऐसा लग रहा है जैसे न जाने कौन सी मुसीबत है और कदम कदम पर जो है वो फिलहाल मरम्मत की दरकार मांग रही है। सो आइए, फिलहाल एक अपडेट है, ये जो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसको लेकर आपके मॉर्निंग वाले शो में आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

फिलहाल ये एक्सप्रेसवे ना होकर के ऐसा लग रहा है कि भाई आफत बनती जा रही, क्योंकि लगातार 100-100 मीटर के हिस्से को उखाड़ करके दोबारा बनाया जा रहा है और जगह जगह पैचवर्क और धसी मिट्टी भी जो मिल रही है। सो भाई कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इसके बनाने वाले में गंभीर लापरवाही सामने आई है, चूंकि कहीं ना कहीं पड़ताल में जगह जगह खराब निर्माण के निशान मिल रहे हैं। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर एक महीने बाद से ही बड़े पैमाने पर मरम्मत चल रही है। सुपरताल में जो है 39.5 किलोमीटर पर पुल में दरार भरने का काम मिला है, 39.8 किलोमीटर पर सड़क की बड़े पैमाने पर कटाई करके मरम्मत हो रही थी। इस दौरान चार लेन में से सिर्फ एक लेन पर यातायात चल रहा था। 41 किलोमीटर 400 मीटर पर के पास सड़क निर्माण पर मिट्टी के भारी ढेर मिले। पूरे एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ तकरीबन ऐसे 42 जगहों को देखा गया है। 47 किलोमीटर तक तीन बड़े पैचवर्क्स जो हैं वो दिखाई दिए हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर 7 जगहों पर सड़क असमतल महसूस हुई है और कानपुर से लखनऊ की दिशा में 60 किलोमीटर के पास सड़क का 100 मीटर लंबा हिस्सा उखाड़ करके दोबारा बनाया जा रहा है। फिलहाल जो है जगह जगह अप्रोच जो है रोड वो धंसने लगी है। इसके अलावा आपको बताने वाले हैं कि भाई सीतापुर लखनऊ बरेली हाईवे जो है वो 6 लेन के किए जाने की बात सामने आ रही है। अवध और रुहेलखंड के बीच में रफ्तार के लिए सीतापुर लखनऊ बरेली हाईवे यानी NH 30 को 6 लेन करने का फैसला फिलहाल किया गया है। NHI ने पहले फेज़ में लखनऊ से सीतापुर तक का 65 किलोमीटर का हिस्सा 6 लेन का प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा है। साथ ही निर्माण के लिए टेंडर भी आवेदन इसका आमंत्रित किया गया है। इस परियोजना के लिए लखनऊ सीतापुर लखीमपुर खीरी हरदोई शाहजहांपुर और बरेली जिलों की लाखों की आबादी को फायदा पहुंचाने की बात बताई गई है। पहले फेज में लखनऊ रिंग रोड से इसका हाईवे के सीतापुर तक के हिस्से को 4 लेन से 6 लेन बनाने का डिटेल प्रोजेक्ट जो है रिपोर्ट तैयार की गई है और NHI के सूत्रों के मुताबिक अगर चरण में सीतापुर से बरेली तक का हिस्सा शामिल किया जाएगा लखनऊ से सीतापुर तक 65 किलोमीटर हाईवे को चौड़ा करने पर 1,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। NHI के मुख्य महाप्रबंधक गौतम विशाल चरण पहाड़ी ने बताया कि ये टेंडर अभी आमंत्रित किए गए हैं, जैसे ही केंद्रीय मंत्रालय की मंजूरी मिलती है इन टेंडर्स को फिलहाल खोल दिया जाएगा। ये कुछ ज़रूरी अपडेट्स थी जो कि आपको बतानी थी, आप तक पहुंचानी थी। आई होप कि आप भी अब इस अपडेट से अपडेटेड हो गए हैं और फिलहाल अब अपडेटेड होते रहिए भैया कुछ बेहतरीन से सॉन्ग्स के साथ में, क्योंकि लगातार आप सॉन्ग सुनते जा रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप एंजॉय भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ये सॉन्ग्स ही हैं जो हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा महसूस कराते हैं। फिलहाल आपको अंदाज़ा है, यानी हैव यू एनी अंदाज़ा कि कौन सा नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है? अगर नहीं है तो चलिए आपको सीधे उस सॉन्ग की तरफ ले चलते हैं जो नेक्स्ट सॉन्ग आपका बनने वाला आपके मॉर्निंग वाले शो में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ मिल करके। फिलहाल आपने ट्यून किया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: एक्सक्यूज मी मैम।
1: यस सर।
0: क्या ये लंच टाइम है?
1: जी नहीं सर, एक्चुअली आज बैंक में कैश खत्म हो गया है, आप कल आइएगा।
0: मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी।
1: सर थोड़ा शांति से काम लीजिए और धीरज से बात कीजिए।
0: ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, शांति को बुलाइए, आज उसी से बात करूँगा, और साथ में धीरज को भी बुलाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि ये दोनों मुझे बिना बताए साथ में कल क्या रहे।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल जम्मू में एक ऐसी मुसीबत है जो कि आप कहेंगे सुनकर हैरान होंगे कि भाई ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है जम्मू वालों पर। सो फिलहाल ये मुसीबत में भी आपकी हमारी भी पड़ सकती, इसलिए इसको पहले से ही जानना है जरूर।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो अगर आप रीजन जानेंगे कि भाई जम्मू में स्कूल्स क्यों बंद किए गए हैं, तो आप सच में जान करके हैरान होने वाले हैं। पता है क्या हुआ है भाई? दरअसल हुआ ये है कि जम्मू के राजौरी ज़िले में 2 दिनों के अंदर 9 लोगों को आवारा कुत्तों के ज़रिए काटे जाने का एक हैरान करने वाला मामला फ़िलहाल सामने आया है। और इसी के बाद कुत्तों को पकड़ने के लिए प्रशासन ने 24 स्कूल्स को बंद कर दिया है, पुलिस और CRPF के जवानों को तैनात कर दिया है। सो क्या ऐसे हालात में सुरक्षा बलों को उतारना, स्कूल बंद करना प्रशासन का सही फैसला था? वैसे आपकी राय क्या है, ये आप भी सोच करके बता सकते हैं। लेकिन दरअसल ये सच में काफ़ी अजीब बात है कि 9 लोगों को काटा गया है और जिसके बाद में 24 स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। सो क्या स्कूल्स बंद करना कोई सॉल्यूशन है या स्ट्रेडॉक्स की समस्या पर कोई परमानेंट एक्शन होना चाहिए? आपका क्या मानना है, आप इसको लेकर कैसे देखते हैं, आप ज़रूर सोचिए और बताइए। वैसे सच में जब मैंने भी इस मामले को सुना तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया। फ़िलहाल तो इतना ज़्यादा अटैक, बट अटैक से ज़्यादा इस पर जो लिया गया डिसीजन था वो थोड़ा सा ज़्यादा ही अलग लगा कि भाई इसमें क्या है कि फ़िलहाल 24 स्कूल्स को बंद ही कर दिया गया है, पुलिस और CRPF को लगा दिया गया है। सो फ़िलहाल अब क्या सोचकर किया गया है, कैसे किया गया है, ये तो खैर बातें आप ख़ुद भी समझ सकते हैं और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ख्यालों में होगी। लेकिन सच में ये घटना अगर पूरा हम देखें तो ये सच में हैरान करने वाली बात है। और कहीं ना कहीं हैरानगी तो ऑफ कोर्स आपको भी जाहिर सी बात है हो रही होगी। सो चलिए भाई, फ़िलहाल आपका क्या है मानना और आप इसको कैसे देखते हैं, आप ज़रूर हमको कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल मुझे लगता है कि आपको ले चलें ऑफ कोर्स अगले गाने की तरफ और बताएं कि अगला गाना क्या है, कौन सा है और क्या कुछ होने वाला है अगले सॉन्ग में। फ़िलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा पर।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJMPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: ये इतना आसान नहीं होने वाला, नहीं ये जल्दी पिघलने वाली। तो ठीक है मैडम, कितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम।

0: हाँ जी, और इसी के साथ ही साथ आपको अब ले चलने वाले हैं कुछ ऐसी ज़रूरी अपडेट्स की तरफ जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आरजे अदनान जब लाते हैं तो कई चीज़ों को एक साथ लेकर के आते हैं, और स्पेशली होती है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की। सो फिलहाल हम आपको बताने वाले कुछ ज़रूरी बातें आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you are listening, Good Morning Gonda, with your favorite आरजे अदनान।

सो भाई कोई भी इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है या फेलोशिप प्रोग्राम होता है, सो मैं आप तक ले आता हूँ ताकि आप में से जो भी ऑफ कोर्स इसके बारे में नहीं जानते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं अपने करियर को लेकर के या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो उनको बेहतर मौका मिल सके। फिलहाल हम आपको बताने वाले हैं यूनेस्को का इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। चूँकि अभी जो हाल ही में ग्रेजुएट हुए यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये एक मौका हो सकता है, जो कि 1 से 6 महीने तक ये मौका मिलने वाला है और 31 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो क्या है पूरी डिटेल्स आइए बताते हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को की तरफ से कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक एंगेजमेंट इंटर्नशिप 2026 के लिए एप्लीकेशन आमंत्रित किए जा रहे हैं और ये इंटर्नशिप स्टूडेंट्स और हाल ही में ग्रेजुएट हुए जो यंगस्टर्स हैं के लिए शानदार मौका है। सो इसके तहत क्या है, कम्युनिकेशंस, सोशल मीडिया, वेब मैनेजमेंट, प्रेस रिलेशंस, फोटोग्राफी और पब्लिशिंग जैसे एरियाज में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका मिलने वाला है। सो इसमें मिलने वाला है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कैसे आइए बताते हैं। दरअसल चुने गए जो कैंडिडेट्स हैं वो डिवीजन फॉर कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक एंगेजमेंट के साथ में काम करेंगे। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान देंगे जिनसे यूनेस्को की एक्टिविटी को डिजिटल और पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स पर बहुत अच्छे से दिखाया जा सके। इस दौरान कैंडिडेट्स को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस टेक्निक्स, वेब आर्किटेक्चर, लेखन, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर और कंटेंट मैनेजमेंट का जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साथ ही वो प्रेस से जुड़े मामलों को संभालने, टीम वर्क और कई सारे सांस्कृतिक वाले

माहौल में बेहतर तालमेल बनाने जैसी स्किल्स भी सीख पाएंगे। सो क्या क्या योग्यताएं ज़रूरी है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए ऐसे यंगस्टर्स को? योग्य होने के लिए जो आवेदक की उम्र है वो अप्लाई करते वक्त कम से कम 20 साल होनी ही चाहिए। कैंडिडेट बैचलर डिग्री के तीसरे या लास्ट जो है वो ईयर में हो, मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम में नॉमिनेट हो, या पिछले 12 महीनों में इनमें से कोई भी डिग्री पूरी कर चुका हो। सो टेक्निकल या वोकेशनल असाइनमेंट के लिए जो है वो एप्लीकेंट रिलेटेड संस्थान में पढ़ाई के लास्ट ईयर में हो या पिछले 12 महीनों में ग्रेजुएट हुआ हो। इसके अलावा कैंडिडेट को इंग्लिश या फ्रेंच भाषा पर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम और ऑफिस सॉफ्टवेयर का ज्ञान उसके पास होना चाहिए। अच्छे इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। सो इस इंटर्नशिप की जो एक अवधि है वो 1 से 6 महीने होगी। इसके अलावा इंटर्नशिप के दौरान उसे सीधे जुड़े कामों की वजह से उनके जोखिमों के लिए सीमित वर्कप्लेस इंश्योरेंस कवरेज भी प्रदान किया जाएगा। सो इसके अलावा कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जो भी योग्य उम्मीदवार हैं वो 31 दिसंबर 2026 तक यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट careers.unesco.org फिर जॉब वाले सेक्शन में जाएंगे, उस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मांगी गई जो भी ज़रूरी जानकारी है उसको अच्छे से पढ़ना है और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप अपने मोबाइल या ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके आसानी से लॉगिन भी कर सकते हैं। फिलहाल एक नया नाम आया हुआ है, वो है ई समुद्र पोर्टल। अब आप जाहिर सी बात है जानना चाहेंगे कि ये ई समुद्र पोर्टल क्या है। ये हम आपको आकर के बताते हैं इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार, क्योंकि आप मौजूद हैं गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल हमारी आपकी बातचीत का जो सिलसिला है वो चल पड़ा है और अब वापस से भी हम आने वाले आकर के कुछ और भी बातों को आपसे कहने वाले हैं, बताने वाले हैं, और ये सिलसिला यूं ही आपका जारी रहने वाले हैं गोंडा FM पर ऑफ कोर्स। और फिलहाल हमने जो इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में आपको बताया है, सो अगर आपके काम की है तो आप इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। और अगर आपके काम की नहीं है तो जिस भी के काम की हो उन तक आप ये खबर ज़रूर पहुँचा दिएगा, क्योंकि आपके मॉर्निंग वाले शो में आरजे अदनान ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की बातें लेकर आते हैं, बताते हैं, ताकि भाई आपसे कोई भी मौका जो है वो चूके ना और आप जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो बेहतरीन ढंग से एक्सप्लोर कर पाएं।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 981 976, 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: हाँ भाई, रट्टा तो मार ही चुके होंगे और फिलहाल अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर अभी क्या है जो आपके लिए है। यस ऑफ कोर्स, ई समुद्र पोर्टल के बारे में, ताकि आपको पता चल जाए भाई ये ई समुद्र पोर्टल आखिर क्या चीज़ है, और आप जानने के बाद आपको भी इसकी नॉलेज ज़रूर हो जाए। सो चलिए अभी फ़िलहाल आपको ले चलते हैं ये बताने के लिए कि भाई ये ई समुद्र पोर्टल है क्या चीज़ और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और फिलहाल इसका इतना टर्म जो इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भैया ई समुद्र पोर्टल आखिर क्या चीज़ है, आपको बता दें कि दरअसल ये एक सिंगल विंडो डिजिटल पोर्टल है और इसे भारत के समुद्री एरिया के कामकाज को आसान और तेज़ बनाने के लिए बनाया गया है। सो इस पोर्टल के ज़रिए जो हमारे इंडियन नाविक हैं इनको अपना काम आसानी से करने में मदद मिलती है। इससे नाविकों को शिपिंग कंपनीज, भर्ती होने वाली एजेंसियों, प्रशिक्षण संस्थानों और बंदरगाहों से जुड़ी सेवाएँ एक ही जगह मिल जाती है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री ने ई समुद्र पोर्टल लॉन्च किया है, इस वजह से। दूसरा है एवरेस्ट रॉकेट इंजन, क्या है ये? सो एवरेस्ट एक स्वदेशी रॉकेट इंजन है जो लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन से चलता है। ये 80 टन तक बल पैदा करता है और इसे बार बार इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स के लिए बनाया जाता है। ये भारत को वापस से इस्तेमाल करने योग्य रॉकेट टेक्निक पर आत्मनिर्भर बनाता है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि बेंगलुरु की स्पेस स्टार्टअप एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने भारत में निजी तौर पर बनाया गया 800 kN ताकत वाला एवरेस्ट रॉकेट जो है वो इंजन पेश किया है। इस वजह से इतना ज़्यादा चर्चा में है और इसीलिए हमने आपको बताया कि भाई ये दो टर्म्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे, इसलिए इनको हमने बताया। फिलहाल कुछ मैसेजेस भी आ गए हैं। अकबर कुरैशी जी का नवाबगंज से, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। मिश्रा ऑप्टिकल से है ऑफकोर्स अजय जी का, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। विकास जायसवाल जी लिखते हैं, सपनों की उड़ान को कभी रुकने मत देना, मुश्किलों के तूफानों से खुद को झुकने मत देना, जब भी थक जाएगी हौसले की आवाज़ देना, मंजिल खुद कहेगी अब हारने मत देना। क्या बात है, वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच। आज का शो कैसा रहा हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल चलने का वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, और आज का शो जैसा भी लगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर टुडे।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
6: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
7: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
8: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
9: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
10: मतलब
9: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
11: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
10: की गूंज, राव की गूंज, राव की गूंज।
12: समता, ए समता, कहाँ हो भाई? अरे भाई गांव चलना है, जानती हो ना, सरला काकी की लड़की की शादी आज ही है, जल्दी निकलना पड़ेगा। और काका का फोन आया था कि सब लोग को आना है और जयमाल के बाद तक रहना है। और सुनो, ये भी बोला है कि पूरी गांव की गूंज की टीम के साथ आना है।
13: अरे दी, काहे चिल्ला चिल्ला के घर को सर पे उठाई है? हम नहा रहे थे और मुझे पता है कि गांव चलना है और सरला काकी की बेटी संगीता की शादी है। कार्ड आया था, मैं आपको बताना ही भूल गई, सॉरी। हाँ, शादी आज ही है, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। जया को बाजार भेजा है कुछ गिफ्ट लाने के लिए, वो आती ही होगी।

0: समता दी, किरण दी, मैं आ गई हूँ मार्केट से और बहुत सारा सामान भी लाई हूँ। अब चलिए सब लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर के गांव के लिए निकल लेते हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल
2: बिल्कुल।
1: रमेश, ओ रमेश, सुनता ही नहीं है, जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी से निकालो।
0: अरे रमेश भैया, इतना भी तेज ना चलाइए, जरा आराम से चलाइए।
2: रमेश को दावत की पड़ी है कि कितनी जल्दी पहुंचकर खाने पर टूट पड़े।
1: हाँ सही कह रही हो।
3: अरे डीजल गाड़ी छोड़े, पैसेंजर गाड़ी पकड़े,

0: देखो दादा, बहिरे जे आवे ते का पानी पत्ता पूछ लिया करो सभे। हम कुल अलंग ना दौड़ पाए, हमार टिहुना पिराए लागत है।
1: पहुँच गए बस। रमेश, वो जो टेंट लगा है ना, वहीं पर गाड़ी रोक लेना।
2: वो रही सरला काकी, बहुत जम रही हैं आप। कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी है, वाह भाई वाह।
3: समता दी, ये गिफ्ट वाले पैकेट किसको दे दूं मैं? पहली बार तो गांव आई हूँ, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ यहाँ पर।
1: अरे जया, सबको धीरे धीरे जान जाओगी। अब हमारे साथ गांव जो आने लगी हो, ये सारे गिफ्ट मुझे दे दो, मैं काकी को दे देती हूँ।

0: काकी ओ काकी, कहाँ हो? कहाँ चले गए सब लोग भाई?
1: वाह देखो, हमार बहिन लोग आई गई सहरिया से। आओ बहिनी बैठो, हम तो जानी अब ना आई बो, हमार जेरा बहुत थुअर होएगा रहा।
2: अरे काकी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आप बुलाएं और हम ना आए, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है।
1: अरे बहनी आओ सभे बैठो। दुल्हीन, ओ दुल्हीन, खटीवा बिछाई दियो और खटीवा पर कथरिया और चदरवा बढ़िया बिछाई दियो।
3: अरे ठीक है काकी, आप परेशान मत हो, आप बाहर जाकर के मेहमानों को देख लीजिए, ये तो हमारा घर है, हमारा गांव है, हम आराम से रह लेंगे।
0: सावित्री भाभी कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे कहीं नजर न लग जाए आपको मेरी, दूल्हा कहीं आपको अपनी दुल्हन ही ना समझ बैठे।

0: आवा जाए बहन जी लोग, सब यहाँ तैयार हो जावा जाए।
1: आइए किरण दी, जल्दी आ जाइए, जया को भी बुला लीजिए, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए सब।
2: समता दी, अपनी अटैची, सूटकेस सब कहाँ रखा है? मैं तो अपना लहंगा लाई हूँ और वही पहनूंगी शादी में।
3: अरे समता, हमारा बैग कहाँ है? ले आओ यार। भाई मैं तो बनारसी साड़ी लाई हूँ, वही पहनूंगी। समता तुम क्या लाई हो, क्या पहनोगी?
1: किरण दी, मैं तो गाउन लाई हूँ, वही पहनूंगी। जरा देखिए कैसा लग रहा है मेरे ऊपर।
4: ओ बन्ने पहले वादा कर ले, फिर वर...

0: चलो चलो, बारात आने वाली है, अब बातें बंद करो, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ।
1: का करी बहनी, तोरे काका गोड़ खियाएगा ब्याह ही रथे रथ, तब जाए कर तना अच्छा दामाद पायन।
0: अरे काकी जी, आप तो अभी से रोना शुरू कर दी हैं। अपने आंसू बचा के रखिए कल के लिए, विदाई में जो रोना है। काकी परेशान ना होइए, शादी आपको मिल गई, दामाद तो आपका बहुत अच्छा है, ऐसा मैंने गांव वालों से सुना है।
2: काकी, बेटियां तो पराया धन होती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। बेटियां जब तक घर में रहती हैं, घर स्वर्ग सा लगता है, बस उन्हें ससुराल भी अच्छा मिल जाए तो वहाँ भी वो स्वर्ग ही बना देती हैं।
3: किरण दी, जिस घर में बेटियां ना हो वो घर घर नहीं लगता है। बेटियों से घर हरा भरा लगता है और बेटियां ही अपने माँ बाप का सुख दुख समझती हैं। शादी होने के बाद भी मायके के प्रति जिम्मेदारियां निभाती हैं बेटियां।

0: सब लोग तैयार हो गए क्या? समता, मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी पहनकर?
1: किरण दी, वो ग्रीन वाला सेट लाई है क्या? इस साड़ी पर वही अच्छा लगेगा, वही पहनेंगे।
0: ओके ओके,
2: चलिए सब लोग, बारात आ गई। समता दी, किरण दी, कहाँ है भाई आप लोग?
0: अरे आ गई मैं, क्यों चिल्ला रही हो? समता अभी तो यही है। सब लोग हाथ में चावल, बताशे

0: और कुछ टूटे पैसे ले लो, छुट्टे वाले पैसे बरातियों पर फेंकने के लिए।
1: हे बहनी, परछनिया ले आओ, सुपेला में लोटा और पहरुओ धोलायो, और एक लोटा पानी और अच्छत ले आयो।
2: हे अम्मा, अम्मा ये लहंगो हमरे गोड़म बाजत है, तनी पिछवा से पकड़ लेती हूँ।
1: अच्छा बहनी, हे बहनी, तनी इनका लहंगा पकड़ लेती हूँ।
3: लाइए काकी, हम पकड़ लेते हैं, और आप जाइए दुल्हा परछिए, और कोई काम हो तो देख लीजिए आप।
4: चलो चलो, जयमाल पढ़ने जा रही है, चलो देखते हैं।
0: समता, जयमाल देखकर खाना खा लिया जाए, और वो सारा गिफ्ट काकी को पकड़ा कर निकल चलते हैं, रात हो रही है ना।

0: हे बहनी, सबे जाती हूँ घर का, तो अपने अम्मा खत्ते रसगुल्ला धर लेती हूँ। हे दुल्हन, दुल्हन।
1: चलो चलो, देखो रमेश कहाँ है, गाड़ी निकाले वरना बहुत देर हो जाएगी। रमेश, रमेश, ओ रमेश, खाना वाना खाया तुमने, घूम ही रहे हो, तो चलो अब चलो चलते हैं।
2: सभी को राम राम।
3: हमसे भरा वे गगरिया बलम अभी नाजुक उमरिया हो। अरे हमसे

0: अब क्या?
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9970931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
5: हुक्कई से खेलन जाइबो,

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9761 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
1: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वक्त हो चुका है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा, क्योंकि बज चुके हैं 12। आज दिन है शनिवार और शनिवार के दिन आती हूँ मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आरजे आयुषी लेके आपको अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी। जी हाँ, स्वास्थ्य संगनी, जहाँ होती है आपके सेहत की बात। भैया देखिए, आजकल ना मौसम थोड़ा सा रंगीन हो गया है, रंगीन और रंग बदलता भी रहता है। वो इसलिए देखिए, अभी धूप है, अभी बारिश हो जाएगी, अभी बादल हैं, अभी कुछ, और बारिश कभी तो एकदम झमझमा के होगी और कभी कभी ऐसी होगी कि हमें समझ ही नहीं आएगा बारिश हो रही है या फिर सिर्फ भगवान बूंद बूंद गिरा रहे हैं। लेकिन भाई ये जो बारिश है ना, ये जितनी देखने में सुहानी लगती है, अच्छी लगती है, उतनी ही ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन भैया जिंदगी का आनंद भी तो लेना है। अब इसीलिए मैं आज का विषय लेकर आई हूँ, यानी कि मॉनसून स्पेशल एक टॉपिक है जिससे आप बारिश का फायदा भी उठा पाएंगे और साथ ही साथ इन्फेक्शन से भी बच पाएंगे। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज भाई मैं अकेली नहीं हूँ, आज मेरे साथ है मेरी को होस्ट सृष्टि। हेलो सृष्टि।
5: हेलो मैम,
1: कैसी हो?
5: मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए।
1: मैं बहुत ठीक हूँ। और भाई बारिश देख के तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है?
5: बारिश देख के तो बहुत अच्छा ही लगता है सबको ही।
1: जी, बारिश देख के, और बारिश देख के हर किसी के मन में यही ख्याल आता है कि भैया गर्मा गर्म चाय मिल जाए। हाँ,
5: हो ही जाए,
1: चाय पकौड़े हो जाए। लेकिन भैया ये जो चाय पकौड़े है ना, इसको तो हम एंजॉय कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम हेल्थ की बात करने वाले हैं। तो पता है आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं?
5: नहीं मैम, क्या है आज का टॉपिक?
1: अरे आज का टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, कल रात मेरे हाथ में अचानक से खुजली शुरू हो गई थी। सुबह मैंने देखा तो एक गोल गोल रेड पैच था। पता है वो क्या था?
5: अरे, और ये तो सबके साथ हो रहा है। किसी को फुट में इचिंग, किसी को अंडर आर्म्स में रैशेस। मॉनसून अपने साथ रोमांस, चाय पकौड़े के साथ अनइनवाइटेड गेस्ट भी लाता है, स्किन प्रॉब्लम्स।
1: जी हाँ, और यही स्किन प्रॉब्लम मुझे हो गई, जिसे हम दाद भी कहते हैं। अब देखिए, दाद, खाज, खुजली, ये सब तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये जो दाद, खाज, खुजली होती है ना, ये कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान करती है, उठने बैठने में, अपने रोजमर्रा के काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। तो आज स्वास्थ्य संगनी में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मॉनसून में स्किन की सुरक्षा पर। कौन से इन्फेक्शन होते हैं, क्यों होते हैं, और इनसे हम कैसे बच सकते हैं?
5: मेरा सवाल ये है मैम कि मॉनसून में ये स्किन प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है?
1: भाई देखो, ये बात बिल्कुल सिंपल सी है सृष्टि। देखो, मॉनसून में हवा में नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो हम सभी जानते हैं। ह्यूमिडिटी 70-80% तक चली जाती है। इससे हमारी जो स्किन का जो स्वेट है वो प्रॉपरली इवेपोरेट नहीं हो पाता और वो स्वेट स्किन पर जमा रह जाता है।
5: मतलब जहाँ मॉइस्चर है, वॉर्मथ है, वहाँ बैक्टीरिया फंगस का ग्रो करने का परफेक्ट मौका मिल जाता है।
1: एग्जैक्टली और स्पेशली स्किन फोल्ड में, जैसे कि अंडरआर्म्स हो गए, हमारी थाइज एरिया हो गए, जहाँ मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, यानी मॉइस्चर रुक जाता है, बिल्कुल वैसे ही घर की दीवारों में भी मॉनसून में सीलन आ जाती है।
5: और दूसरी वजह?
1: अरे वही जो कॉमन प्रॉब्लम है यार, गीले कपड़े, गीले जूते। बारिश में देखो, भीगने के बाद हम लंबे टाइम तक गीले कपड़े पहने रहते हैं, जूते पहने रहते हैं, जिससे मॉइस्चर स्किन के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है। और तीसरी वजह भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, वो है कंटामिनेटेड वाटर। सड़कों पर तुमने अधिकतर देखा होगा, जब भी अपने घर से आती होगी तो भाई सड़कों पे कोने कोने में और कहीं कहीं तो सड़क के बीच में ही गड्ढा है और वहां पे ही पानी जमा हो रखा है। ड्रेन्स जो है, सीवेज जो है, वो बाहर निकले, सब मिक्स हो रखा है, हर जगह बस पानी ही पानी है। और पानी पानी में फैलते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगस होते हैं।
5: फिर तो मैम सनलाइट भी कम मिलती है मॉनसून में, इसका भी कोई असर होता है क्या?
1: बिल्कुल। देखो सृष्टि, सनलाइट नेचुरली स्किन को ड्राई रखती है और बैक्टीरिया फंगस को किल करती है। उसकी कमी से इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा वीक कर देता है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब हमारे घर के कोई अनाज है, कोई चीज है जिसमें फंगस लग गए हों, तो हमारी मम्मी क्या कहती है कि जाओ बेटे से धूप में रख आओ, है ना?
5: यस मैम, ये तो मैंने देखा है पर कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता था।
1: तो आज तुम्हें पता चल गया कि क्या होता है। देखो, हमारी दादी नानी के हर काम में ना कहीं ना कहीं साइंस छुपी होती है।
5: तो ह्यूमिडिटी, वेट क्लोथ्स, कंटामिनेटेड वाटर, कम सनलाइट, वीक ह्यूमिडिटी, सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना देते हैं।
1: जी हाँ, वो भी स्किन प्रॉब्लम के लिए, ये तो बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है
5: मैम। लेकिन एक फैक्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मॉनसून में स्किन पेशेंट 30-40% तक बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही सृष्टि। देखो, और एक और चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। देखो, भारत जैसे ट्रॉपिकल देश में जहाँ ह्यूमिडिटी ऑलरेडी साल भर हाई रहती है, मॉनसून के बाद ये और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ये सिर्फ एक दो लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश में मिलियंस लोगों की प्रॉब्लम है और लोग इससे डील भी करते हैं हर साल।
5: मैम, ये सिर्फ एडल्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है ना, बच्चे भी काफी अफेक्टेड होते हैं।
1: अरे बच्चों की क्या बात करते हैं भैया। देखिए, मौसम जो ये बारिश का है ना, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्यारा होता है, क्योंकि भाई बच्चे जब तक नाव नहीं बना लेंगे, बारिश के पानी में दो बार छपाक नहीं मार लेंगे, तब तक उनका बारिश जाता नहीं है। और जो भी तुमने बात कही वो तो बिल्कुल सही है। देखो, बच्चे स्पेशली वल्नरेबल होते हैं क्योंकि वो बारिश में खेलना पसंद करते हैं, उनकी स्किन अभी भी डेवलपिंग होती है, जो अडल्ट्स की कंपैरिजन में ज्यादा सेंसिटिव होती होगी। स्कूल्स, डे केयर सेंटर जैसे क्राउडेड प्लेसेस में क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से इन्फेक्शन एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक बहुत ही ज्यादा तेज फैल जाता है।
5: और वर्किंग प्रोफेशनल्स का भी तो बुरा हाल होता है, डेली कम्यूट, वेट सूज, पूरे दिन ऑफिस में बैठना।
1: ये तो शायद तुमने मेरी ही कहानी बता दी। देखो बिल्कुल भाई, ऐसा ही होता है। और एल्डरली लोगों की स्किन नेचुरली थोड़ी सी थिन और लेस रिजिलियंट होती है, जिसमें वो भी इन्फेक्शन से ज्यादा प्रोन होते हैं। देखो, हम ये जानते हैं कि बच्चे हो चाहे बड़े हो, अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा तो स्किन प्रॉब्लम सभी को हो सकती है, लेकिन बच्चों की स्किन क्योंकि सेंसिटिव ज्यादा होती है, इसीलिए उनमें ज्यादा हाई चांसेस होते हैं।
5: तो मैम, ये तो क्लियर हो गया कि क्यों ये सीजन इतना चैलेंजिंग होता है हमारी स्किन के लिए। चलिए अब बात करते हैं स्पेसिफिक इन्फेक्शन की। सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन, जिनमें रिंग वॉर्म, एथलीट फुट और कैंडिडाइसिस शामिल है। लेकिन ये सुनते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: हाँ भाई, मुझे भी लगता है कि ब्रेक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन है ये लोग तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। और लिसनर्स, आप भी समझ रहे होंगे कि कितना बारिश का मौसम जितना सुहाना लगता है, उतना ही हमें दांत, खाज, खुजली, दाने, फोड़े, फुंसी, इन सबसे भी मिला देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज का शो सुनने के बाद ना, आप स्किन प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री होने वाले। जी हाँ, अगर आपने इस शो को बहुत ही ध्यान से सुना, अपनाया और अपनी जिंदगी में लागू किया ना, तो मेरी गारंटी यह है कि अगर आपने साफ सफाई के साथ इन सारी बातों को माना तो आपको इस बारिश के सीजन में स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो भाई आगे क्या होने वाला है, क्या करना है, इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, अरे वही भाई, बने रहना हमारे साथ आज के शो स्वास्थ्य संगिनी में, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं मॉनसून स्पेशल, यानी कि मॉनसून में होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स की। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं अपना शो स्वास्थ्य संगनी।
1: जी हाँ भाई, स्वास्थ्य संगनी आ चुका है ब्रेक के बाद लेके आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन।
0: तो चलिए शुरू करते हैं रिंगवर्म, जो आपको हुआ था मैम।
1: अरे हाँ यार, रिंगवर्म ने तो बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। जो रिंगवर्म होता है वो डर्मेटोफिटिस फंगस होते हैं। जी हाँ, देखिए नाम में वॉर्म लगता है ना, लेकिन कोई कीड़ा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये गोल गोल इची पैचेस होते हैं, रेडनेस आ जाती है, रेड पैचेस बन जाते हैं। जो उसका कोना होता है वो थोड़ा सा ड्राई रहता है, खुजली होती है। ये अक्सर आपके अंडरआर्म्स में होता है, थाई एरियाज में होता है, और वो एरियाज होते हैं जहाँ पे स्किन थोड़ी सी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहती हो, यानी कि थोड़े से जॉइंट्स हों वहाँ स्किन आपकी मुड़ती है। ये हाईली कंटेजियस होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या फिर टावल, कॉम्ब या फिर ऐसी चीजें जो आप शेयर करते हैं, इनसे भी फैल सकता है। और सबसे स्केरी बात पता है क्या है लिसनर्स? भाई देखिए, ये पेट्स के थ्रू भी फैल सकता है। अब इसे आप समझ चुके होंगे। अरे चलो थोड़ा और आसान भाषा में बता देते भैया, ये रिंग वॉर्म वही होता है, यानी कि दाद।
0: ओहो, लेकिन मैम इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या अब हम पेट भी नहीं पाल सकते घर पे?
1: नहीं नहीं, पाल सकते हैं, बिल्कुल पाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी और सफाई के साथ। देखो माइल्ड केसेस में एंटी फंगल क्रीम जैसे क्लोट्रिमेजोल, लेकिन 2 से 4 वीक्स तक रेगुलर लगानी पड़ती है वो, चाहे सिम्टम्स पहले से इम्प्रूव हो जाए या फिर वो पूरी तरीके से ठीक होने लग जाए। आपको ये क्रीम 4 हफ्ते तक तो लगानी ही लगानी है, वरना इन्फेक्शन वापस आ जाता है। तो ये एक छोटी सी क्रीम होती है जो आप अभी से मंगा के रख ले, और अगर आपको लगता है कि भैया दाद होने वाला है या हो रहा है या हो गया है, तो आपको ये क्रीम जरूर मंगा के लगानी है।
0: मैम मैंने सुना है कि एथलीट फुट भी कुछ होता है, जो कि ऑफिस जाने वाले लोगों को ज्यादा होता है, उनकी बड़ी प्रॉब्लम है ये।
1: तो आज के तुम सारे ऑफिस वालों के पीछे ही पड़ी हो? चल अच्छा चलो ठीक है भाई, जो तुम्हारी कंफ्यूजन है वो तो कई लोग की कंफ्यूजन है, एथलीट फुट। जी हाँ, देखो इसमें टोस के बीच, यानी जो हमारे पैर की उंगलियां होती हैं, उसके बीच में आपको इचिंग होने लग जाएगी, खुजली होगी, बर्निंग, ऐसा लगेगा कि जलन हो रही है, स्किन आपकी वहां से पील होने लग जाएगी, यानी कि निकलने लग जाएगी। जब हम गीले जूते पहनते हैं या गीले सॉक्स पहनते हैं और लंबे टाइम तक उसको पहने रहते हैं, और फीट का जो मॉइस्चर होता है वो इससे इवेपोरेट नहीं हो पाता, और फंगस बहुत ही तेजी से ग्रो होने लग जाता है। आपने देखा होगा, और जैसा कि अभी तुमने भी कहा, और कई लोग ये कहते हैं कि ये ऑफिस जाने वालों को बहुत ज्यादा होता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि देखो, जब कोई ऑफिस जाता है बारिश में, तो उनके जूते में अगर पानी घुस गया, क्योंकि गली में नुक्कड़ पे पानी भरा हमें मिल ही जाता है, या फिर मान लो बारिश शुरू हो गई, तो उनके जूते पक्का गीले हो जाते हैं। और जब जूते गीले हो गए, आपका पैर का जो मॉइस्चर है वो बाहर नहीं निकल आया, तो फिर भैया आपको ये होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए कोशिश करें कि थोड़े से खुले जूते पहने।
0: लेकिन मैम अब इसका सोल्यूशन क्या है?
1: देखो सोल्यूशन इसका बड़ा सीधा सा है, सिंपल सा है, गीले शूज सॉक्स को तुरंत बदलना। एक्स्ट्रा सॉक्स, अगर आपको शूज पहनना कंपलसरी है तो आप एक्स्ट्रा सॉक्स बैग में रख लें, और मॉनसून में स्पेशली आपको कॉटन सॉक्स का यूज करना चाहिए, जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। फीट्स डेली वॉश करें, स्पेशली टोज के बीच में, क्योंकि भैया हम बहुत ही ज्यादा आलसी हैं भारतवासी, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये बस नहा लेते हैं और सही से अपने शरीर का कोना कोना साफ नहीं करते। लेकिन इस मॉनसून में आपको अपना शरीर का हर कोना साफ करना है, चाहे वो आपके पैर की उंगलियों के बीच का हिस्सा ही क्यों नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि खुले जूते पहनने हैं, आप कोशिश करें कि आप अगर ऐसे जूते पहने, ऐसे फुटवेयर पहने जिसमें आपका पैर खुला हो, एयर पास आउट हो सकती है, उसका आप इस्तेमाल जरूर करें।
0: और तीसरा फंगल इन्फेक्शन कैंडिडियासिस।
1: ये कैंडिडा यीस्ट होते हैं जो स्किन पर ऑलरेडी थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, लेकिन मॉइस्चर वार्मथ में ये थोड़ा सा ओवरग्रो कर जाते हैं। अंडर आर्म्स, जहाँ पे आपके बॉडी में फैट ज्यादा होते हैं, वहां पे स्किन पैचेस बन जाते हैं, जिनके एज पर छोटे छोटे सैटेलाइट टाइप के स्पॉट दिखने लग जाते हैं। डायबिटीज पेशेंट के लिए ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हाई शुगर ईस्ट को ग्रो करने में प्रमोट करता है।
0: अब बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। पॉलीक्यूटिस, इम्पेटिगो और बॉयज, ये फंगल से भी ज्यादा पेनफुल हो सकते हैं, मैंने ऐसा सुना है।
1: बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुमने देखो बिल्कुल सही सुना। ये तब होते हैं जब बैक्टीरिया, स्पेशली सेटाफिलोकोकस। देखो ये तब होते हैं सृष्टि जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं। फॉलिक्यूलिटिस में फॉलिकल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्मॉल पस फिल्ड हो जाता है, पस तो हम सभी जानते हैं, और दाने हमारी बॉडी पे नजर आने लग जाते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग और टाइट कपड़े से ये बहुत ज्यादा होता है। शेविंग के बाद भी ये हो सकता है क्योंकि स्मॉल कट्स बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और दोस्तों आपने काफी बार देखा होगा जब भी आपने अपनी बॉडी को शेव किया होगा तो हमारे जो बॉडी हेयर्स होते हैं उस पे पस जम जाता है, बैक्टीरिया अंदर आ जाती है और वो जो एरिया होता है जहाँ आपने शेव किया होता है वो बहुत ज्यादा खुरदुरा हो जाता है।
0: मैम ये इम्पेटिगो ये तो बच्चों में ज्यादा होता है ना?
1: इम्पेटिगो बच्चों में कॉमन है, रेड सोर से शुरू होता है और फिर ये फट जाता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हनी कलर्ड क्रस्ट बन जाता है, हाईली कंटेजियस होता है, स्कूल में ये बहुत तेजी से फैलने लगता है क्योंकि बच्चे क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। देखो इसीलिए कहते हैं कि जब हमें कोई बीमारी होती हो या ऐसा मौसम चल रहा हो जब बीमारी ज्यादा फैले तो अपनी चीजों को अपने तक ही सीमित रखें, ज्यादा शेयरिंग ना करें।
0: पर मैम बच्चे मानते कहाँ हैं? अगर ये किसी बच्चों को हो जाता है तो उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?
1: देखो भाई पेरेंट्स की जो कैटेगरी होती है हमारे भारत में बहुत समझदार कैटेगरी होती है, इसीलिए थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम को माइल्ड केसेस में लेना चाहिए जिससे ये ठीक हो सकता है, और जब तक सोर्स हील ना हो जाए बच्चों को स्कूल बिल्कुल ना भेजें। अगर आप बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो दूसरे बच्चों को भी ये बीमारी फैल सकती है। अपने नेल्स और बच्चों के नेल्स दोनों को छोटा रखना है क्योंकि भैया इससे बच्चे स्क्रैच जरूर करेंगे और स्क्रैच करने से इन्फेक्शन और भी ज्यादा फैल सकता है।
0: तो मैम कहीं ना कहीं स्कूल वाले इसलिए भी हमारा नेल कट करा के रखते थे।
1: वही जो पीटी सर थे ना, पीटी सर से तुम पीटी हो कभी?
0: अरे मैम उनसे कौन बचा है यही बताइए।
1: तो भैया पीटी सर का एक बार धन्यवाद जरूर करिएगा कि सर अच्छा हुआ आप हमारे नेल्स को कट रखते थे, और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपने नेल्स कट ही रखने चाहिए, नहीं तो स्क्रैच करेंगे और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है।
0: तो मैम ये जो बॉयल्स होता है वो क्या होता है?
1: अरे बॉयल्स तो सबसे पेनफुल चीज का नाम है, इसमें दर्द होता है, पस भर जाता है और जो हेयर के लम्स होते हैं, फॉलिक्यूल्स होते हैं, उसपे डीप इन्फेक्शन यानी कि बहुत गहरा इन्फेक्शन हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है सृष्टि कि बॉयज को खुद से कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए, इससे इन्फेक्शन और भी ज्यादा डीप हो जाता है और फैलने लग जाता है। ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर सकते हैं जो कि डेंजरस हो सकता है।
0: तो फिर हमें क्या करना चाहिए अगर हमें बॉयज हो जाए तो?
1: देखो छोटे बॉयज के लिए हमें वार्म कंप्रेस की हेल्प लेनी चाहिए। अब ये वार्म कंप्रेस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए भैया गर्म पानी लेना है किसी भगोने में या फिर किसी पतीले में और उसमें एक कपड़े को भिगो देना है। जब कपड़ा गर्म हो जाए, पानी उसमें अच्छे से आ जाए, फिर उस कपड़े को अच्छे से निचोड़ लेना है और इन्फेक्टेड एरिया में रख देना है। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे आप किसी कपड़े को गर्म पानी में भिगो के और सिकाई करते हैं ना, जस्ट बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। देखो ये थोड़ा सा तो गर्म होना चाहिए क्योंकि अगर आपको पेन है तो ये आपको हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ अगर ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता जा रहा है, साथ में फीवर भी हो रहा है, तो मेरी सलाह और डॉक्टर की सलाह आपसे यही है कि मेडिकल हेल्प जरूर लें। ये सबसे ज्यादा सेफ होता है बॉयज में क्योंकि अगर एक बार हो जाए और अच्छे से इलाज ना हो, पूरी तरीके से ये ठीक ना हो, तो ये बाद में भी फैल सकता है।
0: अरे मैम आपने तो बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताई हमें।
1: हाँ भाई इन्फॉर्मेशन तो यूजफुल है ही है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक इसलिए क्योंकि भैया देखो बारिश के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमें बारिश में एक कप चाय तो बनती है ना सृष्टि?
0: हाँ मैम
1: पियोगी?
0: चलिए
1: चलो ठीक है हम दोनों जाते हैं दोस्तों चाय पीकर आते हैं इस छोटे से ब्रेक में। आप भी जाइए चाय बनाइए और चाय लेके बैठ जाइए क्योंकि हमारी चाय तो भैया बनी बनाई इंतजार कर रही है, लेकिन आपको तो शायद बनाना पड़ेगा। लेकर आते हैं चाय को और बात करते हैं, तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे और बात करते हैं इसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे और प्रिवेंशन। क्योंकि घरेलू नुस्खे इसीलिए दोस्तों क्योंकि हम तो इंडियंस हैं, हम जब तक घरेलू नुस्खा नहीं आजमाएंगे हमारी कोई भी इलाज जो है वो पूरा नहीं होता। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी आरजे आयुषी। साथ में मेरे हैं सृष्टि, जो कि बहुत सारे सवाल लाई हैं और आज मुझसे ऐसा लग रहा है कि सारे मॉनसून का खजाना निकलवा के ही रहेंगी। अब आप ये सभी जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं कुछ मॉनसून के स्पेशल स्किन इन्फेक्शन की, क्योंकि मॉनसून अकेला नहीं आता, इन्फेक्शन को साथ लेकर आता है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कुछ घरेलू नुस्खे के, यानी कि जो हमारी दादी नानी के ज़माने से चले आ रहे हैं और उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो मैम चलिए हम नीम से शुरू करते हैं। मुझे याद है बचपन में मम्मी नीम के पत्ते ले आती थी।
0: अरे नीम का पत्ता, बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो नीम एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज वाला होता है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस भी है। देखो नीम का पानी जो होता है, अगर हम नीम को पानी में उबाल कर उससे नहाएंगे और उसका पेस्ट जो है हम अपने इन्फेक्टेड एरिया में लगाएंगे, तो ये जितनी बीमारियां है ना जिसकी बारे में अभी हमने बात की, ये और भी ज्यादा कम हो सकती हैं। उसके बाद हल्दी, देखो हल्दी भी एंटीसेप्टिक होती है। बेसन के साथ पेस्ट बनाकर इसको लगाएं, क्योंकि ये देखो एक ट्रेडिशनल तरीका है और इफेक्टिव प्रैक्टिस भी है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी जो छोटे मोटे ये प्रॉब्लम है ना, ये ठीक हो सकते हैं जस्ट घरेलू नुस्खे को आजमा के।
1: मैम कहीं ना कहीं ये घरेलू नुस्खे सही हैं, क्योंकि ये सब हमने कभी ना कभी किया है अपने लाइफ में। अगर हम बात करें कोकोनट ऑयल की, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी?
0: देखो कोकोनट ऑयल जो है वो सिर्फ खाने में ही टेस्टी नहीं लगता, बल्कि उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। ये इसमें कूट कूट के भरी है और ये स्किन मॉइस्चराइज भी रखती है और बिना पोर्स को ब्लॉक किए ड्राई क्रैक्ड स्किन के लिए भी ये वर्क करती है। स्पेशली फीट्स के लिए मॉनसून में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है हमें, और उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। इसीलिए मॉनसून में ट्राई करें कि आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें। देखो इसी के साथ साथ तुम एक चीज़ को भूल रही हो।
1: वो क्या मैम?
0: तुलसी। अरे वही जो हमारे आंगन में है, जिसकी तुम चाय बहुत पीती हो। देखो तुलसी भी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल और देखो तुलसी भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है। साथ ही साथ मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेती है। अगर हम इसको मिला के या फिर इसको अलग अलग भी यूज कर लेते हैं, तो हमारे स्किन के कई सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं।
1: मैम ये सब तो हमारे घर में ऑलरेडी अवेलेबल होती है, किचन में ही मिल जाती है।
0: लेकिन सृष्टि एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर भी जरूरी है ना?
1: बिल्कुल, लेकिन वो है क्या मैम? लेकिन मैम एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर भी तो जरूरी है ना?
0: बिल्कुल। देखो अगर इन्फेक्शन सीवियर हो, स्प्रेड हो रहा हो या कुछ दिनों में इम्प्रूव ना हो, तो होम रेमेडीज पर हमें बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करना चाहिए, तुरंत ही डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अब सब लोग सोचते हैं कि नहीं भैया डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन की प्रॉब्लम को क्या ही करेंगे, लेकिन मैं बताऊं भैया स्किन की प्रॉब्लम डर्मेटोलॉजिस्ट ही ठीक कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब लोग ऐसी डिग्री लेके बैठे हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई। देखिए इनके पास आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि स्किन अगर डैमेज हो गई तो ये हमें बड़ी बीमारियों के चपेटे में भी डाल सकती है।
1: तो हमें मैम ज्यादा देर ना करते हुए डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट आप बताना चाहेंगे कुछ?
0: क्या?
1: जैसे कि प्रिवेंशन टिप्स।
0: ओ हाँ प्रिवेंशन टिप्स, चलो मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले जो है वो आता है स्किन को ड्राई रखें। बारिश में भीगने के बाद तुरंत टॉवल से उसे पोंछ लें और स्किन को ड्राई कर लें। और अगर आपने गीले कपड़े पहन रखे हैं तो उसको आपको बिल्कुल से ड्राई करना है। और नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो भैया वो है लूज और ब्रीदेबल कॉटन कपड़े।

0: आए हैं तो भी आपको एक बार साफ पानी से नहाना चाहिए। उसके बाद स्किन फोल्ड को स्पेशल केयर दें, जैसे कि अंडर आर्म्स हो गए, आपकी थाई एरिया हो गया, यहाँ पे आपको मेडिकेटेड पाउडर जरूर यूज करना चाहिए जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है।
1: नंबर 6, कंटेमिनेटेड वाटर अवॉइड करें और अगर अनअवॉइडेबल हो तो बाद में क्लीन वाटर से वॉश करें। नंबर 7, पर्सनल आइटम जैसे टॉवल, कॉम, रेजर्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: और नंबर 8 है दोस्तों, बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर प्रॉब्लम 2 या 3 दिन से ज़्यादा हो रही हो और इम्प्रूव ना हो रही हो ज़रा सी भी, और साथ ही साथ फैलती जा रही हो, या आपको फीवर पेन दे रही हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
1: और सेल्फ मेडिकेशन, स्पेशली बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड क्रीम्स अवॉइड करना चाहिए, ये इन्फेक्शन को मार्क्स या वर्सन कर सकता है।
0: बिल्कुल सही सृष्टि। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं सभी को बताना चाहती हूँ, सृष्टि तुम भी इसको ध्यान से सुनना। देखो, जिन्हें डायबिटीज होती है उन्हें मॉनसून में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सावधानी रखनी चाहिए। हाई ब्लड शुगर वाले को ईस्ट और बैक्टीरिया दोनों की ग्रोथ को ये प्रमोट करते हैं, इसीलिए उनमें इसका खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को कैंडिडियासिस और बॉयल्स जैसे इन्फेक्शन का रिस्क डबल होता है।
1: मैम, तो उन्हें क्या करना चाहिए स्पेसिफिकली?
0: देखो, अगर मैं बात करूँ सिर्फ उन्हीं को क्या करना चाहिए, तो भैया अगर आपको ब्लड शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो स्ट्रिक्टली उन्हें आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। अपनी स्किन फोल्ड जैसे अंडर आर्म्स हो गए, थाई एरिया हो गए, वहाँ पे स्पेशली उनको आपको ड्राई रखना है। अगर कोई भी अनयूजुअल रैशेज या इन्फेक्शन दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। डिले बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस इन्फेक्शन को डॉक्टर को दिखाएंगे उतनी ही जल्दी ये ठीक हो सकता है।
1: बहुत वैल्यूएबल टिप्स हैं ये, नहीं बहुत वैल्यूएबल टिप्स हैं मैम। तो दोस्तों, ये था हमारा जरूरी प्रिवेंशन टिप्स। तो चलिए चलते हैं आज के एपिसोड के आखिरी हिस्से के तरफ।
0: जी हाँ, आखिरी हिस्से के बारे में हम बात तो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक। देखो सृष्टि, हमारी चाय तो खत्म हो चुकी है, अब चलते हैं भाई ये कप धोने को दे दें, क्योंकि सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाते हैं दोस्तों, हम लोग बस यूं जाते हैं और यूं आते हैं और आपसे मिलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में और भी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी RJ आयुषी, मेरे साथ को होस्ट सृष्टि लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं बारिश में होने वाले कुछ स्किन प्रॉब्लम की। अभी हमने काफी सारे स्किन प्रॉब्लम्स की बात की जो कि आपको भी होते हैं, आपके घर के बच्चों को भी होते हैं और बुजुर्गों को भी होते हैं। तो इनके बारे में हमने ये तो जान लिया कि ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं और कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी जरूरी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। देखिए भैया, ये मौसम बड़ा ही खूबसूरत होता है, लेकिन खूबसूरत के साथ बहुत सारी चीजें ये लेकर आता है,
4: लेकिन इस ब्यूटीफुल सीजन के साथ थोड़ी हेल्थ चैलेंजेस भी आती हैं और हमने देखा कि स्किन प्रॉब्लम उनमें एक मेजर कंसर्न है। फंगल इन्फेक्शन जैसे रिंग वॉर्म, एथलेट फुट, कैंडिडियासिस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन जैसे फॉलिकुलाइटिस, इम्पेटिगो, बॉइल्स।
3: लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ये सिंपल प्रिकॉशन से ठीक हो सकता है, काफी हद तक ये सही हो जाता है और काफी लोगों को ये हेल्प भी पहुंचाता है। स्किन बस आपको ड्राई रखना है, सही तरीके से कपड़े पहनने हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है और टाइमली मेडिकल कंसल्ट लेना है। ये बेसिक स्टेप आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे इन स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए।
4: और दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी अपने को स्किन प्रॉब्लम हो रही है या जो इम्प्रूव नहीं हो रही है, प्लीज इग्नोर मत करिए। डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने में शर्म मत करिए।
3: बिल्कुल सही। और आखिर में भैया, मॉनसून की इस खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए जरूरी ये भी है कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखें। एक छोटा सा एफर्ट जैसे कि गीले कपड़े को तुरंत बदलना, पैरों को ड्राई रखना, हमें इन कॉमन लेकिन अनोइंग प्रॉब्लम से बचा सकते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और मैं ये भी कहूंगी कि अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों और अपने पूरे फैमिली का इस सीजन में एक्स्ट्रा ख्याल रखें, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया है, ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो, वर्किंग या प्रोफेशनल या एल्डरी, और अपना भी ख्याल रखें।
3: बिल्कुल सही दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने समझा होगा, सीखा होगा, जाना होगा। और जानना ही सिर्फ काफी नहीं होता, इसको अपने जिंदगी में लागू भी करना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो भैया, जाते जाते मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, बस मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपने इन इन्फेक्शंस को बहुत ज़्यादा खुरेदा, सही से इसका इलाज नहीं कराया, तो ये आगे चलकर स्किन कैंसर का भी रूप ले सकती हैं। इसीलिए इन्हें छोटा समझने की भूल ना करें। दिखती बड़ी आम सी बीमारी है, लेकिन ये आम सी बीमारी है नहीं, इसको ठीक करना है। हमें इसके लिए जागरूक होना है और सबसे बड़ी बात, अपनी ज़िंदगी को साफ और सुरक्षित वे से आगे बढ़ाना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझा होगा, सीखा होगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है हमारे जाने का। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जो कि होने वाला है आपका बुधवार। बुधवार को आपकी RJ उन्नति आएंगी लेके आपके लिए कुछ हेल्थ की टिप्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो कि आपको जानने चाहिए, सीखने चाहिए, समझने चाहिए और उसके बारे में जागरूक होना चाहिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में सुरक्षित रहिए।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9260-981-976 9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा,
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCOM।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार। सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
4: साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। आज का कार्यक्रम कुछ खास है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हफ्ते की जिसका हर परिवार की खुशी से सीधा नाता है, नवजात सुरक्षा सप्ताह यानी न्यूबॉर्न केयर वीक, जो हर साल 15 से 21 नवंबर तक पूरे देश में मनाया जाता है। और आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ है गांव-गांव की हेल्थ दूत, माताओं की सच्ची साथी और नवजात देखभाल की चैंपियन, हमारी शुभचिंतक टीकन देवी जी। स्वागत है भाभी आपका।
5: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और क्या तारीफ कर रहे हो, इतने बड़े बड़े शब्द तो मैंने अपने ही बारे में कभी नहीं सुने।
4: क्यों नहीं भाभी, जब आप इतने बड़े बड़े काम करेंगी तो बड़े बड़े शब्द तो तारीफ में बनते हैं। टीकन भाभी, शुरुआत एकदम मूल बात से करते हैं। ये जो नवजात सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, ये आखिर क्यों मनाया जाता है, इतना जोर क्यों दिया जाता है इस पर?
5: अरे दीदी, बात बहुत सीधी है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके बाद के पहले 28 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे नाजुक समय होता है। इस समय को ही हम नवजात अवस्था कहते हैं। इस दौरान बच्चा इतना कमजोर होता है कि जरा सी लापरवाही भी उसे बीमार कर सकती है। यही वो समय है जब उसे संक्रमण लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। शरीर का तापमान तुरंत बिगड़ जाता है। कई बार बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो उसके फेफड़े में ताकत कम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध ना मिले तो बच्चे बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाते हैं। मतलब ये पूरे 28 दिन बच्चे के लिए जैसे इम्तिहान का होता है। ये सावधानी बहुत जरूरी है।
4: भाभी, ये सब सुनकर तो लगता है मामला बहुत गंभीर है। क्या हमारे देश में अभी भी नवजात बच्चों की मौत एक बड़ी समस्या है?
5: कहने में दुख होता है दीदी, लेकिन हाँ, अभी भी है। SRS 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अभी भी 18 नवजात बच्चे हर 1000 जन्मों में पहले ही महीने में दुनिया छोड़ देते हैं। आप सोचो ना, 18 परिवारों के घरों की रोशनी सिर्फ इसलिए बुझ जाती है क्योंकि थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती गई।
6: ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसके कारण कौन कौन से होते हैं?
5: कारण साफ है दीदी। सबसे ज्यादा मौतें कम वजन के बच्चों और समय से पहले जन्मे बच्चों की होती है, ये लगभग 45% के करीब है। फिर आते हैं वे बच्चे जो जन्म के समय ठीक से सांस नहीं ले पाते, जिसे हम एस्फिक्सिया कहते हैं, ये लगभग 15% मामलों में होता है। नवजात निमोनिया 10% बच्चे की जान ले लेती है। सेप्सिस यानी इन्फेक्शन लगभग 6% का कारण बनता है। बाकी जो कारण है जैसे जन्म के बाद दूध न लगना, साफ सफाई न रखना, नाभि का गलत तरीके से ख्याल रखना, जन्मजात समस्याएं, ये सब भी जिम्मेदार है। इसलिए ये पूरा सप्ताह मनाने का मकसद यही है कि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे।
6: सही कहा आपने भाभी, और हर साल की थीम बहुत ही सुंदर है ना?
5: जी बिल्कुल दीदी, इस साल की थीम है न्यूबॉर्न सेफ्टी, एवरी टच एवरी टाइम एवरी बेबी, यानी कि हर बार जब भी हम बच्चे को छुएं, उसे उठाएं, दूध पिलाएं, नहलाएं, कपड़े बदलें, तो हर बार हमें पूरा ध्यान रखना है कि बच्चा सुरक्षित रहे। ये नहीं कि हर बार सावधानी बरती और दूसरी बार भूल गए। बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, हर बच्चा समान रूप से कीमती है और हर बच्चे की सुरक्षा जरूरी है।
6: बहुत बढ़िया, अब थोड़ी जानकारी लोगों को भी दे देते हैं कि बच्चे के पैदा होते ही क्या क्या करना जरूरी होता है। टीकन भाभी जरा विस्तार में समझाइए कि जन्म के तुरंत बाद क्या करना चाहिए।
5: अरे दीदी, जन्म का पहला घंटा सबसे अहम होता है। इसको गोल्डन आवर्स भी कहते हैं। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, सबसे पहले नाल काटने में थोड़ी देर की जाती है, 1-3 मिनट तक। इसे ही डिलेड कॉर्ड कटिंग कहते हैं। इससे बच्चे को माँ का खून और ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाता है। इसके बाद बच्चे को तुरंत पूरी तरह से सुखाया जाता है। गीला शरीर बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसका तापमान एकदम से गिर जाता है। फिर बच्चे की सांस देखी जाती है, अगर सांस ठीक नहीं चल रही हो तो NSS के ट्रेंड स्टाफ तुरंत उसे सहारा देते हैं। इसके बाद बच्चा माँ की छाती पर स्किन टू स्किन रखा जाता है, यानी उसका शरीर माँ की गर्मी से सीधे जुड़ा रहता है। ये बच्चे के तापमान, सांस, धड़कन सबको स्थिर कर देता है। और दीदी, सबसे जरूरी बात ये है कि जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का दूध पिलाने की शुरुआत की जाए। यही दूध बच्चे की पहली दवा है, पहली ढाल है। बच्चे को विटामिन के का टीका भी इसी समय दिया जाता है, ताकि आगे चलकर खून बहने की समस्या ना हो। और अंत में बच्चे का वजन, शरीर की जांच, और जरूरत हो तो आगे भी देखभाल शुरू और जरूरत हो तो आगे की देखभाल भी शुरू की जाती है।
6: ओह ठीक है भाभी, पर एक बात तो अक्सर लोग कहते ही रहते हैं कि नवजात बच्चा बहुत जल्दी ठंड से कांपने लगता है, यानी उसको बहुत जल्द ठंड पकड़ लेती है। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है इसकी?
5: दीदी, नवजात के शरीर में तापमान संभालने की ताकत बहुत कम होती है। हम बड़े लोग जैसे थोड़ी ठंड सह लेते हैं, बच्चा वैसा नहीं कर सकता है। उसका शरीर इतना नाजुक होता है कि जरा सी हवा या जरा सा गीला कपड़ा जरा सा देर भी उसके तापमान को गिरा देती, इसलिए बच्चे को ठंड बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जैसे ही बच्चा पैदा हो, उसे तुरंत अच्छी तरह से सुखाना जरूरी है। सिर पर छोटी सी टोपी डाल दो, कपड़ा लपेट दो, और कपड़ा भी थोड़ा गर्म रखा जाए। सबसे अच्छा तरीका तो है कि माँ की छाती से लगा रहे, यानी स्किन टू स्किन। इससे बच्चा सुरक्षित भी रहता है और उसका तापमान भी ठीक रहता है। ठंड नवजातों की सबसे बड़ी दुश्मन है दीदी, ये मैं पूरे अनुभव से कहती हूँ।
6: सही कहा आपने भाभी, अब बात करते हैं स्तनपान की। कई बार लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं, पर आप ही बताइए स्तनपान क्यों इतना जरूरी है?
5: दीदी, माँ का दूध नवजात के लिए भगवान का दिया हुआ वो खजाना है। जी, इसमें जितनी ताकत, जितना पोषण, जितनी दवा, ऑल इन वन है।
6: बिल्कुल,
5: माँ का दूध बच्चे को हर तरह के संक्रमण से बचाता है, उसे ताकत देता है, उसके दिमाग का विकास तेज करता है। और इसमें सबसे प्यारी बात ये है कि इससे माँ और बच्चे के बीच रिश्ता भी बहुत मजबूत होता है। जन्म के 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी, कुछ भी नहीं। बच्चे की पहली और असली दवा है माँ का दूध।
6: क्या बात है भाभी, लेकिन भाभी हमारे गांव में तो लोग बच्चे को छूते रहते हैं, चूम लेते हैं, हाथों में उठा लेते हैं, ये सब कितना सही है आखिर।
5: बस दीदी, यही सबसे खतरनाक चीज है,
6: है ना?
5: नवजात का शरीर इतना कमजोर होता है कि अगर कोई भी हाथ बिना धोए उसे पकड़े, चूम ले या बहुत सारी भीड़ उसके पास आ जाए तो संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है। नाभि को गंदे हाथों से छू दिया, समस्या। बिना हाथ धोए बच्चा उठा लिया, समस्या। घर में 10-20 लोग नया बच्चा दिखाओ, नया बच्चा दिखाओ कहकर इकट्ठा हो गए तो भी समस्या। हमेशा एक ही बात याद रखो, साफ हाथ, सुरक्षित बच्चा। बच्चे के लिए ये नियम सबसे बड़ा बचाव है।
6: ठीक है भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि कौन कौन से खतरे के संकेत हमें तुरंत पहचान लेने चाहिए।
5: देखिए दीदी, अगर बच्चा दूध ना पिए या उसकी सांसें तेज चल रही हो या सीना धंसता हुआ दिखे तो ये बड़े खतरे हो सकते हैं, संकेत होते हैं ये खतरों के। अगर बच्चा बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म लगे, त्वचा पर दाने फोड़े हों, बच्चा बहुत रोए या बिल्कुल ना रोए, बिल्कुल चुप पड़ा रहे तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। शरीर का पीला पड़ जाना, झटके आना, ये तो बिल्कुल भी इंतजार करने वाली चीजें नहीं है। ऐसा कुछ भी दिखे तो बिना देरी किए अस्पताल जाएं। नवजात के मामले में देर करना मतलब खतरा बढ़ाना है।
6: बिल्कुल सही बात है भाभी। अब एक और जरूरी बात, अस्पतालों में नवजात के लिए कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं?
5: दीदी, सरकार ने आजकल हर स्तर पर नवजात बचाने की व्यवस्था की है। सबसे पहले आती है NBCC यानी न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर, जहां बच्चे को गर्म रखने के लिए वार्मर होता है, ऑक्सीजन सेक्शन। इसके बाद आती है NBSU यानी न्यू बॉर्न स्टेबिलाईजेशन यूनिट, जहां हल्के बीमार या कम वजन वाले बच्चे को संभाला जाता है। फिर आती है SNCU स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट, ये तो बड़े अस्पतालों में होती है, 12-20 बेड वाली। यहाँ सांस की दिक्कत हो, कम वजन हो, पीलिया हो, संक्रमण हो या हर तरह की बीमारियों का इलाज होता है। और अब तो MNCU भी बन रहे हैं, जहाँ बच्चा और माँ साथ रहते हैं। बच्चा अस्पताल में भर्ती है तो माँ को अलग नहीं किया जाता, माँ ही उसके पास रहकर उसकी देखभाल करती है, और यही सही तरीका है।
6: गांव में आशा बहनें जो काम करती हैं उसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, तो जरा इस पर भी बता दे।
5: हाँ दीदी, HBNC यानी होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आशा बहनों की। जन्म के बाद आशा बहन 3rd, 7th, 14th, 21st, 28th, 42th दिन घर घर जाकर बच्चे की जांच करती है। वो वजन देखती है, छाती का उतार चढ़ाव चेक करती है, बच्चे को दूध कैसे पिलाना है ये सब सिखाती है। अगर कोई खतरे का संकेत दिखे तो तुरंत रेफरल कराती है, साथ ही माँ की देखभाल करती है। खून की कमी, कमजोरी, तनाव, परिवार नियोजन, HBNC का मकसद है कि हर घर में सुरक्षित देखभाल पहुँचे।
6: और भाभी एक बहुत जरूरी बात, ये जो KMC यानी कंगारू मदर केयर है जिसकी खूब चर्चा होती है, ये आखिर क्या है?
5: अरे दीदी, KMC तो जादू जैसा है,
6: है ना?
5: हाँ, इसमें बच्चा सीधे माँ की छाती पर रखा जाता है, त्वचा से त्वचा यानी स्किन टू स्किन, कम से कम 1 घंटे, जितना लंबा हो सके उतना अच्छा है। कई दिन कई हफ्ते तक किया जाता है, अस्पताल में भी किया जाता है और घर पर भी। इससे बच्चे का तापमान स्थिर रहता है, वजन तेजी से बढ़ता है, संक्रमण कम होता है और माँ का दूध ज्यादा बनता है, बच्चा भी शांत रहता है। मेरी तो हमेशा यही सलाह है, KMC जितना लंबा उतना फायदा ज्यादा।
6: यानी कंगारू मदर केयर बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जादुई भी।
5: बिल्कुल
6: भाभी, अब सरकार की कई योजनाएं चलती हैं नवजातों के लिए, उसके बारे में क्या कहना है आपका?
5: दीदी, सबसे पहले आता है NSSK यानी नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें हर प्रसव केंद्र पर प्रशिक्षित स्टाफ होता है जो जन्म के समय सही देखभाल, सांस चलने पर रीससिटेशन, ठंड से बचाव, इन्फेक्शन से बचाव करते हैं। दूसरा है JSSK, दूसरा है JSSK यानी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें बच्चे को एक साल तक मुफ्त इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त जांच, मुफ्त खून और घर से अस्पताल तक और वापस पूरी तरह मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। गरीब परिवारों के लिए तो ये सच में भगवान की कृपा जैसा है।
6: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। एक और बात कि विटामिन के का टीका क्यों लगवाया जाता है?
5: क्योंकि दीदी नवजातों में विटामिन के बहुत कम होता है और इससे कई बार अचानक खून बहने का खतरा भी होता है, इसलिए जन्म के पहले घंटे में ही 1 mg का विटामिन के देना बहुत जरूरी है। ये बच्चे को गंभीर बीमारियों से बचाता है।
6: और आखिर में नवजात देखभाल में घर में कौन कौन लोग मदद कर सकते हैं, ये भी बता दीजिए।
5: ये तो सबको करना चाहिए। हाँ, भैया, पिता, दादी, नानी, चाची, बड़ी बहन, हर कोई। माँ को आराम मिले, सफाई रहे, सही समय पर दूध दिया जाए, ये सब परिवार की ही तो जिम्मेदारी है। नवजात सिर्फ माँ का नहीं, पूरे परिवार का बच्चा होता है।
6: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। और भाभी कहीं ना कहीं आपने कुछ भ्रांतियाँ भी तो लोगों में मतलब होते हुए सुनी या देखी होंगी।
5: हाँ दीदी, और इन्हीं भ्रांतियों की वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पहला दूध गंदा होता है। अरे दीदी, यही तो सबसे पौष्टिक होता है।
6: वही तो।
5: हाँ, कहते हैं कि बच्चे को जल्दी नहला दो। अरे 24 घंटे बाद ही नहलाना चाहिए, ज्यादा लोग देखने आएंगे तो अच्छा है। नहीं दीदी, ये तो संक्रमण का बड़ा खतरा है। और सबसे खतरनाक भ्रांति, बच्चा थोड़ा ठंडा है, ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, ठंड नवजात की जान भी ले सकती है। मेरे गांव की बहनों और भाइयों, एक बात जरा दिल में उतार लो, हर बच्चा अनमोल होता है और नवजात की सुरक्षा सिर्फ माँ की नहीं बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। देखिए, नवजात का ध्यान रखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर सही रखा जाए तो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहता है।
6: ठीक है भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितनी सरल भाषा में इतनी जरूरी और इतनी महत्वपूर्ण बातों पर जरूरी बातें की। दोस्तों, जैसे टीकन भाभी ने कहा, नवजात सुरक्षा सप्ताह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए आज मिलकर एक वादा करें, हर बच्चा सुरक्षित बच्चा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ, पर जाने से पहले बिल्कुल हम लेंगे आपकी और हमारी सुरक्षा की शपथ।
7: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई।
8: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
9: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
8: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
9: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
8: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260-981-976, 9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: अरे सुना?
7: क्या?
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ!
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है
6: आरजे अंशिका।
5: जी हाँ, और आ गए हैं फटाफट शो शुरू करने के लिए। हम हैं बेताब क्योंकि आज है बारिश का मौसम, एंड ब्यूटीफुल सा मौसम जब हो जाता है ना, तो कुछ अतरंगी खाने का मन करता है और अतरंगी बातें करने का मन करता है। लेकिन क्या करें, जिनसे बातें करनी है वो तो इस समय बगल में ही है और ना जाने क्या क्या मुँह से निकलता रहता है बेवजह की बात।
6: बगल में ही है कि कहीं और?
5: कहीं और नहीं है, यही है। तुमसे ही बातें करनी है, लिसनर से बातें करनी है और क्या।
6: नहीं, मुझे
5: तो क्या, हम तुमको क्या एक्सपेक्टेशन थी? हम ये कहने वाले थे कि मुझे जिनसे बातें करनी है वो इस समय सो रहे हैं?
6: नहीं नहीं, ऐसा नहीं।
5: हाँ नहीं, तुमको क्या लग रहा है? मैं ये कहने वाली थी।
6: आप ऐसा नहीं कहने वाली थी।
5: हाँ,
6: मैं ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं।
5: नहीं भाई, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली थी, ठीक है। चलो तो अपना शो शुरू करते हैं, और आप सभी का पसंदीदा शो शुरू हो चुका है, जिसमें दो सहेलियों की होती है खट्टी मीठी बातें, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, नुस्खे, बहुत सारे रेमेडीज, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात होती है। और साथ ही साथ में बता दूं कि जो शो शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले अंशिका आज देर नहीं करेंगी। मैं हूँ आरजे समतैन, ये है मेरे साथ आरजे अंशिका। तो आइए आपका पसंदीदा शो शुरू करते हैं, जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समतैन आरजे
6: अंशिका।
5: जी हाँ, और इस प्यारे से मौसम में ना, दोपहर तो मन नहीं कर रहा है बोलने का, तो हैप्पी मॉनसून बोलेंगे अंशिका, ठीक है?
6: जी मैम।
5: तो एक साथ एक ही फ्रेम में हम दोनों लोग क्या बोलेंगे?
6: हैप्पी मॉनसून। बिल्कुल, हैप्पी मॉनसून, क्योंकि भाई बस कुछ ही है ऐसा वक्त कि जो मौसम है वो बरसने को बेकरार है और कुछ उठ रहा
5: थम
6: है
5: के बरस। तो मुझे लग रहा है कि हम पहला गाना लिसनर्स को यही सुनाने जा रहे हैं, थम के बरस।
6: ओहो, थम के बरस। वाह मैम, ने गाना भी क्या चूज किया है, थम के बरस। उसमें आगे की एक लाइन बहुत अच्छी है,
5: मुझे महबूब के पास जाना है, बस यही है और क्या है। पढ़ाया ना करो हमें ज्यादा।
6: नहीं मैं आपको पढ़ा गा रही हूँ, जस्ट मुझे सॉन्ग अच्छा लगता है।
5: धमके बरस, हाँ प्यारा सा गाना है बहुत।
6: आपने ये नाम लिया तो मुझे
5: ना ना। धमके बरस मुझे महबूब के पास जाना। वाह आगे चलिए चलिए आप कंटिन्यू करिए।
6: देखा मैम गादी बहुत अच्छा। और यही होता है लिसनर्स, जब मौसम होता है जबरदस्त तो हम खुद ब खुद हो जाते हैं मस्त मस्त मस्त। तो आज भी हम होंगे मस्त। और आप सभी को पता है कि आज का हमारा दिन कौन सा है। आज का हमारा दिन है थर्सडे। थर्सडे जो कि डेडिकेटेड हाँ होता है हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को। कुछ उनकी हेल्थ पे बात होगी, कुछ बातें होंगी पेड़ पौधों को लेकर के,
5: और कुछ उनकी ऐसी डिजीज के बारे में बात होगी जो कि ये बीमारी नहीं कहेंगे, उनकी आदतों को कहेंगे, जिससे भाई स्पेशली मैं हूँ बहुत परेशान। तो मैं आज सोच के आई थी कि मैं लिसनर्स को बताऊंगी कि अगर आप लोगों के घर में भी अगर ये किसी को ये अगर आदतें हैं या ऐसा कुछ हो रहा है तो वो क्यों होता है, उसका निवारण क्या होता है। तो टेंशन फ्री हो जाइए, हम आपको सब बताएंगे। लेकिन उसके पहले आइए एक प्यारी सी पोयम की, पोयम का टाइम हो गया है तो अंशिका मुझे देंगी रास्ता, मैं आऊंगी उस पे लेकर एक खस्ता और दोनों लोग खाएंगे प्यार से, खाते खाते हम लोग उसको कहेंगे हस्ता हस्ता।
6: वाह
5: हालांकि बना नहीं पर बना दिया मैंने,
6: बनने
5: जबरदस्ती वाला
6: कुछ हो रह गया, बाकी पूरा 90% आपने बना दिया
5: जी। चलिए
6: तो भाई हमारा है एक दूसरे से बहुत ही प्यारा वास्ता और इसलिए चलिए देते हैं रास्ता। तो रास्ता है कि बरस रही है बारिश की बूंदें, बरस रही है बारिश की बूंदें पर दिल कुछ कहने को बेकरार है। बरस रही है बारिश की बूंदें दिल कुछ कहने को बेकरार है। हो रही है एक नई शुरुआत क्योंकि हंस खेल रही है प्रकृति हमारे साथ। तो आइए करते हैं बहुत ही प्यारी सी कविता की शुरुआत
5: आपकी अपनी आरजे समता के साथ। मुझे पता था जो तुम्हारी ये राइमिंग त त त त वाली है ना, लास्ट में ये समता ही आएगी, है ना, मुझे पता है। बट थैंक यू सो मच अंशिका, इस रास्ते की आदत सी पड़ गई है, जब तक मुझे ये रास्ता नहीं मिलता है जो कविता होती है वो मुझे अधूरी सी लगती है। थैंक यू सो मच,
6: यू वेलकम मैम। तो चलिए सुनते हैं प्यारी सी कविता मैम के मुखारविंद से।
5: बोले अब हम,
6: अब आप बोले।
5: ठीक थैंक यू। बालों में छाई सफेदी चेहरे की ये झुर्रियां बताती हैं, बालों में छाई सफेदी चेहरे की ये झुर्रियां बताती हैं, इन्होंने जीवन की कितनी धूप छांव देखी है। ये वो मजबूत दरख्त हैं जो हमारे अपने आंगन के, जिन्होंने हर मुश्किल में हमें अपनी पनाह दी है। तप कर जीवन की भट्टी में जो अनमोल सोना बने हैं, उनके अनुभवों की तिजोरी से ही हमारे घर सजे हैं। हर सीख उनकी एक अनमोल वरदान है जीवन का, उनके ही आशीर्वाद से आज हमारे रास्ते बने हैं टेंशन फ्री। वाह। थक गए हैं पैर भले पर हौसला आज भी वही पुराना है।

0: ही अच्छी पोएट्री सुनाई मैम ने, और बिल्कुल सारी लाइन्स वही थी जो कहीं ना कहीं हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की लाइफ से बिल्कुल ही रिलेट करती है। बहुत ही प्यारा,
1: अच्छा था ना? ठीक है, ठीक है। तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ,
0: रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है, रास्ते बनाने नहीं पड़ते, रास्ते मिलते नहीं, उन्हें बनाना पड़ता है। अगर आप अपने रास्तों को बनाएंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, पर जिन्हें ये होता है कि मुझे रास्ते मिलने चाहिए, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते
1: जी।
0: इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है कि जब भगवान राम, श्री राम जो थे, वो समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां पर समुद्र ने उन्हें रास्ता नहीं दिया, बल्कि उन्होंने राम सेतु बनाया। ठीक उसी तरीके से हमेशा अपनी मंजिल को पाने के लिए रास्ते बनाएं, क्योंकि मिलते नहीं रास्ते, बनाने पड़ते हैं।
1: एग्जैक्टली सेम इसी की बात पे मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी कि जगह बनती नहीं है किन्हीं के दिलों में, जगह बनती नहीं है किन्हीं के दिलों में, वो जगह अपनी खुद बनानी पड़ती है। क्योंकि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में यूं ही नहीं आते हैं, उन्हें मजबूरन कह लें या कह लें उस खुदा की मर्जी, जो हमें वो लाने पड़ते हैं।
0: वाह,
1: मैं भी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत शायरी। ऐसा नहीं है, मतलब
0: know,
1: आपने क्या समझ के रखा है, आज समता के साथ बैठी है अंशिका,
0: ऐसा
1: मतलब क्या है, मतलब नहीं, मतलब क्या, मतलब मुझे नहीं आता है, आप मतलब क्या
0: ऐसा कुछ
1: है?
0: नहीं, आपको सब कुछ आता है?
1: नहीं, मुझे सब कुछ नहीं आता है, कोई दो चीजें नहीं आती है मुझे।
0: ऐसा क्या है जो आपको नहीं आता?
1: नहीं, ऐसा बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं आती। मुझे बेवकूफ बनाना नहीं आता है, मुझे क्रोध करना नहीं आता है। अब अंशिका,
0: अब
1: मुझे पता है तुम झेल चुकी हो, बट अब ठीक है। तो चले अब फटाक से हम लोग एक गाना सुन लेते हैं, जो कि है गाना प्यारा सा थम के बरस, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी ये गाना आया तो मैं चाहती हूँ कि मैं लिसनर्स को ये गाना सुनाऊं। तो आइए लिसनर्स सुनते हैं इस प्यारे से गाने को, जो कि है थम के बरस, मुझे महबूब के पास।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में हैं
6: RJ अंशिका।
5: इतना टाइम क्यों लगाती हो, तुरंत बोलना चाहिए RJ अंशिका, क्योंकि RJ अंशिका फिर लोग वेट करते हैं कि RJ अंशिका नहीं आई है आज।
6: नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम ना आए ऐसा बोले हो सकता है?
5: ठीक है,
6: जरूर आएंगे और आएंगे तो कुछ ना कुछ लाएंगे।
5: क्या खाने के लिए?
6: खाने के लिए नहीं मैम, खाने के लिए तो मंडे होता है। आज क्या बात है, आज कंफ्यूजन
5: बहुत ज्यादा हो रही है, सबको हो रही है, मेरे साथ साथ
6: तो जी। खाने के लिए नहीं है आज, कुछ बताने के लिए, क्योंकि खाने वाला काम तो हमारा मंडे को
5: होता है।
6: Exactly. उसके लिए आपको मंडे तक वेट करना पड़ेगा।
5: जी बिल्कुल, तो चलिए अपने प्रोग्राम को लेते हैं अभी एक बिल्कुल एक ट्रैक पे, तो फटाफट शुरू करते हैं आज के अपने सेकंड सेगमेंट को, जो कि भाई हम हमेशा से देखते हैं हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हों, अब तो यंगेस्ट को भी ये चीजें होने लगी हैं, जो कि है खर्राटे। और खर्राटे जब आते हैं तो पास वालों की नींद जो है ना वो खराब होती है, और इतनी ज्यादा खराब होती है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं खुद झेल रही हूं। मतलब मैं मेरी मम्मी से अगर लड़ाई होती है ना सोने के टाइम, तो इसीलिए होती है कि मम्मी खर्राटे दे रही हो धीरे धीरे दो। अब मम्मी कहती है हम धीरे धीरे खर्राटे कैसे देंगे, क्योंकि नींद में उनको पता थोड़ी पता चलता है
6: कि कैसे
5: हाँ कि किस स्पीड से खर्राटे दिए जा रहे हैं, तो ऐसे ही होता है। तो फिर इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं इस प्रॉब्लम का निवारण जो है ये मैं निकाल के ही रहूंगी आज। तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि ये क्यों होते हैं, किस अवस्था से, कोई ज़रूरी है कि ये जो हमारे इसमें बड़े बुजुर्गों को ही होता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जिया को भी आते हैं खर्राटे।
6: जी मैम,
5: बहुत ज़्यादा थकावट में भी आते हैं खर्राटे।
6: ऐसा जरूरी नहीं है लिसनर्स कि ये सिर्फ बड़े बुजुर्गों में हो, आप देखेंगे छोटे बच्चों में, यंगस्टर्स में, सब में होते हैं। क्योंकि खर्राटे का एक मतलब ये भी होता है कि आप बहुत बहुत बहुत गहरी वाली नींद सोते हो।
5: हाँ।
6: जो बहुत गहरी नींद,
5: यानी तुम्हें भी होता है। हाँ। तभी तो तुम इतनी पास भर रही हो।
6: मुझे भी होता है,
5: देखा हमने कहा ना, तो उसका कारण मैं भी पढ़ रही थी कि जिनका वेट ज्यादा होता है और जिनका गले और गर्दन की जो मांस होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से खर्राटे आते हैं। तुम्हारा बड़ा हुआ है?
6: नहीं, बहुत ज्यादा नहीं,
5: बाकी हिस्सों का तो बड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए वेट कम करो, खर्राटे तभी आते हैं।
6: नहीं, इधर मुझे कुछ कम आते हैं।
5: कितना वेट कम हो गया तुम्हारा जो खर्राटे कम आते हैं?
6: अरे मैम काफी कम हो गया।
5: नहीं रहने दो, लेकिन खर्राटे अच्छा। तुम एक दिन, मैंने ऐसे मम्मी से मेरी होने लगी बहस, मैंने कहा खर्राटे आप बहुत देते हो भाई, मुझे नींद वो नहीं आ। तो एक दिन मैं सोई और बहुत थकी हुई थी मैं।
6: ओके।
5: और पता नहीं चला मुझे, मेरे भी खर्राटे निकलने गए, तो मम्मी ने कहा कि मैं फोन लूंगी और रिकॉर्ड कर लूंगी तुम्हारे, तुम भी देती हो। तो हमने कहा मैं देती नहीं हूँ, वो आ जाते हैं अपने आप से, पर पता नहीं क्यों आ जाते हैं भाई खर्राटे। तो बोला आ जाते हैं, आ जाते हैं।
6: और ये एक नेचुरल थिंग है कि जब आप बहुत थके हुए होंगे, जैसे कि अभी मैम ने बताया, या फिर जिनकी हैबिट में ही है कि वो सीधा अगर रात को सोते हैं तो फिर सुबह उठते हैं।
5: हाँ।
6: बीच में जो नहीं उठते, मतलब गहरी,
5: जिनको गहरी नींद आती है,
6: जिन्हें हाँ। गहरी नींद आती है, तो उनके साथ ये होता है। लेकिन मैम ने जैसे कि अभी आपको एक बहुत बड़ा कारण पहले ही बता दिया, बच्चों की है वजन बढ़ना,
5: वजन बढ़ना है और जिनकी गले और उसकी जो क्या कहते हैं कि मांस है थोड़ा सा बढ़ जाता है जब, तो उसके कारण भी होता है। और मैं आपको बताऊं कि एक ना जब हम अगर सोते हैं ना तो नाक की एक हड्डी होती है, ये तो मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था अंशिका, क्योंकि मेरे फादर को भी बहुत आते थे और वो ऐसे वाले नहीं आते, भयंकर वाले आते थे। तो कहा जाता है कि, और मेरी दादी को भी बहुत आते थे, तो कहा जाता है कि नाक में हड्डी होती है ना, इसमें हड्डी पे तो टिका हुआ है ना ये, तो हड्डी जो है वो पड़ जाती है जिसके कारण भी, और ये अवस्था के बढ़ने पे होता है। ऐसा नहीं आपके लिए नहीं है, आपका तो वो थकावट जब बहुत ज्यादा होती है सोते हैं फिर होता है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के पास में क्या होता है कि वो नाक की हड्डी बढ़ जाने के कारण से भी ये प्रॉब्लम होती है।
6: ओके, इसीलिए मेरे यहाँ भी मम्मी को,
5: हाँ, तो वो नाक की हड्डी बढ़ जाती है, तो उसका निवारण उपचार मैं बताऊंगी। लेकिन क्यों होता है, किस लिए होता है, मैंने तो थोड़ा ब्रीफ करिया है, बट उसको ज्यादा ब्रीफ करेंगी अंशिका।
6: ओके, तो तीन कारण आपने अभी जान लिए कि क्यों होता है, बताते हैं चौथा कारण। चौथा कारण है हमारी बॉडी में मोनोपॉज का बढ़ जाना। मोनोपॉज और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जब आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं तो इससे भी खर्राटे ज्यादा आने लगते हैं। मोनोपॉज का मतलब होता है कि मोनोपॉज हमारी बॉडी में हार्मोन्स को मेंटेन करता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में कभी गलत हार्मोन्स का श्राव नहीं होने देता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मोनोपॉज की मात्रा ही ज्यादा हो जाती है जिससे खर्राटे आते हैं। ये सबसे पहले आपकी, जैसे आपने किसी को देखा होगा कि हम उनको कहते जरूर नहीं कि अरे आप तो बहुत अच्छे से सोते हो ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बीच बीच में कभी आपने देखा होगा नींद खुल जाती है या हम खर्राटे लेते लेते कभी कभी चौंक जाते हैं किसी किसी के साथ
5: होता है, मम्मी के साथ होता है ऐसे,
6: तो वो होता है
5: या मैं ही उनको हिला देती हूँ, भैया बस करो मम्मी मुझे भी सोना है। अब कुछ दिनों से मैंने एक टेक्निक अपनाई है, पता है क्या, कि मैं ना स्लो म्यूजिक ऑन कर देती हूँ जब तक मुझे नींद नहीं आ, भाई जब तक मुझे नींद नहीं आ रही है, उनको नींद आने मतलब शुरू हो जाते हैं उनका प्रोसेस, तो जब तक मुझे नींद नहीं आती है मैं स्लो म्यूजिक अपने कान में बिल्कुल मोबाइल ऑन करके रख देती हूँ, तो उनके खर्राटे मुझे सुनाई नहीं देते हैं और मैं आराम से फिर सो जाती हूँ और सीधे फिर सुबह उठती हूँ।
6: अच्छा है मैम,
5: अच्छा आइडिया है ना।
6: एक आइडिया और बताऊंगी मैं आपको,
5: अच्छा खर्राटों का,
6: खर्राटों का,
5: अच्छा ठीक है,
6: जो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा,
5: कान में रुई डाल दो।
6: अरे वाह,
5: यही था ये तो बच्चों वाला था,
6: नहीं लेकिन फायदा होता है,
5: सच्ची
6: आप देखिए एक रात आप ऐसे
5: मतलब करके देखेंगे आज हम, हाँ
6: अच्छे से, और फिर आप सोके देखिए आपको तो, ये तक नहीं पता चलेगा कि आसपास आवाज भी हो रही है।
5: तो कान सांस कैसे लेगा,
6: कान सांस भी लेते हैं
5: और क्या, कान अगर आप ऐसे बंद कर दोगे ना तो कानों में आवाज आती है, सी ऐसे करके देखो,
6: नहीं
5: अगर आपने कानों में कानों को बंद कर दिया तो आप सो नहीं पाओगे, फिर कानों से आवाजें आती हैं।
6: ओके, हो सकता है,
5: आज
6: मैं ट्राई करूंगी, आज
5: ट्राई करना ठीक है,
6: देखते हैं आवाज,
5: और मैं भी ट्राई करूंगी, कॉटन डाल दूंगी उसमें,
6: हल्के मतलब क्या होता है कि बहुत अंदर तक नहीं, जैसे कुछ लोगों से आप कहो कि कॉटन आप कान में लगा के रखिए,
5: पूरा डाल ही देंगे अंदर,
6: वो पूरा वो कर देते हैं, हल्का सा बस यहाँ पे,
5: हाँ।
6: ऐसे अगर आप डाल लेंगे हल्का बहुत हल्का तो आपको बाहर की कोई आवाज नहीं आएगी और आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा,
5: ठीक है।
6: ये मैं तब करती थी जब मुझे पढ़ाई करनी होती थी रात को और मेरे पास वाले रूम में दीदी मेरे साथ रहती थी तो वो फोन चलाती थी, तो मुझे पढ़ाई करनी होती थी, मेरे बोर्ड के एग्जाम्स होते थे और वो फोन चलाती थी तो मुझे डिस्टर्ब बहुत ज्यादा होता था, और ईयरबड्स लगाते थे तो अजीब सी वो होती थी कान में, सही नहीं लगता था, तो मैं ये ट्रिक करती थी कि मैं आराम से कॉटन हल्का सा डाल लेती थी और बैठ के पढ़ती थी तो मुझे वो सॉन्ग्स की आवाज या जो भी वो देख रही होती थी उसकी आवाज नहीं आती थी। तो ये आप ट्रिक यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अब आते हैं नेक्स्ट वाले रीजन पे, अभी एक मैंने आपको बताया, दूसरा होता है कि दवाइयों का असर। बुजुर्गों को कई सारी जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, इन सारी चीजों की कहीं ना कहीं मेडिसिन लेनी पड़ती है, और आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब भी मेडिसिन देते हैं तो उसमें नींद की मेडिसिन जरूर होती है।
5: हाँ, वो नींद की एक्चुअली नहीं होती है, वो सर की नसों को आराम करने के लिए होती है, और हम लोगों को ये डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये नींद की टैबलेट है।
6: बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी होता है कि खर्राटे आते हैं, क्योंकि कई बार हमें नेचुरली नींद आती है और कई बार दवाइयों के असर से, तो उसकी वजह से भी होता है कि खर्राटे रेगुलरली आते हैं और आप जान नहीं पाते।
5: जी,
6: तो ये कुछ रीजंस थे कि खर्राटे क्यों आते हैं और कैसे ठीक हो सकते हैं, मतलब क्या कुछ आप कर सकते हैं,
5: प्रिकॉशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, यही कहने का इसका मतलब था। हाँ। ये इतना लंबा चौड़ा अभी बोलती कि ठीक करने का प्रोसेस जो होता है वो आज समता के पास है, ब्ला ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या बोलती जाती, तो इससे अच्छा मैंने उसको शॉर्ट में कर दिया कि ठीक करने का प्रोसेस मेरा है, तो मैं ठीक करूंगी लेकिन एक सॉन्ग के बाद।
6: आइए चलिए लिसनर्स सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग, बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260961 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।

0: दोस्तों, हमारी जिंदगी में ऐसे अजीबोगरीब लोगों का जो है ना वो एंट्री और एग्जिट होता रहता है कि हम लोग अभी हंस हंस के बिल्कुल पागल हो रहे हैं। खैर, आते हैं हम अपने काम पे और आपसे मिलने, क्योंकि हम दोनों सहेली, इनकी तो हंसी नहीं बंद होगी। अब हमको लग रहा है 3 बजे तक हंसती रहेंगी।
1: नहीं नहीं, बंद हो गई,
0: बंद हो गई ना? नहीं, हंसी नहीं बंद होनी चाहिए जीवन में। अगर हंसी बंद हो गई जिस दिन, उस दिन जीवन काल समाप्त।
1: नहीं, लेकिन यहाँ मैम ये भी तो शुरुआत करनी है ना, बताना है लिसनर्स को।
0: वैसे क्यों हंसी थी तुम?
1: कुछ सुन लिया मैंने, कुछ मुझे हंसी आ गई। अब मैं उस पॉइंट पे नहीं जाना चाहती हूँ, फिर हंसी आ जाएगी।
0: जी, तो चलिए, खर्राटों पे बात शुरू हुई थी और खर्राटों पे ही खत्म होगी।
1: कहीं और पहुंच गई थी, लेकिन अभी वापस
0: प्यार पे शुरू और प्यार पे खत्म, है ना?
1: खर्राटों की उम्र हो इतनी सनम, ऐसे कुछ है गाना।
0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मतलब इतना खराब गाने किसने कान बंद कर लिए?
1: नहीं, इतना अच्छा गाने थी यू रेड। अरे आजकल मैं उल्टी दिशा में जाने लगी।
0: तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, ये है गाना।
1: वाह,
0: ठीक है, चलो। तो सोने की पोजीशन को बदलें, यानी कि साइड स्लीपिंग जो कि होता है उसको आप शुरू करें, एंड जिसकी वजह से आपकी क्या होता है वो बताती हूँ। Okay. पीठ के बल सोने से जीभ और तालू पीछे की ओर गिर जाते हैं, जो सीधा सोते हैं, ठीक है, और रास्ता रोकते हैं, ठीक। बुजुर्गों को हमेशा करवट लेकर साइड में सोने की आदत डालनी चाहिए, जिसके कारण से खर्राटे जो होते हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है
1: जी मैम।
0: सेकेंड पॉइंट इज कि सिर को थोड़ा ऊंचा रखें, तकिया जो होता है वो थोड़ा ऊंचा रखें। सोते समय बिस्तर के सिरहाने को या तकिए की मदद से सिर को 4 या 6 इंच ऊपर उठाकर रखें, ताकि वायु मार्ग खुला रहे। वायु मार्ग पता है कौन सा होता है?
1: कौन सा?
0: नाक से। नाक से वायु मार्ग।
1: ओके।
0: तुम कौन सा वायु मार्ग समझ रही?
1: नहीं, नहीं, मैं यही वायु मार्ग समझ रही थी।
0: नाक वाला वायु मार्ग खुला रहे, समझ में आया? क्या आंची, आज क्या खा के आई हो तुम? देख लीजिए, सनी पांडे जी और तबिश और ये जो जितने भी महेंद्र जी, आज ये पता नहीं क्या खा के आई है, खुद भी पगला रही है, मुझे भी पगलाने की स्थिति पे कर रही है। तो वायु मार्ग खुला रहे, यानी कि हमारी नाक की पोजीशन जो होती है वो
1: सही रहे,
0: खुली रहे, ठीक है। उसके बाद में वजन नियंत्रित करें, सबसे पहला वजन को नियंत्रित करें, यानी कि हल्का व्यायाम या वॉक करने से वजन संतुलित रहता है, जिससे गर्दन के पास का फैट कम होता है और खर्राटों में राहत मिलती है।
1: ओके,
0: तो ऐसा आप करेंगी ना आप?
1: हाँ।
0: दवाइयों और खान पान पर ध्यान देने वाली बात, सोते समय भारी भोजन से बचें, डॉक्टर की सलाह के बिना नींद की गोलियां या मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं का सेवन ना करें, शराब या धूम्रपान से पूरी तरह परहेज करें। ऐसा तो नहीं पीती हो ना कुछ
1: मैम? क्या
0: सिगरेट वगैरह या कुछ नहीं ना ऐसी? मतलब कुछ होता है ना किसी किसी को आदत, रात में लाओ एक सुडुक लें तब सोएं, ठीक है?
1: मतलब ये क्वेश्चन पूछने के लिए मैम को मैम
0: नहीं, देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल।
1: नो नॉट, मैं ये
0: लव एंड वॉर,
1: खाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं।
0: तो तुम्हें हम खाने के लिए थोड़े, वो तो पीने के लिए बोल रहे हैं।
1: अगर पीने के लिए भी है, अगर आपको रात को पीना है तो कोल्ड ड्रिंक पियो, आमरस पियो।
0: नाक को साफ रखें। यदि एलर्जी या साइनस के कारण नाक बंद हो जाती है तो डॉक्टर से नेजल सिस्टम्स, यानी जो स्ट्रिप्स होती हैं, नेजल स्ट्रिप्स होती हैं, जो सायरन स्प्रे या स्टीम भाप का उपयोग कराती है उसको आप करें, जिसके कारण से ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं बताऊं आपको, कि करवट जब आप लेते हैं तो आप अपने घर के जितने भी लोग हैं उनको आप ये सलाह दें कि आप सीधा ना सोएं, करवट बदल के सोएं।
1: ओके,
0: ठीक है, जिससे क्या होगा कि खर्राटे जो है वो कम आएंगे। और खर्राटों के साथ रात में अगर अचानक सांस टूटने या दम घुटने जैसा महसूस हो रहा है और दिन में अधिक थकान या कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि खर्राटे आप उसको हल्के में तो ले रहे हैं बट ये ऐसी वैसी चीज नहीं है। एंड जैसा अभी अंशिका ने बताया था कि खर्राटे क्यों आते हैं, अब कुछ असरदार मैं साथ ही साथ में प्राणायाम और योगासन बताने जा रही
1: हूं। अरे वाह,
0: भाई मैं उससे जुड़ी हूँ तो मैं उससे हाँ। पीछे कैसे रह सकती हूँ।
1: बिल्कुल। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपको आते हैं खर्राटे तो कौन कौन से योग करने चाहिए।
0: तो उज्जयी प्राणायाम, अब आपको उज्जयी प्राणायाम क्या है तो आपको इसके लिए सुनना पड़ेगा सुबह 6 से 6:30 के बीच में योगशाला, जिसमें उज्जयी प्राणायाम हम करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि नाक की मांसपेशियों को कसकर नाक से गहरी सांस लेनी होती है, ताकि गले से जो घर्षण होता है, खर्राटे जैसी हल्की सी आवाज जो होती है, वो कुछ देर सेकंड रोक करके दाई नाक कर बाई नाक से सांस को छोड़ना होता है, जिसके कारण से अगर आपके नाक में गले में अगर कफ है, बलगम अगर जमा हुआ है, तो उससे वो हटता है और खर्राटे नहीं आते हैं। समझ में आया?
1: समझ में आया।
0: दूसरा है कि सिंहासन यानी लॉयन पोज, वज्रासन में बैठकर मुंह को खोल लेना है, जीभ को बाहर निकाल लेना है और शेर की तरह आवाज करना है, जिससे क्या होगा कि अगर आप सांस को बाहर छोड़ेंगे, इससे गले और जबड़े की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आपको खर्राटे नहीं आएंगे। उसके बाद अनुलोम विलोम, ठीक, ये तो सभी को पता है अनुलोम विलोम कैसे होता है, ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम, आंख कान को बंद करके भवरे जैसा गुंजन करना है और आवाज निकालिए, जिसकी वजह से आपका मन शांत रहता है और गहरी नींद आती है।
1: वाह।
0: और खर्राटे
1: नहीं आते,
0: नहीं आएंगे कभी।
1: तो यानी कि आज से जो जिन्हें भी आते हैं खर्राटे, उन्हें ये सारे प्रिकॉशंस करने हैं और अपने खर्राटे पे आपको अंकुश लगाना है, ताकि उससे दूसरे लोग परेशान ना हो।
0: जी हाँ। और अब हम बताने जा रहे हैं कि एक नुस्खा, जो कि घर बैठे अगर आप इसको कर ले रहे हैं तो आपको खर्राटे जल्दी ठीक हो सकते हैं। गाय का घी, घी मतलब घी जैसे देसी घी जो होता है वो, ठीक है। रात को सोने से पहले उसको हल्का सा गुनगुना कर ले यानी पिघाल ले, और उसको 2-2 बूंद अपने नाक में नाक के मार्ग से डालना है, मतलब नाक में डालना है, नाक के जो 2 छिद्र होते हैं उसमें आपको 1-1 बूंद डालनी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप उसको गुनगुना कर ले, पिघाल ले, अब खोलता हुआ नहीं डाल देना है। एक कुछ महा बैल मुख हमारे बगल में भी बैठे हैं ना, पता लगा कि घर गए, मम्मी आज मैम ने कहा है कि खर्राटे आएंगे तो लाओ तुम्हारे नाक में हम घी डाल दें, और वो खोला नहीं और डाल दी वो। तो ऐसा नहीं करना है, गुनगुना करना है, आपको फिंगर डाल के देखना है कि बिल्कुल नॉर्मल गुनगुना हो जाता है, मतलब सहंदा हुआ, सहता हुआ, उसको नाक में डाल, नाक में सोते समय, जब वो सोने जाए तब आपको 1-1 बूंद उसमें नाक में डाल देनी है, ठीक है
1: जी मैम।
0: और इसके अलावा मुलेठी, तुलसी और हल्दी जैसी जड़ी बूटियां जो होती हैं, वो श्वास की नली और श्वास की जो सूजन होती है उसको ठीक करने में मदद करती हैं, उसको उसका सेवन करते रहना चाहिए। मुलेठी, तुलसी और हल्दी, इन तीनों चीज़ों को आप सुखा लें और इसका पाउडर बना लें, और 1 पिंच आपको लेना है और रात को सोते समय।
1: तो भाई बहुत ही अच्छे अच्छे प्रिकॉशंस और काफ़ी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं, तो आई होप कि अब खर्राटे वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाएगी और जो भी इससे परेशान है उन्हें भी राहत मिलेगी। तो फिलहाल हमें राहत चाहिए,
0: राहत चाहिए,
1: राहत के लिए कहाँ जाना चाहिए?
0: राहत के लिए अभी एक गाना सुनाती हूँ मैं तुम्हें, और क्योंकि तुमने अभी बोला था एक गाना अभी कौन सा जो मुझसे गवाया था अभी,
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी,
0: तो मुझे लग रहा है कि आज जो हम लोगों के मुंह से गाने निकल रहे हैं हम उन्हीं गानों को
1: सुनाएंगे। तो मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, बहुत ही प्यारा सा ये सॉन्ग है, और अभी आपने सुना था, मैम ने गाया भी बहुत अच्छा, बहुत सुरीला,
0: पता नहीं वो तो भगवान जाने कि हम सुरीला गाए कि बेसुरीला गाए,
1: नहीं सुरीला था,
0: सुरीला था,
1: से पूछे
0: पता नहीं। लिसनर्स आप बताएं कि मैं सुरीला गाती हूँ कि बेसुरीला गाती हूँ, लेकिन इसके पहले ये सुन लेते हैं इस प्यारे से गाने को, और हम आते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
5: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आरजे
7: अंशिका।
6: अंशिका, तो आइए चलते हैं अपने दूसरे यानी तीसरे टॉपिक की ओर।
7: तो हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन उससे पहले भाई मौसम बहुत अच्छा है मैम।
6: मौसम मस्ताना, आज क्यों इतने अच्छे से गाने मुंह में आ रहे हैं? रास्ता दीवाना, जाने जाने को किस मोड़ पे बन जाएगा अफसाना। भाई आप लोग बताते नहीं है कि मैं कैसा गा रही हूँ, मैं उल्टा सीधा ही गाती हूँ, बट आप लोग को बताना
7: अच्छा
6: चाहिए था भाई।
7: लिसनर्स तो मैम आपस में बात करने में इतना वो हो जाते हैं ना, बिजी हो जाते हैं।
6: हाँ।
7: कि वो हमारे किसी उसका जवाब
6: देते ही नहीं है। रानी गुप्ता, सबलू जी, महेंद्र जी और सबलू जी, आप लोगों ने ना मतलब बताना भी नहीं उचित समझते हैं कि
7: बताना
6: कि भी नहीं आता। ये गाना अच्छा भी है। मैंने कौन सा गाना गाया था अभी?
7: अभी हमने मौसम मस्ताना
6: चलो
7: ऐसा था
6: जी।
7: तो लिसनर्स आप जरूर बताएं और आपस में बात थोड़ी सी कम करें, थोड़ी हमारी भी बातों को सुने। तो आइए अब बढ़ते हैं हम एक टॉपिक की तरफ, जो कि है कि बड़े बुजुर्गों में रिटायरमेंट के बाद का जो डिप्रेशन होता है वो क्यों होता है। तो रिटायरमेंट के बाद की डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इंसान रेगुलर काम कर रहा है, मतलब एक लंबे टाइम तक, एक लंबी रूटीन तक, और जब उसे अपना वो रूटीन छोड़कर घर पे बैठना पड़ता है तो कहीं ना कहीं एक खालीपन आ जाता है, एक हम मिस करते हैं। देखिए जैसे पूरी लाइफ आपने जिनके साथ काम किया हो, 7-8 घंटे दिए हो, तो धीरे धीरे हम मिस भी करते हैं अपना वो डेली रूज का रूटीन कि सुबह उठना, ऑफिस जाना, तो कहीं ना कहीं हमको खालीपन सा लगता है और वही खालीपन धीरे धीरे चिड़चिड़ेपन में बदलने लगता है। दूसरा कारण होता है कि हमें ये लगता है कि हम फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड हो गए हैं। अब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, पहले तो हम काम करते थे तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक डर होता है। दूसरा होता है कि धीरे धीरे जैसे जब आप ऑफिस जाते हैं तो वहाँ लोगों से मिलते हैं, आपके नए दोस्त बनते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जब हम घर में एक बंद जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो हमारे लिए थोड़ा सा कम हो गया है।
6: हाँ।
7: लोग हमसे कम इंटरेक्ट हो रहे हैं, कम बातें कर रहे हैं, या लोगों का शायद देखने का एक नजरिया बदल गया है कि पहले जब आप काम करते हो तो लोग कहते हैं ना, अरे देखो कितना काम करती है, कितनी मेहनत करती है, लेकिन बाद में एक बढ़ती उम्र के बाद जब हम रिटायर हो जाते हैं तो वो एक रूटीन बदल जाता है कि अरे अब तो वो काम पे नहीं जाती है ना, अब तो वो दिन भर घर पे ही रहती है।
6: बिल्कुल।
7: या अब तो वो दिन भर घर पे ही रहते हैं। तो एक ये रूटीन, एक ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए, किसी में भी नहीं होनी चाहिए, कि आप अपने उसको पूरी तरह से चेंज कर लीजिए कि आप तो घर पे ही रहते हैं, तो उससे क्या हुआ, पूरा लाइफ तो उन्होंने काम किया है ना, तो हमें एक अपने इस नजरिए को चेंज करना चाहिए। ये कारण होता है। और दूसरी चीज होती है कि इसी की वजह से डिप्रेशन शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या लक्षण होते हैं कि हम जानें कि डिप्रेशन शुरू हो रहा है। डिप्रेशन शुरू होने का सबसे पहला और सबसे मेन सिम्टम्स जो होते हैं वो है अकेले रहना। अगर किसी भी इंसान में

0: दूसरी चीज आती है कि जैसे पहले भी हमने आपको बताया है कि नींद ना आना और भूखे रहना, खाना नहीं खाना, ये भी डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। और सबसे मेन लक्षण होता है कि आप वो सारे कामों को बंद कर देते हैं जो पहले आपको बहुत
1: जो आपके फेवरेट हुआ करते,
0: जो आपके फेवरेट हुआ करते। और हर वक्त नकारात्मक बातें करना, नेगेटिविटी को हर वक्त ढूंढ ढूंढ कर लाना कि अरे मेरी लाइफ तो खत्म हो गई है ना, मैंने इतना किया, क्या कर लिया लाइफ में, देखो आज लोग इस एज में कहाँ पहुँच गए। इस तरह की चीज़ों को, नेगेटिविटी को जब हम अपने अंदर बार बार बार बार लाते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेंटली वीक हो रहे हैं और डिप्रेशन के
1: शिकार हो रहे हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हम लोग ना बिना सर पैर की बातों में हम उलझे रहते हैं। मतलब ऐसा होता है, अगर मान लीजिए कि हमको कहीं पर बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, पेट में, आंख में, दांत में, कहीं पे भी, तो पता है हम लोग उसके ना 200 पॉइंट्स हम लोग अपने मन से बना लेते हैं, शायद मुझे ये तो नहीं हो गया, शायद मुझे वो तो नहीं हो गया, शायद इसका ही, और फिर उसका असर हमारी बॉडी पे होने लगता है। बिल्कुल,
0: क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिविटी की तरफ ही जाना चाहिए। इसके कुछ, अगर पूरी तरीके से डिप्रेशन हो गया है तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी हैं जो कि आपको लेने चाहिए। तो पहला प्रिकॉशन जो होता है वो ये होता है मैम कि हम डॉक्टर को दिखाएं, हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। सबसे मेन कारण होता है कि जब हमारी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है या हमें कोई एक छोटी सी आपको फीवर भी आता है ना, तो तुरंत आता है अरे यार डॉक्टर को दिखा लो, अगर बढ़ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हम उठकर तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब किसी मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात आती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं घर में ठीक हो जाएगा, फालतू में डॉक्टर के पास मत जाओ, लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि कुछ और ही है। हम ये थिंकिंग क्यों नहीं बदलते कि अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाना है, तो मेंटल प्रॉब्लम है तो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। उन्होंने भी अपनी पढ़ाई की होती है, उन्होंने भी डिग्री ली होती है, वो आपकी उन मेंटल प्रॉब्लम को यूं खत्म कर देते हैं, उन्हें बढ़ने ही नहीं देते। लेकिन जो कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं, हमारी वो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है। यहाँ मैं डराना नहीं चाहूंगी मैम किसी को, लेकिन एक ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि अगर डिप्रेशन एक हद के ऊपर चला जाता है तो इंसान खुद अपनी जान भी ले सकता है।
1: हाँ, exactly, ये इस पर डराने की बात नहीं है, लेकिन होता है ऐसा, कई बार देखा गया है।
0: इसलिए साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं, उससे खुलकर बात करें और अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम, सारी फ्रस्ट्रेशन उसे बताएं। वो सिर्फ अपनी बातों से और कुछ अपनी थेरेपीज जो उसके पास होती हैं उन्हें यूज करके आपको बिल्कुल ठीक कर सकता है। अगर उनको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम और सीरियस है तो वो आपको कुछ मेडिसिंस देंगे और आप एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ जी पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को ये कहकर इग्नोर नहीं करना चाहिए कि अरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम इग्नोर जिन चीजों को करते हैं वो इतनी बड़ी बन जाती है कि बाद में फिर हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
1: हाँ, मैं कुछ देख रही थी, मैं कुछ ऐसा हॉलीडेज के लिए सोच रही थी, तो मैं वो देख रही थी, मैं इसलिए थोड़ा सा नहीं मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगस्त के महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं वो उनको हॉलीडेज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है और उसमें त्यौहार भी बहुत होते हैं और वो थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड के होते हैं, उन्हें अलग अलग चीज़ें और जैसे अलग अलग त्यौहार होते हैं तो अलग अलग उनके दिमाग में क्रिएटिविटी आती रहती है। तो अगस्त बॉर्न कौन है, मैं हूँ ना, मुझे आपको पता ही है, तो ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आया तो मैंने इसीलिए इसको सर्च किया कि क्या ये बात सच्ची है। तो सच्ची नहीं, मुच्ची है ये बात, एग्जैक्टली हाँ है। तो अंशिका, ये जो अभी गाना हम लोग गा रहे थे ना, मौसम मस्ताना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने साथ यानी तुम्हारे साथ लिसनर्स को भी सुना दूँ। ये बहुत ही प्यारा सा गाना है और लिसनर्स के साथ अगर हम सभी सुनेंगे तो और भी मजा आएगा।
0: तो आइए सुनते
1: पहले आप में गाड़ी निकल जाएगी,
0: तो गाड़ी नहीं निकालते हैं, हम ही बोल देते हैं कि आइए सुनते हैं ये सब।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में है
7: RJ अंशिका।
6: तो चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले सेगमेंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि आज का हमारा दिन में होता है प्लांट्स के बारे में। भाई इतना प्यारा सा मौसम है, इतनी प्यारी सी सावन के मौसम में। कहते हैं कि ये कहावत है कि अगर सावन के मौसम में हमने उल्टे हाथ से भी कुछ बो दिया, कुछ लगा दिया, तो वो भी फलित हो जाता है, ऐसा माना है। और मैंने ऐसा किया है, उल्टे हाथ से नहीं, मैंने उसको सीधे हाथ से लगाया था, लेकिन वाकई में वो लग गया।
7: ऐसा ही होता है मैम, सावन में पौधे जल्दी लग जाते हैं।
6: हाँ।
7: लेकिन हमारे पौधों में कीड़े भी जल्दी लग जाते हैं। पौधे की पत्तियों में कीड़े लगने के लिए आज मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी कि जिनसे आपकी पौधों की पत्तियां खराब नहीं होंगी।
6: जी।
7: तो आपको क्या करना है कि आपको नीम का तेल लेना है।
6: ओके।
7: एक चम्मच आप नीम का तेल ले लीजिए और उसमें 5 से 6 बूंद आप मिला दीजिए, जो की होती है लिक्विड। लिक्विड आप कोई भी घर पे यूज करते हैं, लिक्विड सोप।
6: लिक्विड सोप,
7: हाँ,
6: अच्छा।
7: उसकी बूंदें मिला दीजिए, 4 से 5 बूंदें मिला दीजिए और उसे एक बॉटल में भर लीजिए, स्प्रे बॉटल में, और अपने पौधों की पत्तियों पे स्प्रे करें। लिक्विड सोप का मतलब होता है कि जैसे हैंड वॉश जो हम यूज करते हैं, या ऐसे घर पे आप लिक्विड यूज करते होंगे जिससे हम आप बर्तन वगैरह साफ करने के लिए जो यूज करते हैं, वो आप मिला सकते हैं।
6: अच्छा।
7: और इसके साथ में नीम का तेल, इन दोनों को स्प्रे करके आप अच्छे से स्प्रे बॉटल में इसको शेक करके मिला लीजिए और फिर स्प्रे बॉटल में लेकर के पत्तियों पर डालिए। इससे आपकी पत्तियों में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे।
6: हाँ जी, गुड आइडिया। वाह।
7: और दूसरा आइडिया बताती हूँ, दूसरा आइडिया जो कि है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम सभी के पास होता है, तो 1 चम्मच बेकिंग सोडा और पूरा 1 चम्मच भर के शैम्पू, जो भी आप घर पे यूज करते हो, उन दोनों को अच्छे से शेक कर लीजिए, मिला लीजिए अच्छे से, पानी अपने हिसाब से, एक बॉटल आप बनाना चाहते हैं या छोटी बॉटल, बड़ी बॉटल, जैसे भी, और उसको अपने पौधे की पत्तियों में आपको डालना है।
6: अच्छा।
7: लेकिन दिन में सिर्फ एक बार। इससे आपके पौधों की पत्तियों में कीड़े नहीं लगेंगे और पौधे खराब नहीं होंगे और अच्छे से रहेंगे। आपके पौधे कभी भी जिसे बोलता है ना मुरझा जाते हैं या पत्तियां सूख जाती हैं,
6: पीली पड़ जाती हैं,
7: पीली हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
6: अच्छा। तो मेरे पास भी कुछ ऐसे ट्रिप एंड टेक्निक्स है, तो मैं सोच रही हूँ कि बताऊं।
7: बिल्कुल मैम।
6: चलो, तो सड़ी हुई पत्तियों को हमें हटा देना चाहिए, ये कुछ जरूरी टिप्स हैं। और जिसमें कि जो पत्तियां सड़ चुकी होती हैं उसे तुरंत कैंची से काट कर पौधे से अलग कर दें ताकि वो इन्फेक्शन का काम ना करें और इन्फेक्शन यानी कि स्वस्थ पत्तियों में ये चीज़ें ना फैलें। और उसके बाद में एक ऑप्शन और है मेरे पास कि मिट्टी सूखने पर ही पानी दें। उंगली से गमले के ऊपर 1-2 इंच मिट्टी चेक करें, अगर मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें। ज़्यादा पानी देने से, अच्छा तो ये भी एक कारण है कि ज़्यादा पानी देने से पौधे जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं। एंड डैमेज होल चेक करें, जैसे डैमेज होल हो जाता है उसको भी आप चेक करें कि सुनिश्चित करें कि गमले के नीचे का जो छेद बंद ना हो ताकि एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकल सके। कई बार ऐसा होता है कि गमले में जो नीचे का होता है जो उसको कहते हैं डैमेज होल, वो अगर बंद हो जाता है उसके कारण भी पूरी मिट्टी जो होती है ना उसमें नमी होती है पकड़ लेता है और उसके कारण से ही पौधे जल्दी सड़ने लगते हैं।
7: तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपके पौधे खराब ना हो और इस बारिश में फले फूले अच्छे अच्छे आपको फ्लावर्स दें।
6: जी
7: तो चलिए लिस्नर्स, अब मैं चलती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे कॉलर ट्यून गोंडा में, तब तक के लिए बाय बाय।
6: तो भाई अंशिका को मैंने दी है अभी 2-3 मिनट के लिए आज़ादी क्योंकि वो पानी पी लें और थोड़ा रिलैक्स कर लें। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने हमारे सुन सहेली को प्यार दिया है वैसे ही आप योगशाला को दे रहे हैं। आज मैंने ग्रेटिंग देखी थी, ओ वाह मज़ा आ गया, मतलब कि इतनी अच्छी ग्रेटिंग आज उसमें आई है कि मैं आपसे क्या ही बता दूं। सेम ऐसा ही प्यार मैं चाहती हूं कि आप हमेशा से योगशाला को दें क्योंकि योगशाला आप सभी का प्यार हम सभी पे बना रहे और मुझे क्या चाहिए। तो चलिए मैं मिलूंगी कल आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861 9876. पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

बिल्कुल, ये बेकरारी अब तो ना होगी कम। बहुत ही प्यारा सॉन्ग अभी अभी हमारे बैकग्राउंड में चल रहा था और इसी प्यारे से सॉन्ग के साथ में आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम कॉलर ट्यून गुंडा में, जिसमें कि आप कॉल करते हैं और आपकी फरमाइशों को हम आप तक पहुंचाते हैं। तो स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? और भाई फटाफट से अपना हालचाल बता दीजिए, क्योंकि मौसम का जो हाल है ना, वो तो आज बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार और बहुत ही खुशनुमा है, क्योंकि मौसम है बारिश का। बारिश का मौसम है, इसी के साथ भाई बारिश पे दो पंक्तियाँ तो बनती ही बनती हैं। तो बारिश पे आज मैं कुछ पंक्तियाँ लेकर के आई हूँ। जब गिरती हैं बारिश की बूंदें, जब गिरती हैं बारिश की बूंदें, दिल मचल उठता है। जब गिरती हैं बारिश की बूंदें, दिल मचल उठता है कुछ कहने को। ये कैसी बारिश है, ये कैसी बारिश है जो बिन कहे सब कुछ कह देती है, बस तुम्हारा हाथ हो हाथों में। बिन कहे सब कुछ कह देती है, बस तुम्हारा हाथ हो हाथों में। बिल्कुल भाई, बारिश तभी प्यारी लगती है जब आपका कोई बहुत ही प्यारा सा अपना सा आपके साथ हो इस बारिश में, और हाथों में हाथ हो। तो आइए बढ़ते हैं, आगे चलते हैं पहली फरमाइश की तरफ। लेकिन उससे पहले इम्तियाज़ जी आ गए हैं लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, सबलू जी आ गए हैं और सबलू जी के ही साथ में तबिश जी हैं, तबिश जी के साथ महेंद्र जी भी आ गए हैं। आप सभी का स्वागत है लिसनर्स। तो आइए फटाफट से टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं हमारी पहली फरमाइश की तरफ, जो कि है सबलू जी की। तो आइए सुनते हैं सबलू जी के सॉन्ग को। और इसी के साथ बता दूं कि हमारे जो भी लिसनर्स हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं या चैट बॉक्स से सुन रहे हैं, वो सभी अपनी फरमाइश को अगर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, डायल करिए 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचा दीजिए। आइए सुनते हैं सबलू जी के सॉन्ग को। आप बने रहिए आप ये अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

बिल्कुल, देखूं भी जिधर तेरी पलकें और तेरी नजर है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी फरमाइश की थी सबलू जी ने। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है महेंद्र जी की, जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं। तो आइए चलिए सीधे चलते हैं महेंद्र जी के सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, इंजॉय करते हैं और आती हूँ इस सॉन्ग के उस पार आपसे मिलने और आपको बताने कि भाई आज का ज्ञान क्या है, आज हम क्या बताने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, सब बताऊंगी सब बताऊंगी। थोड़ा सा इंतज़ार, उससे पहले आइए सुनते हैं महेंद्र जी के सॉन्ग को। आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

0: जाती हैं, बिन कहे बिन सुने बिन समझे बस बातें हो जाती हैं जब आपकी आंखें बातें करती हैं। तो भाई आंखों से बातें करने का भी कुछ अलग सा ही एक अपना ही मज़ा है। तो आइए चलिए चलते हैं अब अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है सबीहा जी की। तो आइए सुनते हैं सबीहा जी के सॉन्ग को। आप सभी बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में, और कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ़ोन उठाएँ, डायल करें 6393316429 और फटाफट से अपनी फरमाइश को हम तक पहुँचाएँ।
1: गाइस इस बार फिनाले में मैं डुएट परफॉर्म करने वाला हूँ।
2: शी इज अ गुड सिंगर।
1: कम है

बिल्कुल, तू आशिकी है मेरी, तू ही मेरा प्यार है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी सबीहा जी ने। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है राम भवन जी की। तो आइए सुनते हैं राम भवन जी के सॉन्ग को, और आप सभी बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में, मिलते हुए सॉन्ग के उस पार आपसे आज का ज्ञान लेकर के। तो आप सोचिए कि आज की बात क्या होने वाली है, उससे पहले आइए चलते हैं सुनते हैं राम भवन जी के सॉन्ग को, बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, यही इंतज़ार होता है उन आँखों में कि जिनके घर के बेटे और उनके घर के जो पति होते हैं, बेटे होते हैं, वो सरहद पर होते हैं, वो देश के लिए अपना फ़र्ज निभाते हैं, देशवासियों के लिए अपना फ़र्ज निभाते हैं, लेकिन उनके घर में जो उनके अपने होते हैं, उनकी आँखें हमेशा बस यही इंतज़ार करती हैं कि कब उनके बच्चे वापस आएंगे। तो हैट्स ऑफ है ऐसे सभी हमारे सैनिकों को जो कि देश की सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं आज के ज्ञान की तरफ कि भाई आज का ज्ञान जो मैं आपको देने वाली हूँ ना, वो मैं आपको देने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारे से चुटकुले के थ्रू। तो ये ज्ञान आपको समझना है। तो आज का हमारा जो ज्ञान है वो कहता है कि डॉक्टर ने कहा था कि तनाव से बचने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर ने कहा था कि तनाव से बचने के लिए वॉक पर जाया करो। मैं चलते चलते दूसरे शहर पहुंच गई। अब घर लौटने के पैसे नहीं हैं, फिर भी मेरा तनाव दूर नहीं हुआ। तो क्या ये बात सही है कि तनाव दूर करने के लिए हमें वॉक करनी चाहिए? तो लिसनर्स, आप बताइए कि क्या वाकई में तनाव दूर करने के लिए हमें वॉक करनी चाहिए, या कैसे आपका स्ट्रेस दूर होता है, या फिर आप बताएं कि आप क्या करते हैं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तब तक आइए चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है देवी प्रसाद जी की। आइए सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को। मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए सुने और इन्जॉय करें। स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल बहना, याद करें भाई बहन का प्यार होता ही कुछ ऐसा है कि भाई भाई अपनी बहन को याद करते हैं और बहनें भी अपने भाइयों को याद करती हैं, और ये यादें बहुत प्यारी होती हैं। बचपन की नोक झोंक बहुत ही सुहानी होती है। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है चांद बाबू की। तो आइए सुनते हैं चांद बाबू जी के सॉन्ग को।

मैं तो सामने खड़ी हूँ तेरे, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आई। अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, पर उससे पहले चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस हैं। तो राम भवन जी लिख रहे हैं कि मैं तनाव को दूर करने के लिए म्यूजिक सुनता हूँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है राम भवन जी। और महेंद्र जी लिख रहे हैं मैं इस विषय पर बात नहीं करूँगा मैम जी, परसों इस विषय पर बात की मैं खुद तनाव में चला गया। तनाव को दूर करने के, इसीलिए हम तनाव को दूर करने के तरीकों पे सोच रहे हैं महेंद्र जी, क्योंकि तनाव में नहीं जाना है, इसलिए तो आपको अपने तनाव को, अपने स्ट्रेस को दूर करना है। तो आइए अब स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक मेरे पास बहुत ही अच्छा सा आइडिया है, जैसे कि अभी राम भवन जी ने भी बताया कि म्यूज़िक सुनना चाहिए। तो हम सुनते हैं अगले सॉन्ग को, जो कि अगला सॉन्ग हमारा भाई किसका हम सुनने वाले हैं अगला सॉन्ग, जो कि है बहुत ही प्यारा सा मौसम के थ्रू, मौसम भी है बहुत सुहाना, इसलिए ये प्यारा सा गाना जो कि है थम के बरस। और मैं बता दूं कि थम के बरस हमारे एक नहीं बल्कि दो दो लिसनर की फरमाइश है। पहली लिसनर हमारी है अनुष्का जी और दूसरी है दुर्गा जी। तो आइए सुनते हैं दोनों के इस सॉन्ग को जो कि है थम के बरस। सुनते हैं, इंजॉय करते हैं और याद करते हैं बारिश के बचपन वाले मौसम को, जब हम कागज़ की नाव बनाकर पानी में डाला करते थे और उसके जब तक कि वो पूरी वोरी हो जाती थी तब तक हम वेट किया करते थे। तो बचपन के बारिश को याद करिए और इस प्यारे से सॉन्ग को सुनिए।

0: बिल्कुल थम के बरस, जरा थम के बरस, मुझे महबूब के पास जाना है। बहुत ही प्यारा सा ये बारिश वाला सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है सुरेश कुमार जी की, जो कि हमें चौक से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं सुरेश जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए आप सभी सुने, इंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून।
1: सॉन्ग्स सारेगामा.com से।

बिल्कुल गुलिस्तां में नज़ारों की कोई कमी नहीं थी और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। प्यार कुछ होता ऐसा ही है कि इसका सहारा मिल जाए तो पूरी लाइफ जो होती है ना वो कहीं संवर जाती है। ऐसे ही मिलता है हमें हमारे अपनों के प्यार का सहारा। घर में आपके फ्रेंड्स, मम्मी पापा सभी, उनके प्यार का सहारा जब मिलता है ना तो लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है मुमताज़ अंसारी जी की। तो आइए सुनते हैं मुमताज़ अंसारी जी के सॉन्ग को, मिलते हैं आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने और इन्जॉय करें। स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल दिल कह रहा है दुआ दें। और भाई दुआएं जो होती हैं वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही मासूम और बहुत ही पाक होती हैं। जब आप सच्चे दिल से किसी को दुआ देते हैं ना, और किसी के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, तो वो हमेशा उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर ही लेकर के आता है। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए अच्छा चाहें और दूसरों के लिए दुआ करते रहें। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है इरशाद जी की। आइए सुनते हैं इरशाद जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

कि न टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी, क्योंकि घड़ी दो घड़ी के बाद हमें नहीं पता होता है कि हमारे साथ अगले ही पल क्या होने वाला है। इसलिए जो भी पल आपको मिले हैं, आप उन्हें अपने अपनों के साथ खुशी से जिएं, प्यार करें, खुश रहें और मस्त रहें। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ।

तुम ही बताओ सजन, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, टिप टिप बरसा पानी सुपरहिट, जो कि रवीना टंडन जी का मोहरा मूवी से। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है रईस जी की। तो आइए सुनते हैं रईस जी के सॉन्ग को।

तेरी नज़दीकियों का इत्र तू घोल दे, मैं ही क्यों कुछ कहूँ, तू भी तो कुछ बोल दे। जालिमा बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आई है। बढ़ते अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है गुलफशा जी की। तो आइए सुनते हैं गुलफशा जी के सॉन्ग को। मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हमेशा साथ ही चलते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अपनों के साथ चलते हैं ना, तो हर राह आसान लगती है, फिर चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अपने साथ हूँ तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, कोई भी मंजिल पा सकता है। तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आई है। अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है अजय जी की। आइए सुनते हैं अजय जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने, इंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम क्वालिटी उन गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

0: बिल्कुल सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। अब आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश की है आरती जी ने। भाई आरती जी को सुनना था कोई भी एक प्यारा सा सॉन्ग, तो मौसम है बारिश का, तो मुझे लगा कि इससे प्यारा सॉन्ग तो नहीं हो सकता है, जो कि आरती जी ने नहीं बताया था कि उन्हें कौन सा सॉन्ग सुनना है। उन्होंने कहा था कोई भी एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दीजिए, तो बारिश के अकॉर्डिंग भाई मैंने ये सॉन्ग लगाया है जो कि आरती जी की फरमाइश पर है। तो आइए और आप सभी सुनिए और बताइए कि ये सॉन्ग आप सभी को कैसा लग रहा है।
1: मुझको थाम ले जिंदगी से भाग।

ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है गणेश जी की। तो आइए सुनते हैं गणेश जी के सॉन्ग को, और भाई फिर हम चलेंगे चैट बॉक्स में और देखेंगे कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए सुनते हैं गणेश जी के सॉन्ग को।

बिल्कुल, मैं अब किसी से नहीं बट खुद से ही डरती हूँ, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी फरमाइश की थी गणेश जी ने। तो आइए अब चलते हैं चैट बॉक्स में, देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहे हैं महेंद्र जी, उस्मान जी जो कि लिख रहे हैं गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग आपको भी, और इसी के साथ हमारे साथ हैं सनी पांडे जी। सनी पांडे जी के बाद में महेंद्र जी, महेंद्र जी, महेंद्र जी, तबिश जी और राम भवन जी। राम भवन जी जो कि हमारे साथ बने हुए थे, जो कि हमें बबनान गोंडा से सुनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत बहुत थैंक यू कॉलर ट्यून गोंडा में बने रहने के लिए। और हमारा जो टाइम है वो भी थोड़ा थोड़ा हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन अभी हम आपसे विदा नहीं लेंगे, आपको एक सॉन्ग और सुनाएंगे। और आती हूँ इस सॉन्ग के बीचों बीच में आपसे बाय-बाय बोलने के लिए। तब तक के लिए सुने सॉन्ग को और इन्जॉय करें जो कि फरमाइश की थी इस सॉन्ग की सूरज जी ने। तो आइए सुनते हैं सूरज जी के सॉन्ग को।

बेपनाह प्यार है, आ जा, तेरा इंतज़ार है, आ जा। और जब दिल से आप किसी का इंतज़ार करते हैं तो अक्सर लोग आ ही जाया करते हैं। तो इसी इंतज़ार और इसी प्यार भरे सॉन्ग के साथ मैं आपको छोड़े चलती हूँ लिसनर्स। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए अपना फेवरेट एफएम रेडियो ज्ञानस 89.6 एफएम। मिलती हूँ आपसे कल आपके अपने पसंदीदा वाले शो सुन सहेली में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: नमस्कार किसान भाई बहनों, आपका पसंदीदा कार्यक्रम यानी गोधली और गोधली में होता है कार्यक्रम खेत खलियान। ठीक शाम के 5 बज चुके हैं और जैसा कि जानते हैं कि अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं, आज का जो विषय है वो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाला है, क्योंकि हम लोग गन्ना, धान, गेहूँ, उसके साथ में बागवानी भी करते हैं और जब आती है फूल की यानी महक की बात आती है, यानी जैसे गुलाब है, गेंदा है और बहुत सारे फूल हैं, झरबेरा है, ऐसे ही एक फूल है गेंदा, यानी कि गेंदा की जो फूल की खेती है वो भी एक नकदी फसल है क्योंकि अपने आसपास, क्योंकि इसकी मांग जो है देखा गया है, क्योंकि लगातार हम फूल की जो है वो मंडी है अपने यहाँ, जैसे लखनऊ है, अयोध्या है, ऐसे अलग अलग मंडी में इसकी जो है वो मांग जो है लगातार बढ़ती है। इससे जो किसान भाई बहन हैं उनकी जो है आय वो भी दुगनी हो रही है। तो जैसा कि जानते हैं कि आज हमने गेंदा की बात हम लोग कर रहे हैं और गेंदा से ही इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री पीयूष सिंह जी, जो कि बांदा यूनिवर्सिटी से आए हैं और गेंदा की उन्नत खेती के बारे में बताएंगे। तो आपका सर हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: सर हम चाहेंगे अपने बारे में अपना एक संक्षिप्त सा परिचय दीजिए।
1: जी सर, सभी को श्रोतागणों को नमस्कार। मेरा नाम पीयूष सिंह है, मैं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का पुष्प विज्ञान में शोध छात्र हूँ। वर्तमान में मेरा जो शोध कार्य चल रहा है वह एक पुष्प ग्लेडियोलस पे चल रहा है।
0: सर आपने कहा कि मेरा एक शोध छात्र है और उस पे ग्लेडियस जो फूल है, तो इसमें सर आपको ग्लेडियस से संबंधित बताया जा रहा है कि और फूलों के बारे में जानकारी दी जा रही है, मतलब इससे वहाँ?
1: जी सर नहीं, जैसे कि हम लोगों के क्षेत्र में जैसे गोंडा है, अयोध्या है, गोरखपुर है, लखनऊ है, इधर छुट्टे फूल लूज फ्लावर्स की काफी डिमांड होती है, तो जिसमें हम लोग गेंदा मुख्य रूप से इसको उगाते हैं। तो आज हम लोग गेंदे की उन्नत खेती के बारे में और उसकी तकनीक के बारे में पूरी जानकारी आपको हम देंगे।
0: तो सर ये तो हुई मतलब कि गेंदा की उन्नत खेती, अब हम आते हैं सर जानना चाहेंगे कि गेंदा की जो उन्नत खेती है, ये गेंदा की उन्नत खेती अगर किसान भाई बहन करना चाहते हैं तो गेंदा की उन्नत खेती की जो कृषि एवं आर्थिक दृष्टि से क्या महत्व है सर?
1: सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उन्नत खेती का अर्थ क्या होता है। जैसे कि हम कह सकते थे गेंदा की खेती भी, लेकिन उन्नत खेती का मतलब ये है कि जैसे जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है या जो नई हमारी चीज़ें हैं उसको हम उपयोग करके कुछ कम लागत में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो इसलिए हमने आज का विषय जो रखा गेंदे की उन्नत खेती रखा है।
0: जी हम चाहेंगे सर हमारे किसान भाई बहनों को सर थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाइए।
1: जी, सबसे पहले तो सर्वप्रथम सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। फूलों की खेती में गेंदा एक ऐसी फसल है जिसकी मांग वर्ष भर बनी रहती है। यदि गेंदे की खेती वैज्ञानिक एवं उन्नत तकनीकी से की जाए तो कम लागत में अच्छी उपज और अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे और गेंदे का मैं परिचय देना चाहूंगा, गेंदा भारत में लगाए जाने वाला प्रमुख लोकप्रिय पुष्प का पौधा है जिसमें इसका वैज्ञानिक नाम होता है टेंगेस एरेक्टा। यह कुल होता है एस्टरेसी फैमिली का। गेंदे में विभिन्न रंगों के होते हैं, जैसे नारंगी, पीले, लाल नारंगी फूल पाए जाते हैं। इसका उपयोग हम माला बनाने में, फूल पूजा पाठ में, सजावट में, गुलदस्ते में तथा लूज फ्लावर के रूप में व्यापक रूप से हम करते हैं।
0: ये तो हुई मतलब हम उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और अब सर जानना चाहेंगे, मान लीजिए कोई थोड़े कम उनके पास खेती बाड़ी है या कम उसमें खेती करना चाहते हैं गेंदे की, तो वो हमारे किसान भाई बहन कैसे करें सर?
1: सर देखिए, इसमें कोई ये नहीं है कि आप 1 हेक्टेयर में करिए या 2 हेक्टेयर में करिए या बड़ी खेती करिए। अगर आपके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, जितना भी आपके पास जमीन है उसमें आप इसकी खेती आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि आप 1 बीघे में भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती में ज्यादा कुछ लागत नहीं लगती है। एक हमको बीज से ये तैयार होते हैं पौधे और उसको हम 25 दिन बाद 30 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, फील्ड में रोपाई करते हैं और उसके 30 दिन बाद 60 दिन बाद उसमें पुष्प आने स्टार्ट हो जाते हैं।
0: जी अब सर हम आते हैं कि अगर लगाने की जब विधि पर आते हैं कि इसकी लगाने की विधि हमारे किसान भाई बहन कैसे करें, क्योंकि लगाने की जो विधि होती है वो कुछ जगहों पर अलग अलग होती है। बहुत सारे किसान भाई बहन लाइन विधि लगाते हैं गेंदे की, या इसमें कितनी दूरी होनी चाहिए?
1: देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको हम बीज से लगाते हैं और ये बीज को हम बोने के पहले इसको हमको किसी भी फंगिसाइड या किसी चीज से उसको ट्रीट करना चाहिए ताकि जो बीमारियां हैं या जो डिजीज वगैरह आते हैं वो ना आए। तो उसके बाद हम उसको हम एक अच्छी नर्सरी की बेड तैयार करते हैं, उस पे हम लोग इसको बोते हैं। उसको बोने के बाद 25 से 30 दिन बाद इसकी हम रोपाई करते हैं। रोपाई की इसकी दूरी जो होती है आपकी 25 से 30 गुड़े सेंटीमीटर होती है या 30x30 पे लगा सकते हैं, ये आपके एरिया और कितने पर आप लगा रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, इसकी स्पेसिंग, इसकी जो प्रजातियां हैं उस पे भी डिपेंड करती है। ये मुख्य भारत में दो प्रजातियों की खेती होती है गेंदे में, एक अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है, एक फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है। अफ्रीकन मैरीगोल्ड जो अफ्रीकन गेंदा होता है उसके फूल बड़े होते हैं, पौधे बड़े होते हैं, झाड़ीदार नुमा होते हैं और उसके फूल बड़े बड़े आते हैं, तो उसको हम लोग माला बनाने, बड़े बड़े माला बनाने में या सजावट के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। जो छोटा हमारा होता है वो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है, मतलब फ्रेंच गेंदा कहते हैं उसको, तो उसका प्रयोग हम लोग छोटा जो माला बनाने में आता है या जो ऐसे घर में पूजा वगैरह यूज करते हैं तो उसमें उसका यूज करते हैं। तो इस दोनों की स्पेसिंग अलग अलग होती है। जो छोटे वाले की है वो 20x25 पे भी कर सकते हैं, 20x20 पे कर सकते हैं, बड़ी वाली की 25x30 पे करते हैं अफ्रीकन मैरीगोल्ड की।
0: जी, अब सर आते हैं अगले सवाल पर। जानना चाहेंगे सर, गेंदे की जो प्रजातियां हैं उनमें तो सर दो प्रजातियां आपने सर बताया, सर उनमें क्या अंतर है जो प्रजातियां हैं सर, और कुछ प्रजातियां हैं जो गेंदे की जो उसमें कुछ अंतर है?
1: हाँ सर, देखिए जैसे कि मुख्य रूप से मैंने पहले ही बताया कि गेंदे की जो खेती होती है उसमें भारत में मुख्य रूप से दो प्रजातियां यूज की जाती हैं, एक अफ्रीकन और एक फ्रेंच। तो जो अफ्रीकन होती है इसके पौधे झाड़ी नुमा होते हैं, बड़े होते हैं, इसके फूल जो होते हैं वो बड़े आते हैं और इसके वेट ज्यादा होता है फूल का, इसके पीले कलर के और नारंगी कलर के आते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटियां हैं जो हमारी कुछ प्रमुख किस्में हैं जो होती हैं, जैसे पूसा नारंगी है, पूसा बसंती गेंदा है, अर्का अग्नि है, अर्का भानु है, अर्का बांगर है, अर्का शुभ है, ये हमारी अफ्रीकन मैरीगोल्ड की वेराइटियां हैं। और फ्रेंच मैरीगोल्ड की जो है इसके पौधे छोटे होते हैं, कम झाड़ीदार होते हैं और अफ्रीकन गेंदा की तुलना में इनके जो फूल होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। इनके में कुछ प्रमुख किस्में हैं, पूसा अर्पिता, पूसा दीप, हारमोनी तथा नॉटी, ये कुछ प्रमुख किस्में हैं।
0: सर ये तो हो गई प्रजातियां और कौन कौन सी हैं और उसमें क्या क्या अंतर है। अब सर आते हैं अगले सवाल पर, जानना चाहेंगे कि गेंदे की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और तापमान सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि जलवायु और तापमान का होना बहुत जरूरी है। जब टेम्परेचर सही रहेगा तो इसमें फूल आता है अच्छे से और जो है हमारा जो पौधा होता है गेंदे की वो ग्रोथ भी करता है और अच्छा अच्छा उसमें जो है फूल जो है वो निकलता है।
1: सर देखिए, गेंदा तो हम सब जलवायु में उसको उगा सकते हैं, बट जो हमारा सबसे अच्छा माना जाता है शुष्क और हल्की ठंडी जलवायु वाले मौसम में इसको हम उगाते हैं। और इसकी जो ऑप्टिमम कहते हैं टेम्परेचर जो होती है दिन की, वो हमारी होती है उपयुक्त तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस और जो रात का होता है वो हमारा 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सब मिलाकर ये कह सकते हैं कि इसको हम शुष्क और जलवायु और हल्की ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में आसानी से इसको उगा सकते हैं।
0: कभी कभी सर ये गर्मी बहुत ज्यादा होता है कुछ जगहों पर या कुछ जैसे कह लें मतलब कि ठंडक में, तो इसमें ठंड में और गर्मी के मौसम में फूलों पर ऐसा कुछ प्रभाव पड़ता है सर?
1: जी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये मैं बताना ही चाहता था। अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण फूलों के कलर पे भी काफी असर पड़ता है और जो फूल की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो उसका जो बाजार में दाम होगा वो किसानों को अच्छा नहीं मिलेगा, तो उससे उनकी आय कम होगी। और अगर ज्यादा ठंडी पड़ेगी तो वो पौधों को पाला मार देता है, तो वो पौधे सर्वाइव नहीं करते हैं, तो फिर हमको उपज अच्छी नहीं मिलती है।
0: जी सर, ये तो मतलब हुई कि उसका तापमान कैसे होना चाहिए और तापमान जब अच्छा होगा तभी उसकी जो है फूल जो है हमें अच्छा मिलेगा। अब सर हम जानना चाहेंगे सर, गेंदे की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है और मिट्टी का जो पीएच मान है
1: जी
0: वो कितना होना चाहिए? क्योंकि देखिए जब कोई भी फसल हम या गेंदे की है या सब्जी है या फल फूल जो भी लगा रहे हैं तो मिट्टी जो है हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब मिट्टी हमारी अच्छी होती है तो हमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है और पौधा जो है हमारा वो ग्रोथ भी करता है। कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी में बहुत सारे जो है रोग लग जाता है, मिट्टी में भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है अंदर और हमारा पौधा जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या है कि जो पौधा हम लगाते हैं तो उसमें रोग लग जाता है। तो हमारे कुछ किसान भाई बहन यही कहते हैं कि हमने पौधा लगाया लेकिन सर पौधा बड़ा हुआ और उसमें फल नहीं आया या फूल नहीं आया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी कोई फसल आप लगाएं तो कम से कम अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच कराएं और जांच कराने के बाद में ही हम उसमें कोई भी पौधा या कोई भी फल फ्रूट जो भी लगाना है वो लगाएं कि जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो हम सर जानना चाहेंगे सर, ये
1: जैसा आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा जैसे कि मृदा, मृदा माँ के समान उसको हम लोग कहते हैं। आजकल हम लोग उस पे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, केमिकल का यूज कर करके उसको हम लोग खराब करते जा रहे हैं। जैसा कि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी जोर दिया ऑर्गेनिक खेती का, तो उसमें ऑर्गेनिक खेती का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक खेती क्यों कह रहे हैं कि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया, ये सब यूज करके जो उसकी हम लोग खराब कर चुके हैं। ऑर्गेनिक खेती में हम गाय की गोबर यूज करें, हम नीम केक यूज करें, ऑयल सीड्स का केक यूज करें, जिससे मृदा की उर्वरकता और अच्छी बढ़ रही है। तो हम अपने विषय पे आते हैं, गेंदे की खेती में जो हमारा मृदा होगा इसमें अच्छी जल निकास वाली दोमट, बलुई दोमट और उपयुक्त मानी जाती है अच्छी जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए, जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जल निकास, क्योंकि अगर पानी लगेगा तो वहाँ पर हमारा जो पौधे के जड़ है वो सड़ने लगेंगे वाटर लॉगिंग के कारण, तो उससे हमारी फसल जो होगी अच्छी नहीं होगी, पैदावार पौधे अच्छे बड़े नहीं होंगे, रोग आ सकता है। तो इसलिए उचित जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, और पीएच जो उसका होता है वो 6 से 7.5 पीएच होना चाहिए। पीएच या जो इसका परीक्षण है ये हम अपने नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय या केवीके से संपर्क करके उसका हम परीक्षण कर सकते हैं कि हमारी मृदा का पीएच कितना है, उसमें कितने हमारी उसकी स्वास्थ्य कैसा है, कितना हमको यूरिया देना है, कितना डीएपी देना है, कितना क्या देना है, या उसमें ऑर्गेनिक मैटर है कि नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऑर्गेनिक मैटर कितना है सॉयल में, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है चीजें
0: जी। अब सर हमारे मन में एक सवाल है, हमारे किसान भाई बहनों के भी मन में एक सवाल होगा, सर हम ये किस मिट्टी में गेंदे की जो है वो लगाएं कि जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बहन हमको सुन रहे हैं इस वक्त, तो उनके भी मन में ये सवाल होगा कि हम गेंदा की अगर खेती कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा उत्पादन किस मिट्टी में होगा।
1: देखिए सबसे ज्यादा इसका उत्पादन बलुई दोमट और दोमट मिट्टी में होगा, और जिसका ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा कंटेंट उस सॉयल का, तो उसमें हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं और उपज अच्छी मिलेगी
0: जी। सर एक सवाल और है, क्योंकि अपने यहाँ कुछ जगहों पर जैसे जल भराव होता है या कुछ जगहों पर बहुत ऊंचाई होता है, मतलब जहाँ पानी का जो जल का स्तर है वो नहीं पहुँच पाता है, तो क्या उस जगह पे हम गेंदे की खेती कर सकते हैं।
1: सर देखिए आपने अभी दो प्रश्न किया कि जहाँ पर जल का नहीं पहुँच पाता है, तो सर जब अगर जल नहीं पहुँच पाएगा तो थोड़ा भी सर्वाइव करने के लिए जल तो चाहिए ही होगा, तो या तो इसको फिर हम इरिगेशन कैनाल के थ्रू जोड़े, सिंचाई से नाली बना करके उससे करें तब, और अगर जहाँ पर ज्यादा जल निकास की समस्या है, जल निकास नहीं हो पा रहा, जल भराव की समस्या है, वहां पर गेंदे की खेती अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो फूल आएंगे वो भी अच्छे नहीं आएंगे, तो उसका दाम किसान भाइयों बहनों को बाजार में नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो यहाँ पर अच्छी जल निकासी की सुविधा हो बलुई दोमट, उस मिट्टी में इसको खेती करना लाभकारी है किसान भाइयों बहनों के लिए।
0: अब सर आते हैं अगले सवाल पर, जानेंगे कि सर गेंदे की उन्नत किस्मों का चयन किसान भाई बहन किस आधार पर करें, क्योंकि चयन करना बहुत जरूरी होता है। जब हम कोई फसल लगाते हैं, कोई भी नर्सरी या कोई भी पौधा डालते हैं, तो उसमें चयन करने की जो विधि होती है वो बहुत जरूरी होती है। जब हम चयन करेंगे तो अच्छा हमें उत्पादन मिलेगा, अच्छा फूल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, लेकिन हम कैसे चयन करें, क्या क्या सावधानी बरतें, और सावधानी बरतेंगे तभी जब है जो पौधा है वो हमें अच्छा उत्पादन मिल पाएगा।
1: सर देखिए जैसे आपने बताया कि ये हमको किस्मों का चुनाव करना है, तो कैसे करें हम, देखिए किस्मों का चुनाव करने के लिए अगर हम किसान भाइयों और बहनों को कहें तो कोई एक दो बिंदु पे नहीं कह सकते, हम कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जैसे पहला बिंदु है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का मृदा कैसा है, वहाँ का जो आपका पीएच है सॉयल मृदा का वो कैसा है, जलवायु कैसी है, वहाँ पर मौसम परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। दूसरी चीज है कि हमारा जो हम उपज किस्में सेलेक्ट कर रहे हैं या चुनाव कर रहे हैं उसका मार्केट में प्राइस है कि नहीं है, उसको कब तक तैयार होगा, कितने दिन उसको लगेंगे तैयार होने में, तो उस हिसाब से फिर हम उसकी लागत कितनी है, उस पर सावधानियां कितनी रखनी पड़ती, ये सब चीजों पे जो है हमारी किस्में प्रमुख उन्नत किस्मों का सिलेक्शन करते हैं या चुनाव करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगा कि आपको मैंने दो बताया था गेंदे पे, एक अफ्रीकन और एक फ्रेंच प्रजाति। तो अफ्रीकन प्रजाति में मुख्य रूप से पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, अर्का भानु, अर्का बांगर, ये सब की किस्मों को अगर हम चुनाव करके लगाते हैं तो इसके फूल बड़े बड़े आते हैं और इसके मार्केट में प्राइस भी ज्यादा मिलता है कीमत, जिससे किसान भाइयों बहनों को ज्यादा लाभ होगा। अगर हम छोटे गेंदे की बात करते हैं तो छोटे गेंदे फ्रेंच गेंदा को, तो उसमें हम पूसा अर्पिता, पूसा दीप, ये वैरायटी को मुख्य रूप से किस्मों का यूज करते हैं हम, और इसको हम जैसे इसका माला बना सकते हैं, इसके अलग अलग चीजों में यूज कर डिस्प्ले पर्पज में यूज कर सकते हैं।
0: सर अब आते हैं अगले सवाल पर, जानना चाहेंगे सर कि गेंदे की नर्सरी तैयार करने की सही विधि क्या है, क्योंकि नर्सरी जो है वो भी बहुत सारे किसान भाई बहनों के मन में सवाल होगा कि इसकी नर्सरी जो है वो किस विधि से तैयार करें। सर
1: जी सर। सर देखिए, सबसे पहले इसकी जो प्रवर्धन करते हैं यानी प्रोपोगेशन मेथड होता है इसका गेंदे का, वो हमारा बीज द्वारा होता है। बीज को जो अफ्रीकन गेंदा होता है उसकी बीज की जो होती है 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, और जो फ्रेंच होता है 0.5 से 1 केजी पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो बीज को लगाने से पहले हम बीज को उपाचरण करते हैं, उसको हम उपाचरण करने के ताकि जो हमारी इस शुरुआत के प्रारंभिक अवस्था में जो रोग आते हैं या ये आते हैं उससे उसको प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिलती है और अंकुरण अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम नर्सरी बेड तैयार करते हैं जिसपे हम बीज को उगाते हैं, तो उसको आज हम ग्राउंड लेवल से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर बेड बनाते हैं। उसके बाद उस पे थोड़ा सा FYM डालते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। उसके बाद हम बीजों को लगाते हैं, उसको मल्च करते हैं 2-4 दिन के लिए, फिर उसके बाद उसको ओपन कर देते हैं। 2 से 3 दिन बाद उस पे हल्की सिंचाई करते हैं, ज्यादा नहीं, और ये हमारा 20 से 30 दिन बाद पौधे की रोपाई के लिए तैयार हो जाता है ये नर्सरी।
0: जी सर, नर्सरी लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर,
1: नर्सरी लगाते समय हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि जल निकास की सुविधा हो, जल भराव वहाँ ना होता हो। दूसरी, कोई वहाँ पर नर्सरी में ही लगाएं, ताकि कोई खुले जगह पर ना लगाएं, इसको प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में लगाएं, जहाँ नर्सरियाँ तैयार होती हैं वहाँ पर हम लगाएं, ताकि कोई बीमारी, कोई कीट रोग ना आ सके।
0: सर, इसमें नर्सरी में अगर लगा रहे हैं तो इसमें कोई रोग का जो प्रबंधन है वो भी करना पड़ता है किसान भाई बहनों को?
1: नहीं, रोग प्रबंधन नहीं करना पड़ता है, बस कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। हल्की नियमित रूप से सिंचाई करें, अत्यधिक पानी न दें, खर पतवार को तुरंत हटा दें, अगर कोई पौधा रोग जनित है तो उसको उखाड़ करके फेंक दें, और नर्सरी में उचित वायु का संचार होता है।
0: जी सर, अगर नर्सरी कर रहे हैं तो उसमें जो है वो क्या नाम है, रकबा जो अपना है, वो रकबा का भी ध्यान रखें किसान भाई बहन की कितने दूरी में कर रहे हैं वो?
1: जी देखिए, नर्सरी पौध तैयार करने के लिए हम सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि कितने आप लगा रहे हैं, हेक्टेयर में लगा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको 1 हेक्टेयर लगाना है तो फ्रेंच मैरीगोल्ड जो है छोटा गेंदा 0.5 से 1 केजी सीड की आवश्यकता पड़ती है, ये 1 हेक्टेयर खेती के लिए उपयुक्त है इतने बीज से। और जो हमारा अफ्रीकन है 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर लगता है सर, तो उससे जो पौधे तैयार होते हैं वो 1 हेक्टेयर के लिए कर सकते हैं। तो उस हिसाब से सर, जितने हमारे एरिया है उतने में हम अपना कर सकते हैं।
0: जी अब सर, हम आते हैं अगले सवाल पर, जानना चाहेंगे सर बीज उपचार क्यों आवश्यक है और इससे क्या लाभ होता है, क्योंकि बीज जो उपचार है वो क्यों आवश्यक है और इससे हमारे किसान भाई बहनों को क्या लाभ हो सकता है? सर,
1: बीज उपचार इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम बीज कहीं से मंगाते हैं, ठीक है, तो वो बीज हमारे पास जब आता है तो वो क्लाइमेट हमारा कुछ और, जलवायु आपके यहाँ हो सकती है या किसी जगह और हो सकती है, तो उसको हम ध्यान में रख करके बीज को पहले हम उसका अंकुरण करते हैं, ताकि उपाचरण करने के अंकुरण अच्छा हो और जो हमारा नर्सरी तैयार हो वो स्वस्थ हो, अच्छा हो, मजबूत हो। जब हमारी नर्सरी अच्छी होगी तो पौधा भी अच्छा होगा, पौधा अच्छा होगा तो हमको उपज अच्छी मिलेगी, उपज अच्छा होगा तो उसका दाम बाजार में अच्छा मिलेगा। तो इसलिए मूलतः नर्सरी का अच्छा होना आवश्यक है, तो इसलिए हम बीजों का उपचार करते हैं, और बीजों का उपचार इसलिए भी करते हैं कि अंकुरण प्रतिशत अच्छा होता है। अगर हम उसको उपचार करते हैं तो उसमें हमारा अंकुरण प्रतिशत अच्छा होता है। अगर आप बिना उसके उपचार किए हुए लगाते हैं बीज को तो उसमें हो सकता हो 70% 80% ही पौध तैयार हो पाए, बट अगर हम उसमें उपचार करके लगाते हैं तो 90% मैक्सिमम जितना ज्यादा ज्यादा हो सकता है उसमें होता है। रोग वगैरह की बीमारियां जो प्रारंभिक अवस्था में आती है पौधा लगाने के बाद वो नहीं होता है। जो नर्सरी तैयार होती है वो मजबूत होती है, जो हमारे पौध तैयार होते हैं, और मृदा जनित जो रोग होता है उससे सुरक्षा मिलती है हमको।
0: सर, बीज उपचार करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
1: सर, बीज उपचार करते समय हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं या जो उसमें डाल रहे हैं वो उस लिए है कि नहीं, उसका पूरा प्रॉपर हमको नॉलेज होना चाहिए। हम अगर वेविस्टीन यूज कर रहे हैं तो वो क्यों यूज कर रहे हैं, कोई फंगस है कि क्या है, तो उसके हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब हम उसका यूज कर सकते हैं। सर, मुख्य रूप से उसका केमिकल वगैरह हमको पता होना चाहिए।
0: मतलब कहने का मतलब है कि सही मात्रा में हर चीज होना चाहिए, और सब सही मात्रा में रहेगा तो जो है वो हमारी जो बीज उपचार है वो सही होगा। अब सर, हम आते हैं अगले सवाल पर, जानना चाहेंगे सर गेंदे की रोपाई का उचित समय और पौधों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए?
1: देखिए, पौधों की जो रोपाई का समय है वो हमारे भारत में, ये गेंदा जो होता है ये डे न्यूट्रल प्लांट होता है, ठीक है, इसको जितनी मतलब एक कहते हैं जितनी धूप चाहिए उतनी इसको छांव भी चाहती है, एक अगर किसान की नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो। और अगर इसको साइंटिफिक बोला जाए तो ये डे न्यूट्रल प्लांट होता है, इसको जितनी लॉन्ग डेट लाइट चाहिए उतनी ही इसको शॉर्ट डे भी चाहिए। तो इसमें हमारी जो है वर्षा ऋतु में अगर हम पौधे को लगाते हैं, नर्सरी इसकी जून जुलाई में लगाते हैं और इसकी रोपाई जुलाई अगस्त में करते हैं, और अगर हम इसको शीत ऋतु में लगाते हैं विंटर में तो सितंबर अक्टूबर में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसकी हम रोपाई करते हैं, और अगर ग्रीष्म ऋतु में लगाते हैं तो जनवरी फरवरी में नर्सरी डालते हैं और फरवरी मार्च में हम इसकी रोपाई करते हैं। तो इसको हम साल में 3 बार लगा सकते हैं जो गेंदा है। बट जो हमारी जो वर्षा ऋतु वाली है इसमें ये दिक्कतें आती हैं कि क्योंकि वर्षा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, आर्द्रता रहती है, उसमें नमी रहती है, तो कई तो बीमारियां भी आ सकती हैं, जो फूल होते हैं वो अच्छे नहीं आते हैं, वो सड़ जाते हैं, पौधा अच्छा नहीं होता है। तो इस वजह से वर्षा ऋतु के लिए थोड़ा सा अगर किसानों को ऐसे देखा जाए तो थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन जो हमारा शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु है वो सबसे अच्छा उपयुक्त रहता है।
0: जी, मतलब कहने का मतलब है कि जो हम अगर ठंडक के मौसम में लगा रहे हैं तो अच्छा उत्पादन मिलेगा, उसमें मतलब क्या है कि रोग नहीं लगता है, टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। सर, जब गर्मी की
1: एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपने रोपाई का समय पूछा और ये एक बार हमको डिपेंड करता है कि ये निर्भर करता है कि हमारे बाजार में डिमांड कैसे है। जैसे अभी हम लगाते हैं वर्षा ऋतु में, अगर लगाते हैं हम इस टाइम, तो हमारा अक्टूबर में दिवाली आती है तो दिवाली के टाइम उसको हमको दाम अच्छा मिल सकता है। अगर हम उसको लगाते हैं ठंडियों में तो जो हमारा वैलेंटाइन डे आता है, नवरात्र आता है उधर, तो उसमें फूलों की डिमांड रहती है। देखते हैं कि बेसिकली फूलों का जो मार्केट होता है वो अचानक रेट बढ़ जाता है त्योहारों के टाइम में, तो अगर हमारा प्रॉपर रहेगा तो उसके दाम किसानों को ज़्यादा मिल सकता है, तो इसलिए उसको भी देख करके हम समय का चुनाव कर सकते हैं।
0: जी, मतलब कहने का मतलब है कि त्योहार के हिसाब से या मौसम के हिसाब से दोनों का हमें तालमेल बनाना होगा। जब तालमेल बनेगा तो हमारा जो वो है गेंदे की जो फसल है उससे हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब सर हम आते हैं अगले सवाल पर, जानना चाहेंगे सर कि गेंदे की फसल में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार हमारे किसान भाई बहन जो है वो करें, क्योंकि उर्वरक जो है वो जरूरी है। लेकिन सर अब हम चाहेंगे कि इस सवाल पे हम पुनः आएंगे, लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं सर। तो ये सुनिए आप प्यारा सा गीत, और गीत के बाद में हम लोग हाजिर होते हैं आपका कार्यक्रम लेकर, यानी खेत खलियान।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9860 9816 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: एक बार आप सभी का पुनः खेत खलियान कार्यक्रम में स्वागत है, और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं गेंदा की उन्नत खेती और उसका प्रबंधन कैसे करें। और हमारे साथ में आज विशेषज्ञ हैं श्री पीयूष सिंह, जो कि शोध छात्र हैं, युवा वैज्ञानिक हैं, और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं यानी महक, यानी फूलों की महक, और उस महक की यानी बात में गेंदे की खेती आती है, जिसका यानी बहुत अच्छा जो किसान भाई बहन जो है उससे आय जो है वो दुगुना कर रहे हैं। तो आइए सर, आते हैं अगले सवाल पर, और हम जानना चाहेंगे सर कि गेंदे की खेत में यानी गेंदे की जो खेती करते हैं किसान भाई बहन, उसमें खाद का जो प्रबंधन है वो कैसे करें?
5: देखिए, गेंदे की खेती के लिए जो खाद का प्रबंधन है, खाद है, यूरिया है, फास्फोरस है, पोटास है, तो इसका खाद, गोबर की खाद 20 से 25 टन पर हेक्टेयर हम उपयोग कर सकते हैं, जो वैज्ञानिक तौर पर किया जाता है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात करते हैं, यानी यूरिया, DAP, MOP की, तो उसको हम जब तक मृदा का परीक्षण नहीं करेंगे, तब तक हम उस एक्यूरेट या सही तौर पर नहीं बता सकते। लेकिन जो वैज्ञानिक तौर पर हम बात करें, तो नाइट्रोजन जो है 100 से 150 kg पर हेक्टेयर, फास्फोरस आपका जो है 60 से 80 kg पर हेक्टेयर, और जो हमारा पोटास है यानी MOP 60 से 80 kg पर हेक्टेयर। जो DAP और MOP है, इसको हम लोग जब पौधा नर्सरी लगाते हैं, जब फील्ड तैयार करते हैं, उसी टाइम इसको हम डाल देते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन है यानी हमारा यूरिया है, उसको हम 2 स्प्लिट या 3 स्प्लिट डोज में डालते हैं, मतलब अलग अलग करके डालते हैं। जो आधा हिस्सा होता है जब हम खेत तैयार करते हैं उस टाइम डालते हैं, और बाकी जो आधा हिस्सा बचता है उसको हमारा जब पौधा 30 दिन का हो जाता है तब खेत में देते हैं। यानी उसको नाइट्रोजन को हम 2 बार देंगे उसी डोज को अलग अलग करके, और जो हमारा फास्फोरस और पोटास है यानी MOP और DAP एक ही साथ खेत में हम डालते हैं, एक ही बार जब हमारा खेत तैयार होता है।
4: जी सर, हम खाद प्रबंधन की बात करते हैं, तो इसमें जो मात्रा है सर, हम चाहेंगे कि सर एक बार पुनः हमारे किसान भाई बहनों को मात्रा दोबारा सर बता दीजिए।
5: देखिए, सबसे जरूरी चीज तो है जो सामान्य रूप से गोबर की खाद है, इसको हम लोग 20 से 25 टन पर हेक्टेयर का यूज करते हैं, और दूसरा जो है हमारा, जो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, यूरिया है, MOP है, DAP है, तो नाइट्रोजन जो हमको मिलता है यूरिया से मिलता है, तो उसको हम 100 से 150 kg पर हेक्टेयर लगाते हैं, डालते हैं, ठीक है, उसको 2 भाग में डालते हैं। पहला जब खेत तैयार करते हैं तब आधा डालते हैं, आधा 30 दिन पौधा हो जाता है उसके बाद डालते हैं, और दूसरा है हमारा फास्फोरस और पोटास। तो फास्फोरस जो है 60 से 80 kg पर हेक्टेयर, और पोटास भी 60 से 80 kg पर हेक्टेयर हम खेत में डालते हैं।
4: सर, अगर हम खाद प्रबंधन कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम हमारे किसान भाई बहन जब भी छिड़काव या कोई भी दवा या खाद डाल रहे हैं, तो उस समय सावधानी बहुत जरूरी होती है सर।
5: जी जी, सही आपने कहा। जैसे देखिए, खाद प्रबंधन अगर हम खेत में डाल रहे हैं तो उस समय सावधानियां बरतनी रहती हैं। जैसे अगर हम कोई स्प्रे कर रहे हैं तो अपना मुंह को ढक करके स्प्रे करें, स्प्रेयर का प्रॉपर यूज करें जो आजकल मिलते हैं, और दूसरी चीज है कि अगर कोई भी आप मृदा के तौर पे अगर देखेंगे प्रबंधन, ये तो हो गया व्यक्तिगत किसान के तौर पे। लेकिन अगर मृदा के तौर पे प्रबंधन देखेंगे तो ऐसा ना हो कि हमको उस मृदा में इतनी जो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटाश की आवश्यकता ना हो जितना हम दे रहे हो। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त है कि आप नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय या केवीके से, कृषि विज्ञान केंद्र से आप संपर्क करके अपने मृदा का परीक्षण करा सकते हैं और उसके बताए कि आपके मृदा में क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने इसको उपयोग कर सकते हैं जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं।
4: मतलब कहने का मतलब है कि अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पे जाएं या जो हमारे समय समय पर जो अपने वैज्ञानिक भैया या जो किसान भाई प्रगतिशील हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं जो अपने आस पास, सर ने बताया। और दूसरी बात क्या है कि जैसे हम अपनी शरीर की जाँच कराते हैं उसी तरीके से मिट्टी की जाँच जो है बहुत जरूरी होता है। जिस तरीके से हम बच्चों को टीकाकरण कराते हैं ऐसे ही खेत जो है, हमारी जमीन जो है, हमारी धरती जो है, जांच बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हम जब जांच नहीं कराते हैं तो ये अभी हमने इससे पहले भी कहा था कि जब जांच नहीं होती है मिट्टी की तो उसमें उत्पादन भी कम हो जाता है और रोग जो है वो लग जाते हैं। अब सर हम जानना चाहेंगे, सर आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर
5: जैसे मैंने अभी बताया था कि पौधे की जो दूरी होती है वो भी मायने रखती है कि आपकी उपज कैसी है, पौधा कैसा है। तो जो हमारा गेंदा होता है वो 45x45 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पर यानी दूरी पर लगा सकते हैं, ठीक, और पौध टू पौध और रो टू रो, ठीक। और दूसरा है कि हमारा फ्रेंच मैरीगोल्ड जो है वो 30x30 पे लगा सकते हैं या 30x25 पे लगा सकते हैं या 45x30 पे लगा सकते हैं। जो अभी मैंने बताया कि ये खाद एवं उर्वरक का, तो खाद और उर्वरक अगर हम नाइट्रोजन दे रहे हैं तो नाइट्रोजन से हमको क्या मिलता है? नाइट्रोजन से जैसे होता है कि पत्तियां जो हमारी होती हैं अच्छी होती हैं, पौधों में हरापन आएगा, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो अच्छी होती है। फास्फोरस से जो होता है हमारा जड़ें मजबूत होती हैं, फूलों का विकास अच्छा होता है। और जो पोटाश है हमारी उसमें फूलों की गुणवत्ता, फूलों का कलर और उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अच्छी होती है।
4: जी, तो ये हुई खाद प्रबंधन कैसे करें, खाद प्रबंधन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। अब सर हम आते हैं अगले सवाल पर। अब जानना चाहेंगे सर कि गेंदे की फसल में सिंचाई कब और कितने अंतराल पर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी कोई फसल लगाते हैं और फसल में बहुत जरूरी होता है पानी, और पानी को हमें बचाना भी है, कहते हैं कि जल है तो जीवन है, क्योंकि इसके लिए सरकार भी सिंचाई प्रबंधन के लिए यानी ड्रिप सिंचाई और बहुत सारी योजनाएं जो है स्कीम चलाई जा रही है कि जितनी जरूरत हो फसल को उतना ही पानी हमें उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जब हम पानी नहीं, अभी देखिए इस समय बारिश जो है, कभी कभी देखे हैं कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है या बारिश बहुत कम हो रही है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम क्या नाम है, बारिश कम होती है तो आज जो हम अपनी थाली में रंग बिरंगी दालें देख रहे हैं, रंग बिरंगी सब्जी देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई बहन का उनका ही

0: करनी चाहिए। दूसरा है जब उसकी वृद्धि हो रही हो एकदम, मतलब वो लगे कि एकदम पौधा तैयार हो गया है, फूल आने वाले हैं, बर्ड्स आ रही हैं, तब उस समय करते हैं। और उसके बाद जब कली का निर्माण होता है तब देते हैं, और एक फूल आने के बाद देते हैं। फूल आने की अवस्था में या उसके बाद मतलब कुछ फूल आ जाए तब देते हैं, ताकि एक फूल दो फूल तो आते नहीं, उसमें तो बहुत ढेर सारे फूल आते हैं। तो ये कुछ चार प्रमुख अवस्थाएं, मैं अवस्थाएं आपको फिर से बताना चाहूंगा। जैसे पहली अवस्था है रोपाई के बाद देते हैं, तुरंत पौधा हमने लगाया, नर्सरी से निकाला, उसको ले गए, जो खेत तैयार किया उसमें लगाया, रोपण करने के तुरंत बाद देते हैं। दूसरा है कि वो जब उसकी वृद्धि होती अच्छी हो जाती है तो उसके 10 से 15 दिन बाद देते हैं। तीसरा है जब कली का निर्माण हो जाता है तब देते हैं, और लास्ट है अंतिम अवस्था फूल आने की अवस्था में उसको देते हैं।
1: मतलब कहने का मतलब है कि जो विधि सर ने बताया है उन विधि के अनुसार उतने अंतराल पे पानी देना चाहिए। सर आप जानना चाहेंगे सर कभी कभी क्या होता है कुछ किसान भाई बहन ज्यादा पानी दे देते हैं तो पौधे जो है वो पीला हो जाते हैं, क्या ऐसा भी सही है बात?
0: नहीं देखिए, पौधे पीले हो जाते हैं वो नहीं है, ये अधिक पानी देने पर सबसे पहला असर पड़ता है पौधों की जड़ों पर। वो जो पौधे की जड़ें होती हैं वो अधिक जल भराव के कारण या अत्यधिक पानी के कारण वो सड़ने लगती हैं और उसमें तरह तरह के रोग आने लगते हैं। तो उस रोग के कारण वो जो पत्तियां होती हैं पीली पड़ने लगती हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो रोग लग जाते हैं, पीली हो जाती हैं या ऊपर ब्राउन आ जाते हैं और वो पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। तो ये अधिक पानी और उचित जल निकास न होने की वजह से होता है
1: जी। अब सर आते हैं अगले सवाल पर, जानना चाहेंगे सर ये पीचिंग क्या है और गेंदे की फसल में इसका क्या महत्व है, क्योंकि सर हम भी पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि हमको भी नहीं मालूम है ये पीचिंग है क्या और गेंदे की फसल में इसका क्या महत्व है, क्योंकि कुछ ऐसे जानकारी हमको भी मिलता है सर आप लोग के अनुभव से, आप लोग की जानकारी के इस माध्यम से।
0: देखिए इसका तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये पीचिंग जो है इसका एक ये वैज्ञानिक नाम होता है पीचिंग, जो कि जो कुछ पौधे होते हैं उसमें करते हैं। तो ये पिंचिंग मुख्य रूप से होता है क्या, जब पौधे हमारे 25 से 30 दिन के हो जाते हैं या 35 दिन के, तो जो पौधे का मुख्य शीर्ष भाग होता है ऊपर का जो बढ़ता है उसको हम लोग तोड़ करके हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं पिंचिंग। ये पिंचिंग करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अगर हम पौधा गेंदे का लगाते हैं, पहले तो हमने नर्सरी तैयार की, पौध तैयार किया, पौध की रोपाई की, उसके 30 दिन बाद हम पिंचिंग की क्रिया करते हैं, पौधा हमारा सीधा बढ़ता है। तो वो जब सीधा जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, उसकी डंठले हैं या जो ब्रांचेस हैं वो कम आएंगे, तो वो कम आएंगे तो हमारा फूल भी कम होगा, तो उपज पे असर पड़ेगा। तो इसलिए हम ये पिंचिंग की क्रिया करते हैं, ऊपर से जो मुख्य भाग होता है उसको हम 30 दिन बाद रोपाई के तोड़ देते हैं हल्का सा, तो उसी क्रिया को हम पिंचिंग करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप होता है पिंचिंग करने के बाद एक तो सबसे अच्छा कारण होता है कि जो पौधा हमारा सीधा बढ़ रहा होता है वो चारों तरफ से बढ़ता है, उसमें जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं वो ज्यादा आती हैं। जब शाखाएं ज्यादा होंगी, पत्तियां ज्यादा होंगी, तो जाहिर सीधी सी बात है कि उस पे फूल भी अच्छे आएंगे, कलियां ज्यादा आएंगी तो फूल अच्छे आएंगे, और फूल की जो क्वालिटी होती है वो सबसे अच्छी होती है, जो कि किसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि बाजार पूर्णतः डिपेंड होता है हमारे फूल की क्वालिटी पे कि कैसा हमारा फूल है। तो इसलिए ये पिंचिंग करते हैं। और पिंचिंग से एक और होता है हमारा वैज्ञानिक देखा जाए तो ये पिंचिंग को हम कभी कभी कुछ पौधे में या कुछ फूलों में हम दो बार भी करते हैं या तीन बार भी करते हैं क्रिया। अगर गेंदे में भी हमको जैसे 15 दिन और लेट पौधा अगर फूल चाहिए हमको तो उसको हम दो बार कर सकते हैं, पहला तो 30 दिन बाद कर दिया, उसके 15 दिन बाद फिर एक बार कर देते हैं, तो उससे हमारा जो पौधा होता है, जो फूल आने का उपज होता है वो 60 दिन की बजाय 75 दिन पर चला जाता है। तो जैसे अगर हम अभी लगाते हैं हमको नवरात्र में चाहिए तो वो सीजन के अकॉर्डिंग अगर हम पिंचिंग उसमें करते हैं तो उस टाइम हमको फूल मिलेगा, तो उसकी हमको जो दाम है वो अच्छा मिलेगा, तो किसानों की आय भी बढ़ेगी।
1: जी बिल्कुल, और जब आय बढ़ेगी तभी खुशहाली आएगी। मतलब कहने का मतलब है कि सीजन के हिसाब से हमें और मौसम के हिसाब से अगर हम खेती कर रहे हैं तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है और अच्छा उसका जो मार्केट है वो भाव मिलता है। मतलब कहने का मतलब है कि समय के अनुसार ही खेती बाड़ी चलती है और सुबह शाम हर किसान भाई बहन को खेती देखना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या रोग लग गया है, क्या पानी की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, खाद प्रबंधन कब करना चाहिए, ये सारी चीजें निराई है गुड़ाई है तो कब करें, ये सारी चीजें जब पता लगेगा जब हम अपनी खेती से जुड़े रहेंगे, अपनी मिट्टी से जुड़े रहेंगे। अब सर हम आते हैं अगले सवाल पर, जानना चाहेंगे सर कि गेंदे की जो फसल है उसमें प्रमुख कीट रोग प्रबंधन जो है उसका कैसे करें।
0: देखिए गेंदे की खेती में मुख्य रूप से जो हमारे कीट हैं वो हमारे माहू लगता है। एक ठो माहू क्या करता है कि जो पत्तियां होती हैं उसके तने को और कलियों का रस चूस लेता है, तो जब वो रस चूस

0: लेता है तो पत्तियां मुरझाने लगती हैं, पौधों की वृद्धि रुक जाती है और उसपे कालिका फफूंदी टाइप का उस पर वास होने लगता है, फंगस टाइप। तो ये हमारी माहू का प्रकोप है। एक होता है थ्रिप्स, थ्रिप्स जो होता है पत्तियों और फूलों को नुकसान पहुंचाता है। ये हमारा पत्तियां इसमें जो होती है उसपे जो चांदी यानी सिल्वर कलर के धब्बे आने लगते हैं, जिससे कि फूलों में विकृति आ जाती है, पत्तियों के कारण वो फैल जाता है और फूलों की जो गुणवत्ता होती है उसमें कमी आती है।
1: मतलब कहने का मतलब है ये जो रोग है, ये जो माहू रोग है, ये गेहूं में भी लगता है और जो फूल वाले हैं उसमें भी ये लगता है, और ये जो पौधे की जो फूल जब निकलता है उस समय ये चूसता भी है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है।
0: जी जी। और कुछ जो मुख्य रूप से रोग की बात हुई है, ये तो कीट की बात हुई है, प्रमुख जो रोग है वो हमारा जैसे डैम्पिंग ऑफ है। यह रोग जो है नर्सरी की अवस्था में लगता है पौधों में और ये पौधे के तने पे आधार पे गलने लगते हैं, तने के ऊपर से पौधों का गरना, पौधों मर जाते हैं कई बार। और पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है पत्तियों को सफेद चूसण पदार्थ जैसे उसको पूरा चूस लेते हैं, तो जिससे पत्तियों की जो वृद्धि होती है, विकास होता है, वो रुक जाता है।
1: मतलब कहने का मतलब ही ये जो कीड़े हैं वो जो है रोग जो है लग जाता है तो पत्तियां की जो बढ़त है वो भी रुक जाता है। मतलब
0: जी जी। और इसका प्रबंधन अगर हमको करना हो तो स्वस्थ और अच्छे पौध का उपयोग करें, उचित जल निकास की व्यवस्था रखें, संक्रमित पौधों को उखाड़ करके फेंक दें और नियमित अपने प्रक्षेत्र पे आते जाते रहें और अत्यधिक सिंचाई करने से बचें।
1: जी। अब सर आते हैं अगले सवाल पर, जानना चाहेंगे सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, गेंदे की फूल की तुड़ाई का सही समय क्या है? कि सब सर जब सब्र करने के बाद में फूलों की तुड़ाई करते हैं जब किसान भाई बहन, उस समय चेहरे पे कितनी मुस्कान होती है, अपने अपने हाथ से अपने उससे तैयार किया गया जब उस फूल को तोड़ते हैं तो महक भी उठती है और उसका मतलब मूल्य जो है अच्छा मिलता है मार्केट में। सर इसका सही समय क्या है? सर
0: देखिए, सही समय तो अगर हम फूलों का तोड़ने का कहें तो सुबह होता है। सुबह सुबह फूलों को अगर हम तोड़ते हैं तो उसमें फूलों में ताजगी रहती है, ठीक है, उस पे कोई सुबह ही एकदम तोड़ना चाहिए। और इसमें फूल जो है लगभग 60 से 65 दिन बाद फूल आना शुरू होते हैं गेंदा में, और यह निर्भर करता है कि किस्में कौन सी हैं, प्रजातियां कौन सी हैं, उसका क्षेत्र का तापमान कैसा है, जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, इस पर भी निर्भर करता है कि फूल हमारा कब आ रहा है। बेसिकली अगर हम देखें वैज्ञानिक तौर पर तो 60 से 65 दिन बाद फूल आना शुरू हो जाता है। फूलों की तुड़ाई हमेशा सुबह करनी चाहिए।
1: जी, मतलब कहने का मतलब है सुबह ही तोड़ें तो अच्छा।
0: जी जी, सुबह ही तोड़ना चाहिए, और जिसमें पौधों में हम पिंचिंग करते हैं उसमें थोड़ा देर में आते हैं।
1: सर आप जानना चाहेंगे सर, गेंदे की फूल में जब सिंचाई या मल्चिंग या फर्टिगेशन से किसानों का क्या क्या लाभ मिल सकता?
0: देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, मेरा विषय भी था गेंदे की उन्नत खेती, खेत से लेके बाजार तक। तो गेंदे की उन्नत खेती क्या होती है, जैसे आपने अभी बताया मैंने आपको, पिंचिंग ये एक प्रक्रिया है, इसको ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, इसको करके हम कर सकते हैं। दूसरा है हमारा फर्टिगेशन, आपने यूज किया टर्म, फर्टिगेशन का अर्थ होता है कि हम सिंचाई के साथ ही फर्टिलाइजर भी दे देते हैं, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में, उसको हमारा जो पानी का सेफ्टी टैंक होता है या जहां से पानी जाता है उसमें हम घोर करके उसको हम पानी के साथ ही दे देते हैं फर्टिलाइजर, तो उसी को हम फर्टिगेशन करते हैं। एक होता है मल्चिंग हमारा, तो जैसे कि कोई भी आप क्रॉप लगाते हैं, पुष्प लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे प्रक्षेत्र में, तो खर पतवार भी आता है, तो उससे बचने के लिए हम मल्चिंग का प्रयोग करते हैं। तब मल्चिंग को अगर हम यूज करते हैं तो मल्चिंग से हमारा ये फायदा होता है कि उस मृदा की नमी भी बनी रहती है, हर बार ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, खर पतवार जो है वो नियंत्रण रहते हैं, और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हमारे ये मृदा में नमी है वो हमारी पूरी स्थिरता बनी रहती है और काफी दिन तक चलती है और सिंचाई तुरंत तुरंत देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया जो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें होती है, फर्टिगेशन आपको बताया कि फर्टिलाइजर इरिगेशन के साथ ही करते हैं, दूसरा इसको हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में भी उगा सकते हैं गेंदे को, जैसे किसी अच्छे से प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम आप ग्रीन हाउस में उगा सकते हैं, पॉली हाउस में उगा सकते हैं, जहां पे हम अपना सब कुछ कंट्रोल करके उसमें भी उगा सकते हैं।
1: अब सर हम जानना चाहेंगे सर कि गेंदे की खेती से किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए किन आधुनिक तकनीक और बाजार रणनीतियों को अपना सकते हैं? क्योंकि सर अगर हम कोई अगर किसान भाई बहन आय को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक को अगर तरीके से खेती या उसकी जो वो कर रहे हैं तो इससे जो है वो मार्केट का तो अच्छा वो मिलेगा, उत्पादन पे भी प्रभाव पड़ता है सर।
0: जी जी, आपने सही कहा कि इसको मार्केट का भी प्रभाव पड़ता है। तो पहले तो हम आपको शुरुआत ही में बताएं कि कोई भी प्रजाति या किस्म का हमको चुनाव करना है तो बाजार को देख करके करना है कि वहाँ की आवश्यकता क्या है। वो ऐसा ना हो कि कोई हम ऐसा चीज उगा दें या लगा लें जिसकी बाजार में डिमांड ना हो, उसको फिर उसकी दाम अच्छा ना मिले। और अगर उसे हम बात करते हैं, हम इस समय है अवध क्षेत्र में है, गोंडा शहर में है, तो इधर की बात करें तो हमारा पास में ही अयोध्या धाम है, तो वहाँ पर फूलों की आवश्यकता हमेशा नित्य प्रतिदिन बनी रहती है। और जितनी आवश्यकता वहाँ की है, वहाँ के किसान, आसपास के किसान उतने फूलों की खेती नहीं करते हैं, वो फूलों के बाहर से आते हैं, जैसे हमारे कुछ बनारस से आते हैं, कुछ आपके लखनऊ से आते हैं, कुछ इधर से आते हैं, मतलब आसपास के क्षेत्रों से वो पूरा जाता है, वहाँ की डिमांड को पूरा किया जाता है। अगर इस क्षेत्र अवधवासी लोग इसको खेती करते हैं और इसमें ज्यादा जमीन की भी आवश्यकता नहीं होती, अच्छी उपज भी मिलती है, कम लागत में ज्यादा मुनाफा कर सकते हैं। इसमें बड़े वाले फूल को भी खेत, अफ्रीकन गेंदा का भी हम उगा सकते हैं, फ्रेंच को भी उगा सकते हैं, और इसकी जो कीमत होती है तो अच्छी चीज है कि जो लागत हम लगाते हैं उससे ज्यादा हमको मुनाफा होता है। एक आप गजरे की बड़े वाले फूल की कीमत जानते हैं 100-100 रुपए बिकती है। आप मंदिर के पास चले जाइए तो आप सोचिए उसमें 10 से 15-20 फूल ही लगे होते हैं। जो छोटा वाला है उसकी कीमत आपकी 15 रुपए होती है, 12 रुपए होती है, या 20 रुपए होती है कई जगहों पे, और त्योहार आ जाए तो उसकी तो आप 40 रुपए 30 रुपए ऐसे रहती है। उस हिसाब से अगर हम खेती करते हैं तो किसानों की धान गेहूं के साथ साथ अगर फूल की भी खेती करते हैं तो काफी अच्छा मुनाफा उनको हो सकता है।
1: सर अब जानना चाहेंगे सर, क्योंकि हमारे एक मन में सवाल चल रहा है सर, इस पर सरकार द्वारा कोई सब्सिडी का भी वो है कि सब्सिडी भी कोई दी जाती है, मतलब फूल की खेती करने पर?
0: देखिए फूल की खेती करने पे सब्सिडी तो इसकी जानकारी तो आपको नजदीकी केवीके जो है कृषि विज्ञान केंद्र वहां से मिल सकता है, लेकिन जो आपको बीज चाहिए या कोई आपको वैज्ञानिक पद्धति चाहिए या तरीका चाहिए तो ये आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से आप मिल करके संपर्क करके जान सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसकी खेती आप अगर करते हैं तो इसको हम लोग जैसे टमाटर है, बैगन है, अगर हम इसकी सब्जी की भी खेती कर रहे हैं तो उसके साथ हम इंटरक्रॉपिंग में भी इस फसल को लगा सकते हैं। तो उसमें जो हमारा जैसे टमाटर है, बैगन है, जो उसमें निमटोड एक बीमारी होती है, एक उससे बीमारी फैलती है, तो उसको अगर हम इंटरक्रॉपिंग में लगाते हैं तो उसके जो निमटोड मिट्टी से जो उत्पन्न होते हैं उस क्रॉप में, बैगन में, टमाटर में, उससे ये बचा सकता है। तो और दूसरी चीज है कि इसके पत्ती में एक कैरोटीन नामक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग निकाल करके, एक्सट्रैक्ट करके नेचुरल येलो कलर या ऑरेंज कलर का डाई भी बनाते हैं, जो नेचुरल कलर होता है।
1: अब सर जानना चाहेंगे चलते चलते, क्योंकि समय नहीं है, हमारे किसान भाई बहनों को क्या आह्वान करना चाहते हैं इस रेडियो ज्ञानश्री के माध्यम से?
0: सर सबसे पहले तो मैं इस पवित्र धाम में आया, आपने यहाँ बुलाया मुझको, बहुत काफी अच्छा लगा। और जो भी मेरे श्रोतागण हैं, किसान भाई और बहने हैं, सबको मेरा प्रणाम है। और सबसे मैं यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप जो भी खेती कर रहे हो, जो ट्रेडिशनल चलती आ रही हो या कुछ भी हो, धान गेहूं कर रहे हो या जो भी सब्जी की कर रहे हो, फल की कर रहे हो, उनके साथ आप थोड़ा से क्षेत्र में पुष्प की भी खेती जरूर करिए। पुष्प की खेती एक ऐसी खेती है जो आपको मुनाफा ही देगी, कभी घाटा नहीं देगी। थोड़ा सा आपको बस प्रबंधन करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो आपको हमेशा मुनाफा ही देगी
1: जी। तो सर आप हमारे ज्ञानस्थली रेडियो पर आए और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी गेंदा की उन्नत खेती कैसे करें, उसका प्रबंधन कैसे करें और सिंचाई प्रबंधन कैसे करें और क्या क्या प्रजातियां हैं। सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी सुन रहे थे, यानी गेंदा की उन्नत खेती जानकारी दे रहे थे श्री पीयूष सिंह शोध छात्र। सर आपको, आपने इतना जानकारी दिया, इसके लिए सर आपको ज्ञानश्री रेडियो की परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए ज्ञानश्री रेडियो 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

सबन के इस खूबसूरत से शाम के प्यार भरा नमस्कार आप सबन के संगे आर जे बीना लाइव है आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम गोंडा मैसेज मसाला आर जे बीना वाला के संगे और बात करे जात हैं आप सबसे ढेर सारी कुछ नई कुछ पुरान कुछ दिल माँ लेके आए हैं रुझान पर शहर माँ जो मौसम के आगाज़ है वो बड़ा ख़ास है कहे कि ना तो गर्मी है ना तो ठंडक है बस मौसम इतनी उमस भरा है कि बस पसीना ना ही होता है लेकिन गर्मी का पूरा एहसास है। तो भोजपुरिया शाम माँ रोवा लोगन के भाई स्वागत है और जैसन कि आप सबन का पता है कि बस एक दिन के और इंतजार और हमरे सबके आपन पसंदीदा त्योहार जगह कहात हैं स्वतंत्रता दिवस हमरे सबके आज़ादी मिले के दिन जो ने दिन रेडियो पर कही दिन गए रहा कि भाई देश आज़ाद हो गया है अंग्रेजन से। अब अंग्रेजन हमरे सबके देश में ना रही हैं ये सुने के बाद माँ एक एक मनई के दिल माँ जो खुशी रही हुई वो शब्द माँ बयान नहीं कह सके। अभी शाम खाली जाए से रहल अब फटाफट से आप सबका कह दी कि गांव के जोन हल्की मिट्टी के जोन सोंधा खुशबू है गीतन के जोन मिठास है वो शाम का और खूबसूरत बना दिया था। गांव के चौपाल माँ एगो रखा रेडियो हर केहू के दिल के एहसास का जगाए दिया था। जे दिमाग माँ उधेड़ बुन माँ रहा है उनके उधेड़ बुन वहीं रुक जात है और कुछ नई शुरुआत हो जात है। तो आप सभी भी आज अभी थोड़े सबके पास समय है सोचें कि केकर कौन पसंद के गाना है तो रवा लोग अपने पसंद के भोजपुरी गाना ढूंढ के रखी हैं। 7 बजे से आपका अपने पसंद के भोजपुरी गाना सुनने का मिली आर जे बीना के संगे और जेकर गाना नया वाला रही ओकरे गाना पर पैर से आप सबका थिरके के भी मौका मिली तब मोबाइल उठाई हमनी से जुड़ जाई और फटाफट से 89.6 FM का डाउनलोड कर ली जे जे जहाँ जहाँ से सुना था प्ले स्टोर पे जाए के फटाफट से डाउनलोड करी चैट रूम में आए के अपने भोजपुरी शायरी से आज के शाम का गुलजार कर दी। फटाफट से आए जाए कहे कि आपके विलम्ब आर जे बीना के टाटा बाय बाय हो जाए। सनी पांडे शुभ संध्या का हाल है भाई रउआ के तो चला शुरुआत की जाए वो बढ़िया से गीत से और देखा जाए कि आज के हमारे शाम माँ ये गीत जोन है ये हमारे और रउआ के भावना के साथ मेल खाते कि नहीं।

0: अब अपने भाषा के गीत सुने के मजे कुछ और है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, दीपक, सत्येंद्र, सबके स्वागत है। सनी, सबके सबके सबके स्वागत है। लेकिन आज खास बात हुई, काहे कि आज खास दिन है। अब आप सोचत हुई हैं कि आज कौन खास दिन है, आज तो हमें सबका कुछ पता नहीं है। हाँ भाई, आज भी एक तो खास दिन है जिकरे बारे में जाने के लिए आपका लगातार बने के रहे परी 89.6 FM से। जी हाँ, अगर आप साथे ना रहो तो कैसे जनबो कि आज खास का है। और तो और, अपने पसंद के भोजपुरी गीत कैसे सुनबो। तो जे भी अगर आपन जोन सुने के जोन कहा था ना कि दायरा बरकरार रखा चाहते हैं, तो फटाफट से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिए एक ठू एप्लीकेशन। जैसे बहुत सारा एप्लीकेशन है, एक छोटा सा एप्लीकेशन है जोन बिना रुके आपका आपके एंटरटेनमेंट के साथ है बना रखी। अब भाई मोबाइल देखे के लिए तो भाई मोबाइल चलाए के पड़ी, लेकिन रेडियो ऐसा है जोन आपके घर में एक जगह बजी और पूरे घर में आपके ही बात हुई। तो चली चला जाए आप सबसे और बात करें, लेकिन एठू ब्रेक के बाद। तो ये ब्रेक सुनी और ब्रेक के जो जानकारी है वो जानी, और फिर कुछ देर बाद अपने भाषा के और अपने लोकगीतन के सुन के आज के शाम खूबसूरत करी हैं। कहे कि आप सुनत हो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म जेका सुने के बाद आपके धड़कन भी का कहे लागत है।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9761 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
6: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
7: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
6: और फोटोग्राफी वगैरह?
7: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
6: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
7: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
6: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

तो चलिए शुरुआत किया जाए आज के खास दिन के बाद का। अब आप सबका अगर आज के खास दिन के बाद बताई तो कुछ दिन पीछे भी जाई, कहे कि आप सबका बतावत हमें बड़ी खुशी होती कि 9 से 15 तक यानी कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक मनावा जाता है अंगदान सप्ताह। अब अंगदान का है सबसे पहले तो आप सबका यह बतावे कि जरूरी है, कहे कि आप सब अपन मन भावन कार्यक्रम सुनत हैं और उमन अगर आपका पूरी जानकारी ना दी जाए तो फिर मजा का है। तो जैसे कि आप सबका पता है कि आजकल के बदकही तो हम सब अपने मनोरंजन के लिए करी थे, पर कुछ बदकही ऐसा भी हो चाहिए जेका करे के बाद माँ तनी हमारे सबके अंदर संवेदन जो भावना है वो बढ़ जाए। सबलू जी शुभ संध्या लिखत हैं कि फूल बाटे गुलाब का तोड़ मत दी जान, मोहब्बत तोहसे बेइंतहा बा कभी दिल तोड़ मत दी, दिल पर खिला देहलू गुलाब तू ई मासूमियत चेहरा में कभी भी मुंह मोड़ न मत दी। सिनुरवा तोहार हमार जान ले ले बा, तोर छुटकी नथिया हमार प्राण ले ले बा, अखिया के काजल हमरो दिल के धड़कन हो, सच पूछ तैयार तू हमार पूरा जीवन हो। शुभ संध्या अनुष्का, हम बिल्कुल ठीक बने और आप बताएं आप कैसे हैं। तब बात बतकही से हमें याद आवा कि आज के बतकही बहुत जरूरी है, काहे कि आज बात हुई अंगदान का। कबू कबू सोचे थे कि हमार जिंदगी कबो अगर ख़त्म हो जाए तो हम का करब, ओकरे बात तो हम कुछ कह ना पाए, काहे ना काहे हम जियत जियत कोनो ऐसन काम कह दी जोने से केहू के फायदा हो जाए। लेकिन हमारी इत वादा है कि अपने जीवन से हम कुछ लोगन के जीवन में उजाला जरूर करब, यानी कि अपने जाए के पहले अपने शरीर का जो अंग है ओका दान करे के एगो एग्रीमेंट लिख के जा, जोने हमरे जाए के बाद हमार जो अंग है वो जाया ना जाए, हमरे अंग से कोनो जीवित इंसान का नवा जीवन मिल जाए। हमरे शरीर के कुछ अंग अगर मृत्यु के बाद कोनो जरूरतमंद मरीज का मिल जाए या जीते जी भी कुछ अंग ऐसन है जोने का हम दान कह सकी थे, जैसे कि किडनी, लिवर, बोन मैरो, ये सब ऐसन है जिकरे लिए आप जीवित रह के भी मतलब आज चाहो तो आज भी आप अगर स्वस्थ हो तो अपन ये अंगदान कह सकत हो। बहुत सारे लोग हैं जो एगो किडनी और लीवर के लिए अपने जिंदगी से हाथ धोए दिए थे। तब आप सबका बताई कि पिछले 3 साल से अपने देश में अंगदान के जो बढ़ोतरी है वो हो चुकी है, पहले लोग ना ही दिए थे दान लेकिन अब दान करते हैं। लेकिन अभी देश के जो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं और माँ 22 माह ही अंगदान अभी शुरू हो पावा है, अभी बाकी माँ अंगदान की शुरुआत ना ही भई, दुख की बात है।

अब आपका बताई कि एक छोटी सी कहानी जेका सुने के बाद अगर आपके भी मन हुई तो आप भी केहू के मदद करे के सोचबो, या आसपास कोई ऐसा घटना या दुर्घटना आपके आसपास रिश्तेदार में होए तो वो खुदा ना खास्ता कभी कोनो भी घर में ऐसा कुछ हो, लेकिन का करा जाए कि हम सब ऐसे घटना से घिरा हन, लेकिन अगर हम केहू के मदद कह दी, हमारे सब अगर हाथ बढ़ाई तो शायद कोई के जिंदगी बन जाए। एक जने रहे चंद्र प्रकाश और उनके छोटा भाई सूर्य प्रकाश, जेकर उम्र रही 24 साल। कमे उम्र में उन्हें डॉक्टर के पास चक्कर लगावे पड़त रहा और पूछे पड़त रहा कि उन्हें बीमारी का है। आए दिन उनके दम फूले लागत रहा, सांस फूले लागत रहा। फिर मालूम चला कि सूर्य प्रकाश के दिल में महज 20% जो हिस्सा है वो काम करता है, बाकी हिस्सा खराब हो चुका है। और जो उनका दिल है यानी कि हृदय है, ओकर मिलब और इलाज के खर्च कुल मिलाए के 90 लाख लगत रहा। अब उन्हें सबका लगा कि भाई तो बच ना पाए। ऐसे में एक दिन अचानक कोनो के हृदय मिले और मिले के बाद में ये पता चला कि इलाज भी उनके मुफ्त में होए। ये अकेला परिवार नहीं है जो उन कोनो अनजाने व्यक्ति के सर्वोच्च दान यानी कि अंग दान के श्रेणी से बच गए। मतलब एक आदमी जो उनकी अपने कोनो विल में लिखे हुई और दुनिया छोड़ के चला गया, उनके हृदय से उनका हृदय मिल गए और बिना पैसा के 90 लाख रुपया एक आम आदमी एक मध्यमिक परिवार का इकट्ठा करे बहुत बड़ी बात है। उनका वो हृदय मिल गए और सूर्य प्रकाश के जीवन बच गए, कितनी बड़ी बात है। और इसने एक अन्य परिवार जो मैं राहुल के इलाज के लिए वे सब जगह जगह भटकत रहे, एम्स के आर्गन रिट्रेवल बैंक जमा ऑर्गेनाइजेशन के पंजीकरण करावे के लिए हार्ट के लिए इंतजार करते रहन कि कोई आवे और अपन हृदय दे जावे। राहुल बताइन कि उन्हें एक अनजान शख्स के हृदय धड़कत हुआ मिल गए। मतलब आपका पता हो एक चाहिए दिल के धड़कन चलत रहा थी कुछ देर तक आपके इस दुनिया के जाए के बाद भी, तो वो धड़कता दिल इन्हें वो अस्पताल दे दी जोने से उनके जिंदगी बच गए। फिलहाल बात ये नहीं है कि हम कैसे केहू के मदद कैसे की थे, फिलहाल ये है कि ये बात का लेके हमें सबका बात करे का चाहिए, चर्चा करे का चाहिए, जोने की जोन जागरूकता है वो फैले। हमारी मानव है कि हम सब अगर ये दुनिया से जाए तो शरीर ई मिट्टी हो जाए और ये मिट्टी शरीर का कोनो भी जगह इसे दफनाए दिया या जलाए दिया बहुत जायज नहीं है, लेकिन अगर अपने जो महंग अंग हैं जोने से केहू की जिंदगी के

जोन है, ओ शरीर से निकाल के जोन अंगदान वाले बैंक होते हैं वो मन दे दिन जाए, और ऐसे एक नहीं दुई नहीं कई जिंदगियां बचाई जा सकती, इतना छोड़ दिन जाए। अगर खूनदान भी की जाए तो ओहू से एक साथ आप तीन लोगों के जान बचा सकते हैं। ऐसे ने बहुत सारी कहानी है जे जेकरे बारे में अगर पढ़ा जाए जेका समझा जाए तो आज दुनिया के जो परिकल्पना है वो बदल सकती है। तो चलिए हम सब भी एगो पहल करी और कम से कम ही चर्चा जरूर करी कि अंगदान जैसन भी कोनो चीज होता है और एकरे बारे में सबका जानकारी दे। तो सबलू जी लिखा था राउर प्यार में मनवा हमारे बदनाम बाटे हो, प्यार करे खातिर दिलवा तैयार बाटे हो, तू रहलू गजल ता हम गुनगुनाईती, दिल के बात सीधे आंख से कही जाती। आ हा हा का बात है, मतलब इतना खूबसूरत लिखे के लिए एगो दिल और दिमाग दोनों होए के चाहिए, जोने से ई जो शाम है वो बेहतरीन हो जाए। तो चलिए एगो गीत सुना जाए और ई शाम का बेहतरीन गिन जाए।

जैसन कि आप सभी का पता है कि अंगदान के बारे में बात करे के बाद में आप सभी के जी में ये तो आई गई हुई कि अंगदान कितना महत्वपूर्ण है, केहू के रिश्ता बचावे के लिए, केहू के जिंदगी बचावे के लिए, केहू के परिवार पूरा करे के लिए। पूरा परिवार दुख में डूबा रहा था जब केहू के परिवार में कोई बीमार रहा था, ओकरे जिंदगी में उजियारा कह सकत हैं, कोनो दूसरा उम्मीद बैठाए के ओकरे जीवन का बचा सकत हैं। तो अगर आप सबके मन में भी है कि एक सोच से मशाल जलाई के दुनिया बदली जा सकत ही, तो बिल्कुल करें। कहते हैं कि सांस थम जाए कहानी नहीं, इंसान जाए इंसानियत नहीं। तो आज आप सबन का बताई कि अंगदान का सोच समझ के परिवार से बातचीत कई के एकर पात्रता प्रक्रिया और इससे जुड़ी जानकारी अपने चिकित्सा क्षेत्र में जानकारी ले लिए, कहे कि आप सबका पता है आसपास अस्पताल हैं और लोगन के मदद हम सब कह सकते हैं। माटी माँ मिल जाए तन पर नेक काम रह जाए, जिंदगी भले थम जाए केहू के और सांस बन जाए। अंगदान के संकल्प करी मानवता के मान बढ़ाई, आपन ई दुनिया माँ जीवन के दीप जलाई। और कुछ इस मिनट में आप सब सुन सकत हो अपने पसंद के भोजपुरी गाना और अपने आरजबीना के संगे आप सुनत हो कार्यक्रम अपन कार्यक्रम जोने का सुने के बाद माँ आप सबके दिल कहात है बार बार गोंडा मैसे मसाला आरजबीना वाला। और 6:55:32 हो चुका है और फटाफट से अपन फरमाइश करे के लिए तैयार रहिए, काहे कि 7 बजे से आपके फरमाइश बजी।

0: तो चलिए सबसे पहली फरमाइश सुनने के बारी है सनी पांडे के फरमाइश, फिर ओकरे बाद अनुष्का के, फिर सुरेंद्र यादव के और फिर सबलू जी के।
1: मगर इस वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता।
0: तो लगातार सबके फरमाइश सुनने के साथ ईशाम आप सबका, आपके एक मौका दिया था कि अपने पसंद के गाना सुनें।

0: शाम नहीं होने देंगे। अरे आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो एक बूंद भी लहू की, अरे बची हो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं।
1: अब चलिए अगला गीत की ओर रुख की जाए, शिव के मनैनी और गाना के

0: ए बुढ़ी आदनी एगो बीड़ी पियाव ना। बीड़ी कहा बा, बीड़ी दईखे का झूठ बोल तारू। हौ ब्लाउज में का रखले बाड़ू, रुमाल में बांध के निकाल निकाल ना एगो, आगे हाथ घुसिया के हम ही निकाल ली। बड़ा बेलौज बानी जी बे हौली।
1: तो चलिए अब ये जो फरमाइश है ये है बड़ी अनोखी फरमाइश और सबलू सावंत जी के गाना बड़ा प्यारा है। तो चलिए सुनी प्यार के रोग भाई।

0: भौजी एकरा कुछौ नहीं खे भइल।
1: तब पियराइल काहे बाड़न?
0: भौजी हो काथी कहीं?
1: बोला बोला।

0: ए भौजी, अरे एकरा कुछौ नइखे भइल।
1: ता दुबराइल काहे बाड़न
0: भौजी? हो काथी कहीं
1: बोला बोला।

लव लाइटिस धैले बा, और ये बीमारी तो भाई बड़ी खतरनाक है। अगर केहू के भी हो जाए ना तो कर पक्का मतलब जीना मुश्किल हो जाए। और अब बारी है अगला गाना सुने के, जोने के सुने के बाद सबके दिल धड़के लगे। हाँ ठीक है, तो चलिए सुना जाए आराध्या के फरमाइश के गाना, दिल धड़का था केहू के प्यार में।

इतना खूबसूरत गाना के फरमाइश करे के लिए शुक्रिया। चलिए अगला गाना सुना जाए। सुनीता जी सुना चाहती माई हो ललन वादेदा, बहुत ही प्यारा गीत जो उनकी देश का समर्पित है। चलिए सुन के बताएं कैसन है। और ये भी गाना भाई रवि जी का कहीं बहुत प्यारा गीत।

इतना प्यारा गीत सुने के बाद केहू के भी दिल डोल जाई और कही कि बस आँख में आंसू आवत है। तो ये गाना सुने के बाद अब अगला गीत के बारी है। अगला गीत के फरमाइश है दीपक कुमार के, और दीपक के सुने के ए बाबा कौन नगरिया, चला सुनी।

तो चलिए अगला गीत सुने के बारी है, और ये भी बड़ा बढ़िया गाना है, और आज के गाना के जोन है कोनो तोड़ नहीं, सबके पास आज बढ़िया फरमाइश है। और अगला फरमाइश जोन है वो है निशा के, निशा सुना चाहती गाना हमारे पापा जी के दुल्हा सरकारी चाहिए। आहा का बात है, और एक बात तो बिल्कुल जहाँ है कि पापा जी के दुल्हा सरकारी चाहिए, पर आप भी सरकारी नौकरी ले लें जो दोनों जन के सरकारी नौकरी हो जाए।

तो भाई सरकारी चाहे कि ना चाहे ई तो बाद में पता चली। फिलहाल अगला गाना जो उनकी बड़ा ट्रेंडिंग है, दुर्गा की फरमाइश के गाना है, सिनूर रंग चढ़ल सन के। आहा, सिनूर आ गई नहीं।

जुगल जी मध्य प्रदेश से, इम्तियाज जी शुभ संध्या का है भाई रुआ, और सविता शास्त्री जी रुआ स्वागत है, शुभ संध्या का हाल बा।

चलिए अब सुनिए इम्तियाज की फरमाइश के गाना। बड़ा प्यारा गीत है और गाना है नीला लेंस। बहुत ही प्यारा गीत, चलिए सुन के बताएं कैसन है। से नूर रंग। तो चलिए अब अगला गाना सुन के बताएं कैसन है इम्तियाज के फरमाइश के।

अभी गाना सुने के बाद एगो और गाना है जेका सुने के बाद माँ सबके दर्द जोन पिरितिया कहे ऊ सही हो जी। त दर्द कितना पिरितिया में होला, ये तो हमें नहीं पता है, ये गाना सुने के बाद पता चली। कहे कि ये फरमाइश है आपके अपने मुमताज़ जी के, तो चलिए सुनी और बताएंगे।

इंतजार हो जाला, अखिया में उमर भरला, इंतजार हो जाला, दिल बस में ना रहेला जब प्यार हो जाला।

0: नहिया के ना उतरे और चटकार हो जाला, रंग नहिया के ना उतरे और चटकार हो जाला, ऐसन तीर है जे दिल के पार हो जाला।
1: आ हा हा हा, का बात है। अब चली एगो और गाना सुने, तड़कता भड़कता जोने के बोल हैं, फोटो जूम जूम। आहा का बात है। फिलहाल फोटो जूम कह के तो दिख ले रहनी, लेकिन अब गाना जूम कह के सुने के बारी है। तो चली सुन के बताएं कैसे नहीं ये गाना, और ये गाना है फरमाइश सबीहा के। तो दर्द कितना प्रीतिया में होला, प्रीतिया प्रीति का नाम नहीं है, प्रीतिया मोहब्बत का हमारे सबके यूपी बिहार में कहा जात है। तो बिल्कुल भी प्रीतिया कोनो लड़की का ना सोची हैं, प्रीतिया मोहब्बत का सोची हैं। अब अगला गाना है फोटो जूम जूम। तो चली करके देखी गाना के जूम एंड इमेजिन करी कि फ़ोटो जूम करे के बाद कैसन लागत है। अच्छा मोबाइल है तो फ़ोटो अच्छा लागत है, थोड़ा पुराना मोबाइल है तो फ़ोटो फट जात है। हम तो यह महसूस किए ना, बाकी गाना बताई कि फ़ोटो जूम करे के बाद

शुभ संध्या अनिल जी, रवा के भी स्वागत है और हमारे सबके संगे सब लिसनर लोग आज के जो गाना है उसका एंजॉय करते हैं। सब रंग बिरंगा गाना है तो ये जरूर मजा आवत है। आप सब बताइए कि अलग अलग रंग रूप के गाना सुनने के बाद मजा ज्यादा आवत है या एक मेरे के गाना सुन के मजा आवत है।

अब जेसन की चले के समय हो चुका है, तो चला चला चला और चलत चला आखिरी गाना बजाए दी। और आखिरी गाना है सुरेंद्र यादव के, चली देखी कौन गाना है। और बहुत प्यारा फरमाइश सुने का मिला सुमित्रा जी के लाल लाल हुटवा से। और आखिरी फरमाइश है पवन सिंह की आवाज़ माँ गाना सावन स्पेशल बोल बम वाला। तो चलिए देखी कौन में रहे गाना सुन के बताएं। और आरजबीना का दिए इजाज़त, हंसत रहें मुस्कुरावत रहें और बजावत रहें अपन वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM यहाँ गोंडा शहर के धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

सत्या दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी परमाइशी की गठरी को अभी तक नहीं खोली है, फटाफट से अपनी परमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की परमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो किसी ने क्या खूब कहा है कि तबाही तय है तो क्यों ना इसे बेहिसाब करें, तबाही तय है तो क्यों ना इसे बेहिसाब करें, आज जिंदगी बैठ आज तेरा भी हिसाब करें, ना जाने कौन सा चेहरा बचा है चेहरों में, अब एक सच कहें और सबको बेनकाब करें, ये जो मेरे कंधों पे चढ़कर खुदा बने बैठे हैं, ये जो मेरे कंधों पे चढ़कर खुदा बने बैठे हैं, उन्हें उतार कर उनका भी कुछ हिसाब करें, बहुत पी चुके इस जमाने के कड़वे घूंट हम, चलो इन आंखों के पानी को ही तेजाब करें, क्यों ना इन आंखों के ही पानी को तेजाब करें। बहुत ही प्यारी सी लाइंस थी और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, नवीन राजपूत एमपी से, अनुष्का श्रावस्ती से, महेंद्र राजस्थान से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, अभिराज पांडे एनसीआर दिल्ली से, कार्तिक कश्यप धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, उत्कर्ष कश्यप सरयू से आपका भी स्वागत है, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, और अभिषेक फ्रॉम भागलपुर आपका भी स्वागत है आपके अपने परमाइशी की महफिल में। और सुरेश कुमार जी चौक से, निपुर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, इम्तियाज अहमद गोंडा से, नागेश्वर धाकड़ इंडिया से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में। मालवीय नगर से राजेश सिंह जी नमस्कार। सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश, और दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि पहली फरमाइश हमारे पास में है बहराइच से प्रीति शुक्ला जी की, और प्रीति शुक्ला जी को बहराइच से सुनना है गाना मेघा रे मेघा। सो एंजॉय करते हैं ये सावन स्पेशल वाला गाना, ओल्ड इज गोल्ड नगमा सुरेश जी की और लता जी की आवाज में, प्यासा सावन का नगमा सिर्फ और सिर्फ प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी और रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सुरेश जी की और लता जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मेघारे मेघारे। फरमाइश थी प्रीति शुक्ला जी की बहराइश से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले महेंद्र का राजस्थान से बहुत ही खूब कुछ कहना है। इन्होंने अर्ज किया है कि जरा सी भीड़ लगी और मेला हो गया, जरा सी भीड़ लगी और मेला हो गया, उसके पलक झपकते ही अंधेरा हो गया। रात भर देखते रहे सभी उस चांद को, रात भर देखते रहे सभी उस चांद को, बारी हमारी आई तो सवेरा हो गया। सो ये लाइंस थी राजस्थान से महेंद्र की तरफ से। फरमाइश एंजॉय करते हैं अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है दोस्तों गाना। किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं और कोई देख लेना हमें यहाँ, कहीं घूम के आए हम और फाइनली चलो इश्क लड़ाए हम। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि इश्क ही लड़ाना है, खाना पीना घूमना टहलना, एवरीथिंग इज ऑल राइट।

फाइनली हम लोगों ने इश्क लड़ा लिया है उदित नारायण अलका याग्निक जी की आवाज में इस सुरीले नगमे को सुन के, वो भी इतने एनर्जी से भरपूर वाले गाने को सुनने के बाद में सबने इश्क फ्लैशबैक में तो जरूरी लगा लिया होगा, और नहीं लगाया होगा तो इमेजिनेशन वाली दुनिया में तो सब लोग सब कुछ कर लेते हैं। मैंने भी अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में दोस्तों अपनी एक किडनी बेच दी थी। एक किडनी बेचने के बाद में वो जब नई वो एवेंजर आई थी ना, एवेंजर बाइक, तभी मैंने इमेजिनेशन में अपनी एक किडनी बेच दी थी। एक किडनी बेचने के बाद में इलीगल तरीके से, वो भी लीगल तरीके से, मैंने सोचा कम पैसे मिलेंगे तो इलीगल तरीके से मैंने अपनी किडनी बेची। किडनी बेचने के बाद में मैंने एवेंजर लिया, और एवेंजर के साथ में मैंने हेलमेट और फिर एवरीथिंग, लेदर के बूट्स, लेदर की जैकेट, लेदर की पैंट, सब कुछ लेने के बाद में मैं लद्दाख ट्रिप पे भी निकल चुकी थी दोस्तों। सो इमेजिनेशन करने में क्या जाता है ना, हम जो सोच लें वही सब कुछ अपना हो जाता है, सर्वस्व अपना हो जाता है, बस एक बार सोच के तो देखो। तो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में दोस्तों। अगली फरमाइश है महेंद्र की राजस्थान से, और राजस्थान से महेंद्र को सुनना है गाना दिल की सुर्ख दीवारों पे। अच्छा, दीवारों पे नाम है तेरा, तेरा नाम है तेरा, तेरा। सो एंजॉय करते हैं आपका सुरूर का ये गाना, हिमेश जी का चुम्मेश्वरी वाला गाना। भले ही दर्द पीड़ा इन सब से भरा हुआ है, लेकिन ये नगमा है बहुत ही खूबसूरत। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा महेंद्र की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। वैसे ये गाना मुझे महेंद्र की तरह बहुत पसंद है, आपको कैसा लगता है मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो राजू सीतापुर से उषा कश्यप जी गोंडा से। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, जिंदगी हंसते खेलते मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती है ना, वाह।

सुर्ख दीवारों पे नाम है तेरा तेरा, यही है बस तुझसे कहना, सदा मेरी बन के रहना, किसी और से तू नजरे ना जोड़ना। अच्छा, आपने कहा और वो मान लेगी, है ना, या फिर आपने कहा और वो मान लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नजरे तो हम जोड़ने वाले हैं, भले हम आपसे कहें चाहे ना कहें कि हमने उनसे नजरे जोड़ी थी। अरे भाई, नजरे जोड़ने में क्या जाता है, जो अच्छा लगेगा उसको तो देखेंगे ही देखेंगे ना। और बाई चांस जिसको हमने देखा उसने हमें देख लिया, आई कॉन्टेक्ट हो गए, तो विच मीन्स आई कॉन्टेक्ट का मतलब ही हुआ ना नजरे जोड़ना। जुड़ गई नजरे, अब क्या कर लोगे, अब बेवफा हो गए क्या आप, कुछ भी बोलना होता है। फिलहाल हमने एंजॉय किया ये बहुत ही दर्द भरा नगमा महेंद्र की फरमाइश पर, जो कि है राजस्थान से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले किसी ने कहा है कि कुछ बातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं, पूरा हो जाने के बाद अक्सर अफसाना टूट जाता है। तन्हाइयों का शहर है, हर शख्स है अकेला। ये कितनी कमाल की लाइन है ना, तन्हाइयों का शहर है, हर शख्स है अकेला, फिर भी हर आदमी यहाँ भीड़ ढूंढता है। सो भीड़ ढूंढते ढूंढते हम लोग आ चुके हैं अपनी फरमाइशी की महफिल में, लेकिन यहाँ तन्हाई को हम बोलते हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि तन्हाई दिल से नहीं लगती, और जो दिल से नहीं लगती उसको फरमाइशी की महफिल में हम बोल देते हैं टाटा बाय बाय, और जो दिल से लगती है उसको सीधे हमारी फरमाइशी की महफिल में कनेक्ट करते हैं और जज्बात बिखेर देते हैं, दिल निकाल के सीधे महफिल में रख देते हैं, क्योंकि इस महफिल में तो दिल को कोई नहीं छेड़ने वाला। भाई, अगर दिल में दर्द है, दिल में जख्म है, तो मरहम पट्टी सब कर देंगे, लेकिन नमक तो कोई नहीं छिड़कने वाला भाई। सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना दिल कहे रुक जा। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा मोहम्मद रफी जी की आवाज में, मन की आंखें पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पे, जो की है लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

जो बात इस जगह पर है कहीं भी नहीं। मोहम्मद रफी जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मुस्तफा जी सऊदी से और विजय पाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से बहुत दिनों बाद आप दिखे हैं। सब खैरियत है, सब ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अपने फरमाइशी गीत को भी जरूर शेयर करिएगा और आपको देख के बहुत अच्छा लगा। सो अब इंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है हमारे प्यारे से, हमारे क्यूटू से, जग्गू दादा की तरफ से, और हमारे जुगल किशोर वर्मा जी को MP से सुनना है काम चोर पिक्चर का गाना, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और। और जुबा पर आज दिल की बात आ गई। सो वैसे अगर हम किसी से कहते हैं कि तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, जुबा पर आज दिल की बात आ गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब भाव खाने लगेंगे। अगर मुझे ये कहा जाए तो मैं भी खाने लगूंगी। अगर मैं भाव खा सकती हूँ तो संसार भाव खा सकता है दोस्तों।

दिल में इतना प्यार लिए ना आया कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। आई लव दिस सॉन्ग, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच जग्गू दादा जी। हमने एंजॉय किया जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर एक बार फिर से बहुत ही शानदार सा गाना। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश को भी इंजॉय करने के लिए दिल थाम लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज पता नहीं क्या हो रहा है, आप लोगों ने षड्यंत्र रच के आज की प्लेलिस्ट बनाई है, क्योंकि ओह माय गॉड अगली फरमाइश जो हमारे पास में है वो है अभिराज पांडे की एनसीआर दिल्ली से। उनको सुनना है गाना पल पल दिल के पास तुम रहते हो। सो एंजॉय करते हैं ब्लैकमेल का ये गाना किशोर कुमार जी की बहुत ही उम्दा सी आवाज में, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में अभिराज की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो उस्मान खान और इन्हीं के साथ में विशाल बेदर्दी। स्टे ट्यून्ड। वाओ कितने दिनों बाद हम ये गाना भी सुन रहे हैं ना फरमाइशी में।

वैसे परवाने जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन जलने का मजा हर कोई जानता है। जिंदगी ने किसी ना किसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर कभी ना कभी जलाया तो जरूर है। झूठ मत बोलना दोस्तों, इतने इतने दिल जले तो हम सभी होंगे कि हमारा दिल कहीं ना कहीं जला जरूर होगा, किसी ना किसी वजह के वजह से, किसी ना किसी कारण की वजह से, किसी ना किसी रीजन की वजह से, है ना, किसी ना किसी इंसान की वजह से। सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा किशोर कुमार जी की आवाज में। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले नवीन राजपूत जी का पूछना है कि मैडम गोंडा में क्या बरसात हो रही है, आपके उधर क्या बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है क्या आपके इधर? अरे अरे भैया थमो थमो थमो, इतना पानी गिर रहा है, इतना पानी गिर रहा है कि मैं आप लोग को बताना ही भूल गई कि गोंडा में इतनी बारिश हो रही है कि मैं अपने घर से दुखरन नाथ यहाँ स्टूडियो तक ना मैं तैरती हुई आई हूँ दोस्तों। अब सोच लो कितनी बारिश हो रही है नवीन राजपूत जी, मैं बिल्कुल मजाक कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मजाक कर रही हूँ। हाँ बूंदाबांदी हो रही थी आते टाइम पे, भाई ने मेरे से बोला कि बारिश हो रही है, मैंने कहा चल यार इतनी भी क्या हो रही है, क्योंकि मुझे पता था कि आज तक 2-3 सालों में मैं स्टूडियो आते हुए कभी भी नहीं भीगी हूँ, तो आज आखिर वो शुभ घड़ी कैसे आ सकती है कि मैं भीग जाऊंगी, बारिश हो रही है, नहीं हुई बारिश, बूंदाबांदी करके चली गई बारिश। वैसे माहौल अच्छा था, मौसम अच्छा था ये कह सकते हैं। अभी मैं स्टूडियो के अंदर हूँ तो मुझे अंदाजा नहीं है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। सो जो लोग बालकनी में बैठे हुए हैं या फिर ऐसे सड़क पे गेड़ियां मार रहे हैं या फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ इधर उधर खलबली खलबली कर रहा है, वो बता सकता है कि गोंडा में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। फिलहाल इंजॉय कर लेते हैं नवीन राजपूत जी की फरमाइश पहिए वाला नगमा जी। हाँ दोस्तों स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: वाओ, तो हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, समंदर में किनारा तू जो बिक्रम है सहारा तू। वैसे सहारा अपने आप का खुद ही बनना चाहिए, जो आज आपका सहारा बन रहा है ना उसको पता है कि आप बेसहारा कैसे हो सकते हो। जिसको आपकी स्ट्रेंथ पता है, जिसको आपकी वीकनेस पता है दोस्तों, वो आपकी वीकनेस को जिंदगी भर आपकी वीकनेस ही रखेगा और आपकी स्ट्रेंथ को भी आपकी वीकनेस बनाने की पूर्णता कोशिश करेगा। सो मेरी तरह बेवकूफ बिल्कुल भी मत बनिए और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस कभी किसी को मत बताइए। अनटिल अनलेस आपको उसके लिए पेमेंट मिल रही है, आपको उसके लिए जॉब मिल रहा है, आप उसके लिए इंटरव्यू दे रहे हो, हाँ तब आप अपने इंटरव्यू में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बता सकते हो। लेकिन ऐसे लोगों से अपने बारे में कुछ बताने लगना, कोई आ जाए आपको कंधा दे दे सहारा बन जाए, फिर उसको आप अपने बारे में सब कुछ बता दो, फिर भाई वो ही आपकी ऐसी की तैसी करके फिर से जाएगा, है ना। जो आज बैठा है कि हाँ घाव पे लो मरहम लगा दो, कल वो ही घाव पे नमक मिर्च सब लगा के जाएगा। इसलिए भाई कलयुग है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन सब बातों पे, और इन सब बातों पे आप ध्यान नहीं देते होगे, भूल जाते होगे, इसलिए मैं रोज शाम को आपको याद दिलाने आती हूँ। ये दुनिया है दोस्तों, बहुत जालिम है, बहुत जालिम है, सब अपनी अपनी देखते हैं, स्वार्थ से सबको मतलब है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, नागेश्वर धाकड़ आपका स्वागत है। इन्होंने कहा है कि गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, परंतु प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। लेकिन तब क्या नागेश्वर धाकड़ जी, जब पूरी दुनिया को प्रेम चाहिए ही नहीं आपसे, तब आप कैसे प्रेम से सब कुछ संभाल सकते हैं? मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना, अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। इस गाने की फरमाइश हमारे पास में आई हुई है सुरेश कुमार जी की तरफ से, जो कि चौक गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।
1: तो शादाब हो भी सकती थी, ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी, जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

और ये बाहें मेरी अमानत हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन दोस्तों, अगर हम इतने सैड से गाने को एंजॉय करेंगे, इतने प्यार भरे नगमे को एंजॉय करेंगे, तो आपके आरजे सिंपल के जहन में उमड़ उमड़ के कोई ख्याल ना ऐसा हो सकता है क्या? अजहर इकबाल का कहना है, बहुत ही खूबसूरत सा कहना है, गौर फरमाइएगा कि अब कोई शिकवा ना कोई मलाल करेंगे अब कोई शिकवा न कोई मलाल करेंगे, हम अपने घावों का खुद ही इलाज करेंगे। लोग कहते हैं कि बदल गए हैं हम, उन्हें क्या पता कि टूट कर बिखर गए हैं हम। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में कार्तिक कश्यप की गोंडा से। और कार्तिक कश्यप का कहना है कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। वैसे गाना आए या ना आए गाना ऑब्वियसली गाना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर मौसम ठंडा हो और पानी भी ठंडा हो और आपको भी ठंडी लग रही हो तो ठंडे ठंडे पानी से नहाया जाए। वैसे आज का मौसम इतना ठंडा था कि जितने लोगों को मेरी तरह बहुत ज्यादा ठंडी लगती होगी, उन्होंने आज का नहाना स्किप कर दिया होगा। दो रीजन की वजह से, एक तो हम लोगों के यहाँ थर्सडे को साबुन शैम्पू ये सब यूज ही नहीं करना होता है ना, तो नहाने का वैसे कोई नहीं मतलब बनता। ऊपर से भाई ठंडा मौसम गर्ज भर का था है, अब इतने गर्ज भर के ठंडे मौसम में कौन ही नहाना चाहेगा। तो मैंने तो आज का नहाना स्किप किया है। तो आप लोगों ने भी क्या आज का नहाना स्किप किया है गोंडा वालों, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इंजॉय करते हैं ये ठंडा ठंडा पानी वाला गाना, और ये फरमाइश है कार्तिक कश्यप की गोंडा से। स्टे ट्यून्ड। मेरी कितनी सच्ची लड़की देखी है यहाँ, नहाया कि नहीं नहाया ये भी बता दिया मैंने। स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल।

पानी से नहाना चाहिए। हमने एंजॉय किया ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नंग में। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ और अगला फरमाइशी गीत हमारे पास में दोस्तों धर्मेश त्रिपाठी की तरफ से जो कि है गोंडा से। धर्मेश त्रिपाठी को सुनना है रईस का गाना जालिमा। सो एंजॉय करते हैं हाउ रोमांटिक नंगमा सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो तबिश खान फ्रॉम लखनऊ। स्टे ट्यून्ड।

बढ़ते हैं हमारी आज के लिए फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की, उनको सुनना है गाना राज आंखें तेरी। इंजॉय करते हैं ये वाला नगमा इसी फरमाइशी गीत के। उस तरफ दोस्तों चलेंगे हम हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। और जिन लोगों ने अभी तक पेट पूजा नहीं की है, फटाफट से जाइए पेट पूजा करके आइए, सीधे 9 बजे फिर से सुकून प्यार जज्बात सब कुछ बिखेरेंगे हमारी फरमाइशी की महफिल में। फिलहाल एंजॉय करते हैं सबीहा का और मेरा पसंदीदा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय

0: कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
1: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
4: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसा ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
5: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
6: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1,500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
7: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
8: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सतश्रीकाल और स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। उमेर नजमी का कहना है दोस्तों कि बहुत महंगी पड़ी है ये सादगी हमको, लोग चालाकियां दिखाकर आगे निकल गए। बहुत महंगी पड़ी है ये सादगी हमको, लोग चालाकियां दिखाकर आगे निकल गए। सबने अपना अपना हिसाब मांगा हमसे। जब हमारी बारी आई तो महफिल जला के उठ चले। सो कैसे हैं आप सब, और वेरी वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन, वेलकम इन योर शो। और एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, उनको सुनना है गाना दीवाना है ये मन। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

झूमे रे झूमे। हमने एंजॉय किया ये वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं पूछना चाहूंगी मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा से कि आपका दिल अभी भी झूमता है, कैसे झूमता है वो अलग टेक्निक मुझे भी बताओ ना, मुझे भी अपने दिल को बोलना है कि थोड़ा सा झूम जा, जरा सा झूम लो मैं, अरे ना अरे ना अरे ना। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है अभिषेक की, और अभिषेक को सुनना है भागलपुर से गाना ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए और मुझे डोर कोई खींचे थी ओल लिए जाए। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला सुपर डुपर डुपर हिट नगमा किशोर कुमार जी की आवाज में कटी पतंग पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ अभिषेक की फरमाइश पर जो की है भागलपुर से। स्टे ट्यून्ड। ओहो

पीछे तेरी ओर लिए जाए। हमने एंजॉय किया किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग का ये नगमा। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, उनको सुनना है बाबू पिक्चर का गाना। सो एंजॉय करते हैं लता जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।

हलचल, मेरे दिल में हुई हलचल, लता जी की आवाज में ये आइकॉनिक सॉन्ग हमने एंजॉय किया है। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों राजू विश्वास की, और राजू को सीतापुर से सुनना है गाना मेरी छतरी के नीचे आजा क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। एंजॉय करेंगे वाला नगमा, लेकिन उसके पहले हमारे एक लिसनर का कुछ कहना है कि जिस दिन हर युवा देश के काम आएगा उस दिन भारत फिर से जगत गुरु कहलाएगा। उठो जागो और अपनी मंजिल को पहचानो, तुम्हारा हर कदम देश के प्रगति के काम आएगा। ये लाइन्स थी नागेश्वर धाकड़ की तरफ से। अब एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश। Stay tuned everyone. Ayla, Ayla. Ayla, Ayla.

साहब चलते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ, जिसके साथ में आपकी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। सो अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है उषा कश्यप की गोंडा से, उनको सुनना है गाना हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। इंजॉय करते हैं ये वाला गाना, इसी के साथ लेती हूँ अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समोन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून, मिलते हैं कल, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

0: हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9761 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड गोंडा,
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें, आदाब आप सभी को, आप सभी का अभिनंदन वंदन एवं नमन आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम आ चुका है बहारे गजल, जो थोड़ा सा सुकून देने का काम करता है। और इस वक्त हम चाहते भी हैं कि थोड़ी सी ऐसी बातें हों जो दिल को सुकून पहुंचाएं, कुछ ऐसे नगमे हों, कुछ ऐसे जज्बात हों, उनसे रूबरू होने का वक्त आता है। और कुछ सी वक्त पर बहारे गजल के साथ मैं उपस्थित होता हूँ आप सभी के साथ। हमारे साथ विशाल बेदर्दी जी खैम को पढ़ रहे हैं। भाई गुड इवनिंग मनु सर, शुभ संध्या विशाल जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। नागेश्वर धाकर जी, भाई गुड इवनिंग आर जे मनुसर जी, जी आपको भी प्रणाम करते हैं नागेश्वर जी, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मिश्रा ऑप्टिकल्स जी हमारे साथ उपस्थित हैं, गुड इवनिंग सर जी, बहुत दिन के बाद देखा आपको। और बातों में कभी तो कुछ बात लगनी चाहिए, अगर लू भी चले तो बरसात लगनी चाहिए। ये आँखें ये जुल्फें तुम तो कातिल लगती हो, तुम पे धारा 307 लगनी चाहिए। क्या बात है, ये तो खैर आपने बहुत अच्छी बात कही है। और कहीं आपने कातिल की जगह हत्यारण शब्द का इस्तेमाल कर दिया होता तो क्या बात है। जिसके लिए आपने लिखा वो आप पर गजब जाती, बहुत ही प्यार भरा संदेश दिया आपने। और आइए आज आपको ले चलते हैं गजलों की दुनिया में एक प्यारी सी शायरा की तरफ। नाम है नासिरा जुबैरी, एक ऐसा नाम जो हो सकता है आजकल के जो जंजीज वाले बच्चे हैं उन्होंने न सुना हो, लेकिन जो हमारे पुराने वाले चावल हैं, जो मिलेनियर वाले हैं, वो ज़रूर इस नाम से रूबरू होंगे, बावस्ता होंगे। हमारे साथ अनिल शास्त्री जी भी आ चुके हैं, चरण स्पर्श करते हैं दादा आपको और उम्मीद करते हैं कि गोरखपुर में थोड़ी बहुत बारिश आज हुई होगी। तो नासिरा जुबैरी जी, उन्होंने लिखा कि दिल के भेद को पाए कौन, किसी के दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता। दिल के भेद को पाए कौन, ये पत्थर पिघलाए कौन। आदमी बाहर से दिखने में बड़ा, बात मुझे याद आ गई कि अंदर से क्रोधित वो इंसान ज्यादा होता है जो अपने दुख को बयां नहीं कर पाता। अगर आपने किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो फंसा क्रोध में हमेशा रहते हैं, अगर आप उनकी जड़ में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि वे अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए क्रोध में रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने दुख को व्यक्त कर सकता है वो क्रोध में नहीं, बहुत शालीन होकर मिलेगा आपसे, क्योंकि उसे अपना दुख व्यक्त करना आता है। जरूरी है कि हम सभी के पास गम है, इस दौर में जीना कोई आसान नहीं है। खुशहाल है वो शख्स जो परेशान नहीं है, मिलते हैं बिछड़ते हैं उजड़ते हैं यहाँ लोग, ये राह मोहब्बत कोई आसान नहीं है। तो जिंदगी की राह है साहब आसान नहीं है। तो क्रोध उसके पास ज्यादा होता है जो दुख नहीं व्यक्त कर पाता। अगर कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है तो आप जड़ में जाकर पता करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि उसके क्रोध की मुख्य वजह जो है, जो मुख्य कारण है, वो ये है कि वो अपना दर्द किसी से नहीं बांट पा रहा है या रही है। दिल के भेद को पाए कौन, ये पत्थर पिघलाए कौन, कौन लगाए खुद को आग, दीपक राग सुनाए कौन। उजड़ी बस्ती के रस्ते जुज आसा बसाए कौन। मतलब यहां पर जिनको, जो इस बस्ती को बनाने की कोशिश करेगा उसे उजाड़ दिया जाएगा। दिल का जिनका ईंधन दिल का खून, जिनका ईंधन दिल का खून, ऐसे दीप जलाए कौन। ये मंजिल आसान नहीं, अपनी राह बनाए कौन। कुछ तो है इस वहशत में। वहशत का मतलब होता है कि किसी चीज से आप भागते हैं, एस्केपिसिज्म। कुछ तो है इस वहशत में, वरना पत्थर खाए कौन। पागल है दिल तेरे लिए, पागल को समझाए कौन। असली सूरत सच्चा अक्स। अब देखिए पंक्ति अच्छी आ रही है। असली सूरत सच्चा अक्स। अक्स मतलब आप सभी जानते होंगे कि प्रतिबिंब, छाया या परछाई, जो कुछ भी आप कहें। असली सूरत सच्चा अक्स, देखे कौन दिखाए कौन। अब देखिए इस दुनिया में सच्चा होना अपनी हो सकता है कि हम अपना वास्तविक स्वरूप किसी के सामने रख दें तो उसके लिए बहुत घृणित हो सकता है। इस डर से इंसान अपना असली चेहरा सबके सामने नहीं ला पाता। और अगर कोई व्यक्ति हमको आईना दिखा देता है कि आप ऐसे हैं, तुम उसको बहुत अच्छा नहीं मानते, हमको लगता है कि नहीं। असली सूरत सच्चा अस्क, देखे कौन दिखाए कौन। न तो कोई देखने वाला ही है साहब, और न कोई दिखाने वाला है जी। हमारे साथ नागेश्वर धाकर जी कहते हैं, उम्मीद करता हूं आज थोड़ी ओल्ड गजल सुनने को मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल, सविता शास्त्री जी चरण स्पर्श करते हैं। आपको भी कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी होंगी। कल गायन बहुत शानदार रहा आपका। और नागेश्वर लिखते हैं, होता है सर जी, जो लोग अपने दुख को किसी से नहीं बता सकते, अंदर अंदर घुट घुट कर मरते हैं जी। इसीलिए इंसान को एक दोस्त की आवश्यकता होती है, एक अच्छे दोस्त की, एक सच्चे दोस्त की। दीप सिंह जी है भाई, आईटीआई अयोध्या से, बहुत दिनों के पश्चात देखा आपको। जो आपको यकीन दिलाऊं कि पिछले 2 वर्षों से मैं इनसे यही कह रहा हूं कि जो केक रखा हुआ है इसका एक टुकड़ा हमें भी खाने को मिल जाए। आप आइए अयोध्या से, अपने ही स्टेशन पर आइए, रेडियो गणेशली 89.6 FM करता है आपकी प्रतीक्षा। तो दीप सिंह जी अभी तक मुलाकात नहीं संभव हो पाई, उम्मीद करते हैं कि 2026 के अंदर हमको इस केक का एक छोटा सा टुकड़ा खाने को मिल जाएगा। खाली हम देख देख कर मुँह में पानी आता रहता है, क्या शानदार केक है और वाह क्या डीपी लगा रखी है आपने जी, बहुत अच्छा। और अब चलते हैं, चूँकि आज हमने शायरा चुनी है तो क्यों ना गजल की शुरुआत भी किसी गायिका से करें। उधर शायरा है तो इधर गायिका है जी हाँ। और अगर गायिका की बात की जाए तो मुझे को लगता है कि लता जी तक पहुंचना शायद ही किसी के बस की बात हो। कुछ चुनिंदा गजलें ही लता जी ने गाई और उन्हीं चुनिंदा गजलों में एक गजल हम आपको सुनाते हैं। हो सकता है ये गजल आप पहली बार सुन रहे हो, या ये हो सकता है कि बहुत दिनों के बाद सुनने जा रहे हो जी हाँ। लेकिन जरा शब्दों को ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि इस गजल का भाव आपको कैसा लगा। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ खजाने में से अपने, और उम्मीद करता हूँ कि ये खजाना आपको पसंद आएगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं स्वर कोकिला लता जी की आवाज में ये प्यारी सी गजल।
1: पशुपालकों से अनुरोध है अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: छूने दो बच्चों के हाथों
3: 1500 प्री लोडेड गानों वाले।

सामान्यतया लोग चाहते हैं कि ईश्वर उनकी झोली खुशियों से भर दे, और यहां पर कहा जा रहा है दर्द से मेरा धाम दामन भर दे या अल्लाह। क्या लगता है आपको, जरा आपने विचार रखी, हमने ये गजल बहुत ढूंढी और हमको मिली, इसके पश्चात ने कहा चलिए अपने श्रोताओं को सुनाएंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि सिर्फ सुनना नहीं भाई, उस पर थोड़ा सा विश्लेषण भी करना चाहिए।

क्या लगता है आपको, जिसने इनको लिखा होगा, जिसने इस प्यारी सी गजल को लिखा होगा? लता जी ने बहुत अच्छे सुर में गाया, और क्या उस व्यक्ति की उस समय मानसिकता रही होगी, या क्यों ऐसा कहा उस कवि ने कि दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, दर्द इतना प्यारा क्यों है? सोचिए और बताइए हमको। और जब तक आप बताइए तो भाई, लता जी ने एक गजल गाई है और एक गजल आपको लता जी की आवाज में ही और सुनाते हैं। तब तक आप जरा सोचिएगा और अपने विचार हमको संदेश में लिखकर बताइए कि आखिर में क्या कोई ऐसा भी मांग सकता है ऊपर वाले से कि दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, और अगर हाँ तो क्यों, क्या क्या कारण हो सकता है? हम आपका नजरिया जानना चाहते हैं इस गजल के पीछे। हम सुनते हैं, अच्छी बात है और सुनना भी चाहिए, लेकिन जरा उस कवि की आत्मा तक पहुंचे जिस कवि ने ये कह दिया कि दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके दामन में दर्द हो जाए, दर्द से भर जाए? हम सभी तो खुशी चाहते हैं, फिर दर्द क्यों चाहा? उत्तर दीजिए, हम आपके उत्तर की करेंगे प्रतीक्षा। और फिलहाल लता जी की ही एक प्यारी सी गजल आपको और सुनाते हैं।

देखते हैं कि भाई आप लोगों ने क्या विश्लेषण किया इस प्यारी सी गजल पर। सबसे पहले विकास जायसवाल जी हैं गोंडा से, राधे राधे आपको भी, राधे राधे विकास जी। और सविता जी ने कल लिखा है भाई अच्छी गजल, और लिखती हैं जितना दर्द होगा ईश्वर को की निकट उठना होगा। क्या बात है, ये एक अच्छी बात है। हाँ, किसी ने कहा भी था कि सुख के माथे सिल पर है, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रहता है। तो ये आपने सही, मतलब एक साहित्यिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि जितना दुख होगा हम शायद ईश्वर के उतने करीब होंगे। बहुत ही भाई खूबसूरत सोच। नागेश्वर धाकर जी हमारे साथ उपस्थित है, भाई महेंद्र दीपेंद्र राजस्थान भी हैं, और गीता श्रीवास्तव जी, प्रणाम बहन जी, आपको कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और जी, और अपना अपना नजरिया है, मतलब ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि मेरा दामन दुखों से भर दीजिए। और इसी थकन को हमको लगता है कि जब छायावाद की कवियत्री महादेवी वर्मा ने महसूस किया था तो उन्होंने लिख दिया था कि नहीं अब गाया जाता देव, नहीं अब गाया जाता देव, थकी अंगुली है ढीले तार, विश्व वीणा में अपनी आज मिला लो ये स्फुट झंकार। उन्होंने कह दिया था कि अब मुझे बुला लीजिए, अब गाया नहीं जाता है। और वास्तव में गाना आसान भी नहीं है। जोकर को मुस्कुराते हुए देख रहे हो, जोकर मुस्कुराता है ना, जोकर को मुस्कुराते हुए देख रहे हो, आंसू को धुन बनाते हुए देख रहे हो, जो चाहता है चीखना, जो लेना सिसकना, जो चाहता है चीखना, जो लेना सिसकना, महफिल में उसे गाते हुए देख रहे हो। तो जरूरी नहीं कि महफिल में गाने वाला हर इंसान अंदर से बहुत खुश हो, अंदर से बहुत प्रसन्न हो। कभी कभी दर्द भी इंसान की मुस्कुराहट की वजह बनती है। और महेंद्र जी भी कहते हैं यही मैं सोच रहा था, ये गायिका का और प्रेम का दर्शन है। जी हाँ, बिल्कुल, ये गायिका के अटूट प्रेम को दर्शाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो शिकायत न कर दे खुद को, खुशी खुशी अपनाना चाहती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और वास्तव में यही देखें कि हम गायिका के अटूट प्रेम को दर्शाती है, और जो जिसने लिखा उसने तो बाकमाल लिखा। बात करते हैं नासिरा जुबैरी साहिबा की, उन्होंने कहा, उनकी एक गज़ल का शीर्षक है कि मेरी ख्वाहिश बहता पानी, मेरी ख्वाहिश बहता पानी, मेरी किस्मत ठहरा पानी। हम चाहते हैं कि बहते पानी, क्योंकि बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। लिखते हैं कि मेरी ख्वाहिश बहता पानी, मेरी किस्मत ठहरा पानी, उसकी प्यास की खातिर मैंने पहरों ओक में रखा पानी। मतलब अपनी, वो आएगा, उसको प्यास लगी होगी तो अपनी अंजलि में उसके लिए पानी लिए हुए खड़ी थी मैं। रोते हैं जब हो जाता है, पानी शब्द पर गौर कीजिएगा, जहाँ जहाँ पानी शब्द आए, रोते हैं जब हो जाता है अपने सर से ऊंचा पानी। इंसान अपने दर्द को एक निश्चित सीमा तक दबाता है, और इसके पश्चात जब नहीं बर्दाश्त होता तो वो बोल देता है, वो रो देता है। रोते हैं जब हो जाता है अपने सर से ऊंचा पानी, जिस बर्तन में डालो उसको, जिस बर्तन में डालो उसको, हो जाता है वैसा पानी।
कोई आकार नहीं पानी का। गिलास में है तो गिलास के आकार का, कप में है कप के आकार का, प्याली में है प्याली के आकार का। जिस बर्तन में डालो उसको हो जाता है वैसा पानी। कच्ची छत पर टूट के बरसा बेहिस बहरा अंधा पानी। अब सोचिए जिनके घर जरा कच्चे हों और बारिश का मौसम हो, हम सभी प्रतीक्षा करते हैं कि बारिश आए, लेकिन सोचिए इस दुनिया में कितने ही ऐसे घर होंगे जो ये मनाते होंगे कि बारिश ना हो, क्योंकि उनका घर कच्चा है। देखने का तरीका, कच्ची छत पर टूट के बरसा, यानी जिसके ऊपर मुसीबत थी उसके ऊपर पानी ज्यादा गिरा। पायाबी से हार न मानो, पायाबी मतलब जहां कम पानी हो। पायाबी से हार न मानो, मिल जाएगा गहरा पानी, इस नगरी में दाम न पूछो। इस नगरी में दाम न पूछो, सस्ता खून है महंगा पानी। अपने अक्स से शर्मिंदा है, अब अंतिम पंक्ति है, अपने अक्स से शर्मिंदा है पानी, हमको कर गया पानी। अब आपने कभी सुना होगा कि वो शर्म से पानी पानी हो गया या पानी पानी हो गई, मतलब पानी हमको कर गया पानी, मतलब किसी की आंखों में आंसू देखे और हमारा दिल पसीज गया। और आजकल के दौर का सच भी यही है कि दिलों में जख्म लबों पर हंसी ज्यादा है। ऐसे करैक्टर आप ढूंढिएगा तो आपको अपने आसपास मिलेंगे। दिलों में जख्म, दिल में बहुत दुखी है, लबों पर हंसी ज्यादा है। जो इंसान अंदर से बहुत गहरा टूट चुका होता है, दर्द होता है, वो लबों पर हंसी ज्यादा रखता है। दिलों में जख्म लबों पर हंसी ज्यादा है, हमारे अहद में बेचहरगी ज्यादा है। पंक्ति है कि वहीं पर सुबह पतंगों की लाश पाओगे, वहीं पर सुबह पतंगों की लाश पाओगे, उसी गली में जहां रोशनी ज्यादा है। बरसात का मौसम है, देखिए कभी आप जिस गली में रोशनी ज्यादा होगा सुबह उसी गली में सबसे ज्यादा कीड़े आपको, पतंगे आपको मरे हुए मिलेंगे। उसी गली में जहां, वहीं पर सुबह पतंगों की लाश पाओगे, उसी गली में जहां रोशनी ज्यादा है, न कोई रोने का मंजर न कहकहों की बयाल। न कोई आजकल खुल के हंस रहा है न खुल के रो रहा है। न कोई रोने का मंजर न कहकहों की बयाल, घुटन फिजाओं में शायद भी ज्यादा है। जहां है प्यार वहां रंजिशें भी देखोगे, जहां मोहब्बत होती है वहां शिकायतें भी होती हैं। जहां है प्यार वहां रंजिशें भी देखोगे, अरे जहां गरज है वहां दोस्ती ज्यादा है। जी, जहां पर आवश्यकता होती है वहां पर दोस्ती ज्यादा होती है, कहने का तरीका होता है। मतलब आप नागेश्वर जी किस पंक्ति की बात कर रहे हैं कि वंस मोर लाइन सर जी, अच्छा ठीक है। दिलों में जख्म लबों पर हंसी ज्यादा है, जख्म ज्यादा है और दिल में जख्म है, लबों पर हंसी ज्यादा है। दिलों में जख्म लबों पर हंसी ज्यादा है, हमारे अहद में बेचहरगी ज्यादा है। ज्यादातर इंसान मजबूर है, मतलब करना कुछ और चाहता है और उसको करना कुछ और पड़ रहा है। कभी कभी होता है कि मन करता है कि ये कर डालें, लेकिन अपने बस में नहीं होता। दिलों में जख्म लबों पर हंसी ज्यादा है, हमारे अहद में बेचहरगी ज्यादा है, वहीं पर सुबह पतंगों की लाश पाओगे, उसी गली में जहां रोशनी ज्यादा है,
न कोई रोने का मंजर, न कहकहों की बयाद, न कोई खुल के हंस रहा है न कोई खुल के रो रहा है, न कोई रोने का मंजर न कहकहों की बयाद, घुटन फिजाओं में शायद भी ज्यादा है, जहाँ है प्यार वहाँ रंजिशें भी देखोगे, जहाँ है प्यार वहीं रंजिशें भी देखोगे, जहाँ गरज है वहाँ दोस्ती ज्यादा है। भैया बैप किया, आपने आपके आदेश का पालन किया। महेंद्र दीपेन जी हमारे साथ कहते हैं, महफिल में हंसने वालों को क्या पता तन्हाई का दर्द, हर कोई दिल का हाल समझ नहीं पाता, बिछड़ जाते हैं वो जो जान से भी प्यारे होते हैं, फिर उनकी यादों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। जी हाँ, और लता जी ने एक गजल गाई कि मेरा दामन दुखों से भर दो, और मुझे लगता है कि लता जी का अगर कोई तोड़ है, जहां तक मैं मानता हूं, अपना मेरा व्यक्तिगत मानना है, तो वो रफी साहब है। तो जिस धुन पर लता जी चली थी कि मेरा दिल जो है वो दुखों से भर दिया जाए, उसका जवाब रफी साहब देते हैं कुछ इस अंदाज में। उम्मीद है आपको लता जी की अगर वो गजल याद होगी तो रफी साहब का ये जवाब आपको बेहद पसंद आएगा। अब देखते हैं आप दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छा मानते हैं, लता जी का वो गीत कि मेरा दामन दर्द से भर दिया जाए, या रफी साहब की वो गजल जिसे अब हम आपको सुनाते हैं। जरा कंपैरिजन कीजिएगा और बताइएगा कि दोनों में आपको क्या अच्छा लगा। हम प्रतीक्षा करेंगे आपके उत्तर की।

जी हाँ, सदन ने लिखा, जो तुम्हें समझे उससे कभी खोना मत, और जो ना समझे उसके पीछे रोना मत। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है। क्या बात है भाई। श्याम नाम की पगली जी को बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं। माता जी चरण स्पर्श, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। दर्शन दे दिया कीजिए भाई कभी कभी जी, और रोज हम तो ये चाहेंगे। और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे उम्मीद ये की जाती है कि शनिवार को आप हमारी महफिल का हिस्सा फिर बनेंगे। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। जी हाँ, माता जी प्रणाम करते हैं आपको। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो शनिवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी इसी आपके ही कार्यक्रम बाहर गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सब के साथ और यूं ही आती रहूँगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वही छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, कह ना सके। नीलू ससुराल से मायके महीना भर रहने को आई थी। नीलू यानी नीलोफर की शादी को 2 साल गुजर गए थे। ऐसा लगता था कि कल की ही बात हो। राज के जहन में जो यादें धुंधली पड़ गई थीं, वो एक एक करके सामने आने लगीं। नीलू की शादी में दर्द देने वाले डरावने मंजर धीरे धीरे जिंदा होने लगे थे। ये राज नीलू की अधूरी मोहब्बत का अंजाम था। निगाहों में हर पल बसने वाली नीलोफर को वो आज तक नहीं भूल पाया था। राज अपनी अधूरी मोहब्बत का इल्जाम पूरी तरह नीलू पर नहीं लगा सकता था। अपनी नाकाम मोहब्बत का वो खुद भी जिम्मेदार था। आने वाले तूफान से वो घबरा गया था। चांद सी सूरत वाली नीलोफर राज पर अपनी जान लुटाती थी, पर नीलोफर का पिता अकरम गांव का दबंग शातिर झगड़ालू किस्म का इंसान था। गांव में कहीं भी झगड़ा फसाद राहजनी आगजनी यहां तक कि कई हत्याओं में भी उसका नाम जुड़ा होता था। आधे गांव ने तो अकरम का हुक्का पानी बंद कर रखा था। अकरम और राज के घरों की दीवारें आपस में मिली हुई थीं। बचपन के दिनों में मासूम राज गांव के स्कूल में पढ़ता था, नीलू भी वहीं पढ़ती थी। राज और नीलू घर से साथ साथ ही स्कूल जाते थे और घर आकर अपने घरों के सामने एक साथ खेलते थे। उन दिनों राज शाम के समय अपनी छत पर पतंग भी उड़ाया करता था। उस समय नीलू भी अपने घर की छत पर चढ़ जाया करती थी और राज को पेंच लड़ाने को उकसाया करती थी। जब राज नीलू के कहने पर किसी की पतंग काट देता था तो नीलू उछल उछल कर अपनी खुशी का इजहार किया करती थी। अगर पेंच लड़ाने के मुकाबले में राज की पतंग कट जाती तो वो उदास हो जाती थी। एक दिन राज बड़ी सी पतंग खरीद कर लाया। उसने स्केच पेन से पतंग पर कार्टून बनाकर नीचे शरारत से नीलू का नाम लिख दिया। कार्टून के नीचे अपना नाम लिखा देखकर नीलू गुस्से से भर उठी थी। राज बार बार उड़ती पतंग को नीलू पर झुकाकर उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। अचानक राज की पतंग जरा ज्यादा झुक गई और नीलू के हाथ में आ गई। उसने राज की पतंग दबोच कर धागा खींचा और अपने घर के अंदर भाग गई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कह ना सके। अब तक आपने सुना, दिलोफर शादी के बाद मायके आई थी। राज जो कभी उससे मोहब्बत करता था पुरानी यादों में खो गया था। उसे याद आ रहा था कि कैसे बचपन में दोनों साथ साथ खेला करते थे। राज उसको चिढ़ाता था और एक बार जब उसे मौका मिला तो वो राज की पतंग छीन कर नीचे भाग गई। अब आगे नीलू की इस शरारत पर राज को बहुत गुस्सा आया। वो चीखता चिल्लाता हुआ सीधा नीलू के घर पहुंच गया। वो नीलू को उसके घर में ही दबोच कर पीटने लगा। उस समय नीलू के पिता अकरम घर पर ही मौजूद थे। छोटे से राज की इतनी हिम्मत देखकर उन्होंने उसे दो तमाचे मारे और अपने घर से भगा दिया। उस समय राज मात्र 12 साल का था। वो रोता बिलखता अपने घर चला गया और पापा को बताया। राज के पापा रामदयाल शांत स्वभाव के आदमी थे। वो एक स्कूल में टीचर थे। उन्होंने अपराधी अकरम के मुंह लगना ठीक नहीं समझा और राज को ही डांट डपट कर खामोश कर दिया। अब रामदयाल ने राज को जेब खर्च देना बंद कर दिया। इस तरह राज की पतंगबाजी पर रोक लग गई। राज नीलू से बेहद नाराज था। वो नीलू को अकेला देखकर उसे पीटने की फिराक में था। एक दिन स्कूल में खेलकूद का पीरियड चल रहा था। उस समय क्लास के तमाम सहपाठी अपने अपने मनपसंद खेल खेलने में मसरूफ थे। तभी राज ने देखा कि नीलू नल से पानी पीकर अकेली आ रही है। उसी समय राज ने नीलू को लपक कर उसका एक बाजू पकड़ा और गुर्राया, परसों शाम को मेरी पतंग पकड़कर क्यों खींची थी? वो पतंग मैं 2 रुपए की खरीद कर लाया था जिसकी तूने ऐसी की तैसी कर दी। उस पर तो मेरा नाम लिखा था इसलिए मैंने अपनी पतंग ले ली, तुम दूसरी पतंग उड़ा लेते। नीलू बोली, मैं तेरे दोनों हाथ और मुंह तोड़ दूंगा, तुझे बचाने इस समय कोई नहीं आएगा। राज चिल्लाया, लो मारो मुझे, मेरे दोनों हाथ तोड़ दो, सामने पड़ी ईंट उठाकर मेरे मुंह पर दे मारो। अगर मुझे मारने से तुम्हारी पतंग जुड़ जाए तो अपने मन की इच्छा पूरी कर लो, नीलू ने कहा। मगर राज का हाथ नीलू पर नहीं उठा। राज ने चेतावनी देते हुए नीलू को छोड़ दिया। 4-5 दिनों तक नीलू से उसकी कोई बात नहीं हुई। अब उसने घर जाना बंद कर दिया। उसे अपने पापा का डर भी था। सालाना इम्तिहान सिर पर आ गए थे। वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई में जुट गया। एक दिन शाम के समय नीलू अपनी माँ के साथ राज के घर आई। उन दिनों नीलू के बड़े भाई की शादी होने वाली थी। नीलू की माँ उसके परिवार को शादी में शामिल होने का न्योता देने आई थी। नीलू सबसे नजरें बचाकर राज के कमरे में आ गई और उससे पूछने लगी कि वो अब पतंग क्यों नहीं उड़ाता। राज ने उदास मन से बताया कि अब उसे जेब खर्च नहीं मिलता। इतना सुनते ही नीलू ने छुपा कर लाई एक छोटी सी पोटली राज की तरफ उछाल दी और पतंग उड़ाने को कहकर चली गई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कह ना सके। अब तक आपने सुना

उन दोनों को पता ही नहीं चला। वो दोनों पल भर भी एक दूसरे से दूर होने पर परेशान हो जाते थे। अकरम को इस इश्क की भनक लग गई। वो दोनों प्रेमियों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। वो किसी भी सूरत में अपनी बेटी को गैर जात में ब्याहना नहीं चाहता था। उसने अनन फानन बेटी नीलोफर यानी नीलू का रिश्ता दूसरे गांव के गुलेमान के साथ पक्का कर दिया। अकरम अपनी बेटी को जल्दी ब्याह कर ससुराल भेजना चाहता था, पर उसे डर भी था कि कहीं नीलोफर बगावत न कर दे। जल्दबाजी में शादी की तारीख भी तय कर दी गई। दो चार दिन बाद अकरम चार पांच बदमाश लेकर रामदयाल मास्टर के घर पहुंचा और धमकी दे आया कि वो अपने बेटे को समझा कर रखें, वरना पूरे परिवार को इसी घर में बंद करके आग लगा देगा। राज के पापा लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते थे। उन्होंने प्यार से अपने बेटे पर दबाव डाला कि वो नीलू को भूल जाए। राज ने मन ही मन अपने पापा का कहना मानने का मन बना लिया, मगर कामयाब नहीं हो पा रहा था। एक दिन राज दोपहर के समय गांव के बाहर नीलू से मिला। नीलू ने उलाहना देते हुए ना मिलने की वजह पूछी तो राज खामोश रहा। नीलू ने अपनी बात पर जोर देते हुए दोबारा पूछा, पर राज को कुछ भी बताना मुनासिब नहीं लग रहा था। राज की खामोशी देख नीलू ने राज का कॉलर पकड़ते हुए सारा माजरा गुस्से से पूछा। राज ने आखिरकार दुखी मन से सारी बातें नीलू को बता दी। नीलू गरजते हुए बोली कि उसे अपने निजी मामलों में पिता की दखलअंदाजी बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो जिससे प्यार करती है उसी से शादी करेगी। राज ने नीलू को जिद ना करने की सलाह दी। ये भी समझाया कि अगर उन दोनों ने गलत कदम उठाया तो उसका अपराधी पिता उसके परिवार की हत्या कर देगा। मगर नीलू सारी बात सुनकर भी अपनी जिद पर ही अड़ी रही। कुछ देर सोचने के बाद नीलू ने एक सलाह दी तो राज सोच में पड़ गया। नीलू बोली, हम दोनों इस जालिम जमाने से बहुत दूर भाग चलते हैं, जहां हमारे प्यार का कोई दुश्मन ना हो। जब काफी समय बीत जाएगा तब पापा का गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। ये सुनकर राज डर गया और बोला, नहीं नहीं नीलू, ये रास्ता बदनामी और तबाही की तरफ जाता है। ऐसा करने से हमारे परिवारों की बदनामी तो होगी ही, तुम्हारे पिता मेरे परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कह ना सके। अब तक आपने सुना, जब नीलू मायके आई तो राज को पुरानी बातें याद आने लगीं कि किस तरह उन दोनों की दोस्ती के बारे में घर पे पता लगने पर नीलोफर के पिता ने राज के घर वालों को धमकाया था और राज ने नीलू से दूरी बना ली थी, पर नीलू फिर भी हर हाल में राज के साथ ही रहना चाहती थी। पर राज ने दुनिया का और अपने परिवार की सलामती का हवाला देकर उसे समझा दिया। अब आगे, राज ने खतरे का सुलगता हुआ आईना दिखाया तो नीलू सहम गई। नीलू बोली, सोच लो राज, आया समय एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। हिम्मत और कोशिश करने से हमारी समस्या का हल हो सकता है। मगर राज को अकरम का डर था, वो जल्लाद से कम नहीं था। राज अपने माँ बाप और बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का मन बना लिया। उस दिन के बाद से वो नीलू से नहीं मिला। मगर नीलू को दिल से भुलाना इतना आसान कहाँ था। अकरम ने हफ्ते भर में ही नीलू की शादी कर उसे ससुराल भेज दिया। आज जब राज को पता चला कि नीलू अपने मायके आई है, उसका दिल मिलने को मचल उठा। मिलने की चाहत लिए राज धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ नीलू के घर पहुंच गया। घर का मेन गेट अंदर से बंद था। उसने नीलू के घर का गेट खटखटाया तो वो खुल गया। सामने उसकी प्यारी नीलू ही खड़ी थी, शायद नहाकर निकली थी। पानी के मोती उसके काले लंबे बालों से गिर रहे थे। अरे राज, कैसे हो, अंदर आओ ना। राज को देखते ही नीलू खुशी से चहक उठी। अपनी क्या हालत बना ली है तुमने, अपने आप को संभालो राज। नीलू, जो मुसाफिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते उनका यही अंजाम होता है। लेकिन तुम मेरी हालत पर मत जाओ, अपनी सुनाओ, राज ने कांपती आवाज में पूछा। नीलू को लगा कि हालात से घबरा कर राज उससे दूर तो हो गया, मगर अपनी महबूबा को भूल नहीं पाया। मैं खुश हूं या नहीं इसका कोई मायने नहीं है, जब तुमने ही अपनी हालत से घबराकर मेरा कहा मानने से इनकार कर दिया तो मुझे हालात से समझौता करना ही था। मगर आज तुम्हारी ये हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अधूरी मोहब्बत की आग में पूरी तरह झुलस रहे हो। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। कहते हुए नीलू ने राज के दोनों हाथ थाम लिए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कह ना सके। अब तक आपने सुना नीलू और राज एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन नीलू के पिता अकरम काफी दबंग स्वभाव के थे और उन दोनों की दोस्ती के बारे में पता लगने पर उन्होंने राज के परिवार को धमकाया और नीलू की जबरदस्ती जल्दी से शादी कर दी। शादी के बाद नीलू मायके आई थी, राज उससे मिलने गया। राज की हालत देखकर नीलू का मन दुखी हो गया। वो समझ गई कि वो नीलू के साथ रहने की हिम्मत तो नहीं कर पाया, लेकिन उसके बिना जी भी नहीं पा रहा था। अब आगे, नीलू, मैं जो देखना और महसूस करना चाहता था वो सब देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरी कुर्बानी कामयाब हो गई है। मैं जिंदगी भर तुम्हारी यादों को अपने दिल में सहेज कर रखूंगा। तुम खुशहाल रहोगी तो मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, राज ने कहा। नहीं राज, तुम मुझे कभी अपने से अलग मत समझना। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं, जहां चाहे ले चलो मैं तुम्हारी बनकर रहूंगी। कहते हुए नीलू ने राज के हाथ कस कर पकड़ लिए। नहीं नीलू, मेरी वजह से कोई तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाए ये मैं कभी सह नहीं पाऊंगा, राज ने कहा। नीलू बोली, अब पता नहीं दोबारा कब आ सकूंगी। थोड़ी देर अंदर आओ, अपने मन की बात मैं तुम्हारे सामने रखना चाहती हूं। इतना कहकर नीलू ने राज का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाना चाहा। नहीं नीलू, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर देना। इतना कहकर राज उल्टे कदमों से गेट से बाहर आ गया। नीलू राज को रोकना तो चाहती थी मगर उसे रोक नहीं सकी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी कह ना सके। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: तेरा नाम लूं तो सुकून आ जाता है, जैसे भीड़ में कोई अपना मिल जाता है। सोचूं जब भी तेरे साथ की बातें, दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। तू साथ हो तो मुश्किल भी आसान लगे, तेरे बिना हर खुशी भी सुनसान लगे। ये दिल सिर्फ तुझसे जुड़ना चाहता है, बाकी दुनिया तो सब मेहमान लगे।
3: तेरी यादों का मौसम दिल पे छाया है, हर ख्वाब में बस तेरा ही साया है। कोई पूछे प्यार क्या होता है मुझसे, मैं कहूँ जो तूने मुझ में जगाया है। न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे, न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे। बात ना हो तो दिल नहीं लगता जरा, तू सामने हो तो वक्त रुक जाता है और दूर हो तो हर पल लगे जैसे सजा।
2: जी हाँ दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत में आज हम लेकर के आए हैं वैलेंटाइन स्पेशल, यानी प्यार के नगमों को एक साथ लेकर के। आपकी आज गुमसुम एंड आपकी आज ख्वाहिश। तो आज जो सफर शुरू करने जा रहे हैं उसमें कई मुसीबतें, जी हाँ, इसलिए आ रही है क्योंकि प्यार एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसी कड़ी है जिसमें मुसीबतें ना हो तो प्यार को पाना आसान कहाँ लगता है। सबसे पहले हम उस सिंगर की बात करेंगे जो कि अपने आप में एक कहते हैं ना कि पूर्ण विराम हम नहीं कह सकते हैं, पूर्ण है। क्यों आरजे गुमसुम?
3: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश, वो जो अपने में पूरी है, वो जिनकी आवाज जो भी सुनता है वो उनकी आवाज का मुरीद हो जाता है,
2: और आवाज के मुरीद होने के साथ साथ में उनके व्यक्तित्व, उनके चलन, उनकी बोली, उनका व्यवहार, शायद ये प्यार में कम नहीं होता है, ये प्यार को और पूर्ण बनाता है। बहुत सारे नगमों के साथ में जब उन्होंने गीतों को सुना, गाया और उनको जिया, जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्यार की बेमिसाल मूरत हमारी लता जी। उनके नगमों में से एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ।
3: इकरार से याद आया, बहुत ही बेहतरीन गाना है प्यार हुआ इकरार हुआ। कहते हैं ना कि प्यार तो यूं ही हो जाता है, लेकिन जब इकरार करना होता है तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होती है। हम सोचते हैं ना, अच्छा चलो कह देते हैं, फिर रुक जाते हैं। सामने वाले को बुरा लग गया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, फिर रुक जाते हैं। लेकिन ये ऐसा एहसास है कि कहा भी नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता।
2: तो भाई ये तो मुझे कुछ इस तरीके से लग रहा है कि अगर हमने कुछ मुंह में खाया हुआ है तो ना निगला जाए ना उगला जाए, कुछ ऐसा ही हो गया। पर मैं बताऊं कि वैलेंटाइन वीक जो ऐसा होता है जिसमें प्यार का इजहार करने से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, तो आइए इस प्यार के इजहार को हम करते हैं और सुनते हैं इस प्यारे से नगमा।

0: अगले सिंगर जिनकी आवाज में जादू तो था ही, शायद हम उनको ये भी कह सकते हैं कि उनकी आवाज इतनी वर्सटाइल थी कि हर कोई आवाज पहचान जाता था और हर एक हीरो की आवाज में फिट होने वाले हमारे मोहम्मद रफी जी। दिलीप कुमार का दर्द हो या फिर शम्मी कपूर की मस्ती, देवानंद का रोमांस हो, सब पर उनकी आवाज फिट हो जाती थी। लेकिन कहा जाता है मोहम्मद रफी की आवाज नगमे और उनके गीतों की जो एक प्यारी सी एक मिसाल हुआ करती थी वो लव सॉन्ग्स पर ज्यादा फिट हुआ करती थी।
1: बिल्कुल, मोहम्मद रफी जिनकी आवाज को कहा ही जाता है कि उनकी आवाज में एक रूहानियत थी। रूहानियत ऐसी कि जो भी उनके नगमे सुनता था वो खो जाया करता था। कोई भी गाना हो, कोई भी शैली हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दर्द हो, खुशी हो या फिर बहारों की खुशबू, हर किसी को, हर किसी एहसास को अपनी आवाज में बहुत ही बेहतरी से कैसे निखारा जाता है ये मोहम्मद रफी जी बहुत ही अच्छे से जानते थे।
0: बिल्कुल, और मोहम्मद रफी जी ने तो बहुत सारे ऐसे गानों को अपनी एक मिसाल दे दी, जैसे रोमांटिक हो, फिर दर्द भरे हो, कव्वाली हो, भजन हो, देशभक्ति, कॉमेडी सॉन्ग्स, ऐसा कोई भी अंदाज हो, जिन्होंने इन सारे सॉन्ग्स को छोड़ा ही नहीं था। बेहद विनम्र इंसान उनकी शोहरत के बावजूद बेहद सादगी भरी जिंदगी जीते थे। इंडस्ट्री में जो लोग उन्हें सबसे अच्छे और प्यारे व्यवहार के लिए जानते थे, इंडस्ट्री में लोग उन्हें उनके अच्छे व्यवहार के लिए भी याद करते थे और वो जाने जाते थे। दिल ढल गया, ये दुनिया, ये महफिल, तूने ये क्या कर दिया, सीधे दिल पर उतर जाने वाले सॉन्ग्स थे। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी आज गुमसुम से कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत, क्या आपने ये गाना सुना है?
1: जी आरजे ख्वाहिश, बिल्कुल सुना है। और इतना प्यारा गाना, इतना प्यारा गीत, जिसकी कहे है ना कि कोई सार ही नहीं, कोई मिसाल ही नहीं।
0: ओके, तो चलिए अब हम लिसनर्स को सुना देते हैं इस प्यारे से नगमे को, जो कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की

0: अगले जिस सिंगर की हम बात करने वाले हैं, उनकी आवाज में मस्ती है, कुछ नयापन है, पर इस नएपन के साथ साथ अपनी आवाज में सभी गीतों को बड़ी ही खूबसूरती से संवारते हैं वो। और उनका गाना आते जाते खूबसूरत, इन आवारा सड़कों पर, और ऐसे ही बहुत सारे गीत जो कि आपको याद दिलाते हैं मस्ती, याद दिलाते हैं खुशी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार जी। अपनी गानों के लिए तो वो जाने ही जाते हैं, पर साथ ही साथ में जाने जाते हैं अपने व्यक्तित्व के लिए। उनका व्यक्तित्व जो बहुत ही सादा और सौम्य है। कहते हैं कि हम जितने बड़े पद पर होते हैं उतना ही हमारा व्यक्तित्व सौम्य होता है। इसकी बहुत ही बेहतरीन मिसाल है किशोर कुमार जी।
1: मल्टी टैलेंटेड जीनियस, ये भी नाम उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मिला। किशोर कुमार गायक ही नहीं बल्कि एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। इतनी सारी प्रतिभाएं एक ही इंसान में कब मिलती हैं, जब उनके अंदर प्यार कूट कूट के भरा होता है। दूसरों के प्रति सम्मान, एक प्यार भरा होने के कारण ये सारी खूबियाँ होती हैं। आवाज जो दिल से निकली थी, उनकी आवाज में एक नेचुरल खुशी और शरारत हुआ करती थी। रोमांटिक गाने हो या फिर मस्ती भरे, वो उन गानों को गाते नहीं थे, वो उन गानों को जीते थे। मस्ती के बादशाह, एक चतुर नार, पान खाए सैया हमार जैसे ये मस्ती वाले गाने जब उन्होंने रिकॉर्ड किए थे, जब उन्होंने गाए थे, तो सारे लोगों ने उनके लिए बस एक ही कहा था, अरे वाह, अब तो बात किशोर कुमार की है। तो आइए उनकी ही आवाज में एक प्यार भरे नगमों के साथ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं, जो कि है हमें तुमसे प्यार।

0: अरे ये कौन सा गीत है और किसके लिए गाया जा रहा है?
1: मैं गा तो नहीं रही थी, मैं गुनगुना रही थी और सिर्फ मैं सोच रही थी आंखें बंद करके कि काश ये गाना भी मैं किसी के लिए गाऊं। और इतना प्यारा गीत है ना, जो कि उनकी आवाज़, और आप सभी को पता है कि जिसने इस गीत को गाया है वो हम सबकी प्यारी आशा भोसले जी। बिल्कुल, आशा भोसले के जो गीत होते हैं वो हमेशा से एक ना रोमांटिक सॉन्ग्स को लेकर के क्लासिकल, पॉप, गजल, और वो हर तरह के गानों को जीती हैं, हर गानों को गाती हैं। उनकी आवाज में वो हर मूड भी ढलसा जाता है, चाहे वो ओपी नैयर साहब जी हो, चाहे आजी बर्मन साहब जी के साथ हो। वो हर एक जादू को अपने साथ में इस तरीके से पिरो लेती हैं कि हर युग में उनके गानों को एक यादगार के रूप में ले ही लिया जाता है। मस्ती और अदा की पहचान, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, जिसके लिए मैं अभी कहने जा रही हूँ, पिया अब तो तू आजा। इतने बेहतरीन सारे सॉन्ग, और जो कि रोमांटिक सॉन्ग्स को दिया है वो ही हमारी आशा भोसले जी हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने गीत सुना दीवाना हुआ बादल, तो देखा प्यार में क्या कुछ नहीं हो सकता। ये कल्पना देखिए प्यार के लिए कि बादल भी दीवाना हो सकता है, यानी वो भी दीवानगी कर सकता है, प्यार में पड़ सकता है। और दूसरा बहुत ही बेहतरीन गाना जो कि है पिया तू अब तो आजा, तो बिल्कुल इन दोनों ही गीतों में प्यार है बेशुमार। तो आज जैसा कि हम प्यार को ही बता रहे हैं, उसी को आपके सामने रख रहे हैं, तो आइए सुनते हैं प्यार भरे ये बहुत ही बेहतरीन गीत।

जिनकी आवाज में एक सच्चाई और टूटन थी। अब आप सोचेंगे टूटन का क्या मतलब होता है? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जब दिल टूटते हैं तो उस टूटन की कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन प्यार भरों को जोड़ना, प्यार भरे दिल को जोड़ना जो सीधे दिल तक पहुंचती थी, उनके गाने सुनकर लगता है जैसे कोई अपना पुराना दर्द सुना रहा हो। उन्हें अक्सर राज कपूर की आवाज कहा जाता था, आवारा हूं और मेरा जूता है जापानी, जीना यहां मरना हुआ, ऐसे गानों की कई जोड़ियों को अपनी आवाज दिया और उन गानों को अमर बना दिया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जिनकी आवाज के लिए हम बात कर रहे हैं वो है हमारे मुकेश दाजी, जिनकी आवाज में दर्द तो था ही, इसी के कारण उन्हें आवाज के बेताज बादशाह भी कहा जाता है और उनके गाने आज भी हम सभी बड़े ही शौक से और बड़े ही दिल से सुनते हैं। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो उनकी ही प्यार भरे गीतों को हम कैसे भुला सकते हैं, चाहे वो आज के जुगल जोड़ी क्यों ना हो, चाहे वो पुरानी ही जोड़ी क्यों ना हो, सभी के दिलों में आज के ये जो गीत हैं, ये पुराने मिक्स करके भी आज हम सभी लोगों को सुनने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं।

0: युगल जोड़ी।
1: महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग, जो कि मुकेश जी की आवाज में गाया गया। आप देखिए इस गीत में कि कितनी बेहतरी से बताया है कि महबूब मेरे, यानी ये गीत ये बताता है कि तुम हो तो पूरी दुनिया है, सब कुछ है, और तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। प्यार कुछ ऐसा ही होता है, अगर आपके पास आपका हमदर्द, कोई आपका हमराज है, तो दुनिया बेहद खूबसूरत लगती है, और वो नहीं है तो मन करता है कि कुछ भी नहीं। ऐसा ही होता है प्यार, फिर चाहे वो आप उसे किसी भी रिश्ते में ले लीजिए, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो आपका माता पिता से आपका रिश्ता हो, या कोई भी रिश्ता हो, जब कोई हमारे दिल के बहुत करीब होता है तो हमें यही लगता है कि तुम हमेशा हमारे पास रहो, बस कहीं दूर मत जाओ। इसी एहसास को, इन्हीं बातों को, इन्हीं भावनाओं को बहुत बेहतरी से अपनी आवाज के साथ उन्होंने निखारा है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में उन्हीं का ये बेहतरीन गीत, महबूब मेरे तू है तो।

0: ट्रेनिंग अगर शास्त्रीय संगीत की थी तो उनके गानों की सुरों की गहराई में परफेक्शन साफ झलकती थी। बिल्कुल, जिनकी ट्रेनिंग अगर शास्त्रीय संगीत में की गई है तो उनकी नींव भी उतनी ही मजबूत होती है। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। जो कि हमारे अगले सिंगर हैं मन्ना डे, जिनकी आवाज को आज भी हम बड़े ही अच्छे वाले मूड में सुनते हैं। मुश्किल धुनों के बादशाह, ऐसे गाने जो दूसरे गायक मुश्किल समझते थे, वो मन्ना डे साहब ने बड़ी ही आसानी से गा लेते थे। जैसे लागा चुनरी में दाग, पूछो न कैसे मैंने, हर मूड में फिट और हर अदा में फिट, उनकी आवाज को बड़े ही शौक से और बड़े ही चाह से हम सुनते हैं। क्लासिकल ही नहीं, उन्होंने मस्ती भरे रोमांटिक और दार्शनिक गाने भी गाए। तो क्या आरजे गुमसुम, आप उनके गानों के बारे में कुछ जानती हैं?
1: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश, तो चलिए बताते हैं आपको उनके बहुत ही बेहतरीन गाने, जो कि है मस्ती भरा है समा। जब आप थोड़े दुखी हो, किसी से झगड़ा हुआ हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया हो और मन हो कि थोड़ा मस्ती करनी है, तो सुनिए मन्ना डे का ये गाना। क्योंकि मस्ती भरा है समा जब आप सुनेंगे ना, तो आपका मूड यूं बदल जाएगा। और साथ ही साथ इनका दूसरा गीत है तू प्यार का सागर है। बिल्कुल, तू प्यार का सागर है ये गीत आप जानते हैं कि मन्ना डे ने किसे संबोधित किया है? उनका कहना है कि तू प्यार का सागर है ये उन्होंने डेडिकेट किया है अपनी माँ, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके लिए उनकी माँ ही प्यार का सागर है, जिन्होंने बचपन से लेकर उन्हें हमेशा इतना प्यार दिया, इतना सराहा कि जो वो नहीं सोच रहे थे कि उन्हें नहीं मिल सकता है वो भी उन्हें मिला। तो इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं प्यार की, तो भाई कैसे भूल सकते हैं हम अपनी माँ को, जो हमेशा हमेशा हमें इतना प्यार करती है कि लगता है कि बस अब तो और किसी की जरूरत ही नहीं है, माँ ही अपने आप में संपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं उनके यही मस्ती भरे प्यारे से गीत और खो जाते हैं और करते हैं थोड़ी

मखमली आवाज और आवाज में जादू, जिसमें हल्का सा कंपन, जिसको कहते हैं वाइब्रेटो। वाइब्रेटो उनकी खास पहचान थी। कहते हैं ना कि किसी की आवाज में वाइब्रेशन होता है, जिसमें माइक में बोलने पर एक कंपन सी आती है। तो आप खुद सोचिए कि जब उनकी आवाज में कंपन हुआ करती थी और उनके गानों में वो कंपन साफ साफ झलकता था, तो यानी ऐसे सिंगर्स की आवाज जो होती है ना, वो बड़ी ही मखमली मानी जाती है। उनके गानों में उदासी और नजाकत इतनी खूबसूरती से मिली हुई थी, मानो उसी में वो फिट की गई हो, जो सुनने वाले हमेशा उनकी आवाज को सुनकर खो जाया करते थे। जैसे जाए तो जाए कहां, इतना सा मुझ में तू प्यार बढ़ा। गजल के मामले में अगर बात की जाए तो सिर्फ फिल्मी गायक ही नहीं, बल्कि बेहतरीन गायक और गजल गायकी के रूप में भी उनको सभी ने सुना। उनकी गायकी में उर्दू अदब की मिठास झलकती थी। एक्टर भी रह चुके हैं। कम लोग जानते हैं कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में अभिनय भी किया और आज उनकी अभिनेता को भी हम सराहते हैं। सादगी भरा स्वभाव तो हर किसी का होता है, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी थी कि आवाज की तरह नर्म और प्यारी सी आवाज। तो आज जैसे